FM बैंड 103.2 MHz पर, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

0: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की

विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरन कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री सिंह ने CBDT बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा TRF का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NTA ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मेसर्स एडुकेटिव का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर सके। NTA ने सूचित किया कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में आयोजित की जाएगी। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे साकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदारा शक्ति 2026 अभियान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब

0: अगले महीने की पहली तारीख को 10 बजे जयपुर के राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में आयोजित की जाएगी। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदारा शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: मित्रों नमस्कार। सुबह सुबह खुशबू बिखेरते फूलों की महक ताजगी बिखेर रही है, तो हरी हरी शाखें उनकी सुंदरता में निखार ला रहे हैं। हरियाली और रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती देखते ही बनती है इस बारिश के मौसम में। खूबसूरती का आनंद तो हम लेते ही हैं, लेकिन इन दिनों हमें संभल कर भी रहना है। कीट और सांपों से हमें सचेत रहना है। जहाँ पानी भरा हो और ठहरा भी हो पानी, तो मच्छर पनपने का भी डर रहता है। तो इन दिनों डेंगू मलेरिया आदि से स्वयं को बचाना भी है। साफ सफाई हम रखें, रहन सहन में भी, खान पान में भी ताज़ा पक्का भोजन ही खाएं, पानी साफ हो सके तो उबाल कर पिएं। कभी कभार चीटिंग डे हो सकता है, बारिश में पकौड़े ना खाएं तो भी कुछ कमी सी ही लगती है ना, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में। पेट के साथ साथ पूरे शरीर के फिटनेस का भी ख्याल तो रखना है हमें, बस और क्या। फिर हंसी खुशी बीतेंगे हमारे रोज़ के दिन, और हर दिन, हर महीना और हर साल। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमा शंकर पांडे जी से।
1: नमस्कार मित्रों, अब आप सुनेंगे अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था पर आधारित दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमाशंकर पांडे से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सावन माह में लोग अनेकानेक प्रकार से शिव आराधना में लगे हैं, जिनमें से कांवड़ यात्रा भी एक है। इसी क्रम में आज एक विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 10 से 15 हजार कांवड़ यात्रियों के शामिल होने की संभावना है। ये सभी कांवड़ यात्री आज प्रातः 6 बजे तखतपुर बेलपान से जल लेकर ग्राम महुआ कापा, साले कापा, नौवा पथरा, दैजा, बीजामोड़, छोटे करगी, लोकबंद, लेटिया, गोबरीपाट होते हुए अग्रसेन भवन कोटा पहुंचेंगे। अल्प विश्राम पश्चात कांवड़ यात्री पुनः ग्राम अमाली मोड़, जोगीपुर, बजरंगबली मंदिर, भैंसाझार मोड़, लक्ष्मी देवी मंदिर रतनपुर होते हुए शाम 6 बजे माँ माया धाम रतनपुर के धर्मशाला पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। साथियों, जिस कांवड़ यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो, वहां सड़कों

0: भविष्य कैसा होगा अनुमान लगा सकते हैं। सभी कांवड़ यात्रियों से अनुरोध है, यद्यपि सुगम यातायात व्यवस्था में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद होगा, फिर भी आप सभी सड़क के एक किनारे चलें, कंधे में कांवड़ की स्थिति आमने सामने अर्थात खड़ी हो न कि आड़ी, ताकि सड़क में शेष वाहन के लिए भी आवागमन हेतु स्थान बचा रहे। मित्रों, आज ही महादेव भक्त परिषद बहतराई के कांवड़ यात्री प्रातः 9 बजे बहतराई से यात्रा प्रारंभ करेंगे, जो ग्राम सकर्रा होते हुए धौरा भाटा स्थित भुलकेश्वर महादेव में जलाभिषेक करेंगे। आपसे भी यही अनुरोध है, सड़क के एक किनारे चलें। कांवड़ यात्रियों के दल को देखते हुए सभी वाहन चालकों से अनुरोध है, धीरे चलें, बहुत ही अधिक सुरक्षित चलें। साथियों, आज लाइब्रेरी असिस्टेंट पद की भर्ती परीक्षा शहर के 11 परीक्षा केंद्रों में हो रही है। यह परीक्षा प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक होगी, जिसमें 5000 से अधिक परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। बिलासपुर पुलिस की सभी को शुभकामनाएं। आप सभी से यही कहना है कि आज वर्षा की संभावना जताई जा रही है, अतः घर से जल्दी निकलें ताकि विषम परिस्थिति में भी कोई हड़बड़ी न रहे। दोस्तों, जब भी किसी यात्रा में जा रहे हो, प्रयास करें सामान कम हो, बैग अटैची सूट के साथ ही कम से कम हो। ऐसा करने से यात्रा सुरक्षित होगी और आरामदायक होगी। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये थे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर, उमाशंकर पांडे जी से हमने लिया ये। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
2: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
1: और अब एक महत्वपूर्ण सूचना, बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा। आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 07752 ये कोड लगाना होगा और फिर नंबर 266592।

66592 और अपनी समस्याएं सीधे डीआईजी सर से पूछें। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। सूचना समाप्त हुई।

मित्रों, हर दिन कुछ खासियत लिए आता है और आज का दिन हमारे लिए इसलिए खास है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न हमने मनाया था। दक्षिणी ध्रुव पर सफल और ऐतिहासिक लैंडिंग की याद दिलाता है आज का ये दिन। दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाले पहले देश के रूप में भारत की उपलब्धि का हम सम्मान करते हैं और इस वर्ष की थीम है विकसित भारत की ओर, नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा। मित्रों, अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रौद्योगिकी में भारत के बढ़ते कदम और आत्मनिर्भरता के भाव से हमारे कदम अब वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही हमारे छात्रों और युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के प्रति रुचि जागृत हो रही है। आम नागरिकों को ये समझाना कि अंतरिक्ष तकनीक कैसे हम सबके दैनिक जीवन को बेहतर बना रही है, ये बड़ी उपलब्धि है। जैसे आपदा प्रबंधन, GPS, मौसम का पूर्वानुमान और भी बहुत कुछ है। इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के अथक योगदान को सराहते हुए उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रमाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: महिला सभा हेतु सूचना सुनिए। श्रोताओं, फोन करें। गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 25 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 24 अगस्त 2026 सोमवार प्रातः 11 बजे से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा अतिथि देवो भव। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं बातों बातों में, क्या कहना और जब वी मेट। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पर 07752, ये तो कोड है आपको पता ही है, और नंबर 2665922662। आपके फ़ोन कॉल्स का

मित्रों, आज जन्मदिन मना रही हैं अभिनेत्री जो 1960 के दशक में और सन 1970 के दशक की शुरुआत की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से थी। 16 वर्ष की उम्र से हिंदी फिल्मों में पदार्पण किया। जी हाँ, सायरा बानो जी की बात कर रहे हैं हम। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है उन्हें। शालीनता, दिव्यता और भव्यता, तीनों शब्दों में सायरा जी के पूरे व्यक्तित्व और शानदार करियर का बखान हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म से लिया गया एक मधुर गीत।

सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनो भवन्तु। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सुबह कार्यक्रम से हमें दीजिए विदा। नमस्कार।

0: सुबह।
1: आज सुबह ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। आज हर्निया की पहचान समय पर करें व इलाज कराएं, इस विषय पर डॉक्टर गुरविंदर सिंह से पद्मामणि की बातचीत आप सुनिए। कार्यक्रम प्रस्तुति है सुप्रिया भारतीयन की और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं GI फाउंडेशन और लिवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन, लिवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर। उत्तम स्वास्थ्य और समाज समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है। स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना, रोगों की रोकथाम और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड बिलासपुर।
1: श्रोताओं नमस्कार, पुनः आपके पास हम आ गए हैं सेहत की बात डॉक्टर के साथ ये कार्यक्रम लेकर। आज एक ऐसे रोग के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत आम है, लेकिन लोग अक्सर शर्म या डर के कारण इसे नजरअंदाज कर देते हैं, और इस बीमारी का नाम है हर्निया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध लैप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी, जो हमें बताएंगे इस बारे में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद पद्मा जी। सबसे पहले सभी श्रोताओं को नमस्कार
1: जी। अब श्रोता ये जानना चाह रहे हैं कि हर्निया आखिर होता क्या है।
3: तो सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को बहुत आसान भाषा में समझाना चाहूँगा कि हर्निया आखिर होता क्या है। अब यूँ समझिए, इसे आप कह सकते हैं कि किसी पुराने कपड़े में छोटा सा छेद हो जाए और उसके अंदर रखा सामान बाहर निकलने लगे
1: जी।
3: इसी प्रकार हमारे पेट की दीवार मजबूत मांसपेशियों और ऊतकों से बनी होती है, जो पेट के अंदर के अंगों को संभाल कर रखती है। यदि जब किसी कारण से इस दीवार में कमजोरी या छेद हो जाता है तो अंदर की आंत या चर्बी बाहर की ओर उभरने लगती है, इसे ही हम हर्निया कहते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, कि क्या क्या ऐसा लगता है या महसूस होता है लोगों को कि उनको दिमाग में कौंधे की क्या ये हर्निया है?
3: अब हर्निया एक्चुअली बात ऐसी है कि कई लोग सोचते हैं कि कोई सूजन है जो पेट में हो रहा है या जांघों में हो रहा है या नाभि में हो रहा है, पर मेन इसका कारण ये है कि कई बार जैसे लोग बार बार भारी वजन उठाने वाले होते हैं या लगातार खांसी वाले मरीज होते हैं या लंबे समय से कब्ज की बीमारी के साथ हो या मोटापे के कारण हो या धूम्रपान करने वाले जो अधिक धूम्रपान करते हैं उस वजह से मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, या फिर गर्भावस्था या फिर डिलीवरी के बाद कुछ महिलाओं में ये होना काफ़ी आम है जिनका

0: पहले या कभी ऑपरेशन हुआ हो पेट का, वहाँ पर भी ये बीमारी हो सकती है। लेकिन कई बार जन्म से भी ये मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं, जिसके वजह से छोटे छोटे बच्चों में भी ये सारी बीमारियाँ हो जाती हैं।
1: तो हर्निया यानी पुरुष और महिलाओं दोनों में हो सकता है?
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये कितने प्रकार का होता है डॉक्टर साहब?
0: हर्निया के प्रकार तो काफ़ी होते हैं, बट जो आम है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। जो मुख्य प्रकार है, जांग और कमर के जोड़ में होने वाला इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, जो सबसे आम होता है। अब नाभि में होने वाला हम उसे नाभि का हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया भी बोलते हैं। पुराने ऑपरेशन के निशान पर होने वाला इंसीजनल हर्निया होता है, और जांग के ऊपरी हिस्से में होने वाला फीमोरल हर्निया। और इन सब में सबसे ज़्यादा आम जो होता है वो होता है इंग्वाइनल हर्निया, जो कि जांग और कमर के जोड़ों में होने वाला।
1: तो क्या हर्निया अपने आप ठीक हो जाता है? क्योंकि लोगों की ये धारणा होती है कि कोई घरेलू उपाय कर लिया जाए तो जल्दी ठीक हो जाएगा, बाहर डॉक्टर तक ना जाना पड़े।
0: अब बात ये है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कि हर्निया लोगों का काफ़ी ज़्यादा ऐसे अंधविश्वास बहुत रहता है कि ये कोई सूजन है जिसे हम कोई चाय पी के, कोई मालिश करके या कोई एक्सरसाइज करके इसे कम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हर्निया दवा, तेल, मालिश, बेल्ट या किसी घरेलू उपाय से ठीक नहीं होता। ये समय के साथ बढ़ता ही जाता है, और पहले शुरुआती समय में ये जब होता है तो कभी कभी नज़रअंदाज भी कर देते हैं लोग, ये सोच के कि ये आम सूजन है और ठीक हो जाएगा, और इसका उपचार नहीं लेते। पर इसका स्थायी इलाज केवल ऑपरेशन है, कोई दवा, गोली या कोई तेल, मालिश इसका उपाय नहीं है। कई बार कोई घरेलू आप उपाय के साथ साथ या कभी तेल या मालिश करने से चीज़ें और बिगड़ भी सकती है।
1: तो अब इसका इलाज किस तरह से संभव हो पा रहा है? अब तो तकनीक काफ़ी आगे बढ़ गई है।
0: तकनीक काफ़ी बढ़ गई है, पर इसका जो इलाज है वो क्या है, पहले मैं शुरुआत उसी से करना चाहूँगा। आज के समय में हर्निया का सबसे अच्छा इलाज केवल ऑपरेशन है, और ऑपरेशन के दौरान कमज़ोर जगह को मजबूत किया जाता है, और विशेष प्रकार की मेश या फिर आप जिसे जाली भी कहते हैं आम शब्दों में, वो लगाई जाती है, जिससे हर्निया दोबारा होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और आजकल कौन कौन सी आधुनिक तकनीक है जो कि उपलब्ध है, जो ऑपरेशन के अलग अलग विभिन्न प्रकार है, वो है कि सबसे पहले क्या होता था कि चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता था। आज के समय में ये एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी संभव है, जिसे हम कई बार दूरबीन का ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसमें फायदा क्या है कि ये छोटे चीरे लगते हैं, दर्द कम होता है, खून कम निकलता है, संक्रमण का खतरा भी कम होता है, मरीज जल्दी घर भी जा सकता है और अपने काम पर जल्दी वापस लौट भी सकता है।
1: तो रिकवरी का कितना टाइम लगता होगा किसी भी मरीज के लिए? वैसे तो अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग होता है रिकवरी का टाइम, फिर भी आम तौर पे कैसे रिकवर करते हैं?
0: आम तौर पे रिकवरी पेशेंट के कई बार उसके शरीर के ऊपर भी निर्भर करता है, कि उसको खाना पीना कैसा है, वो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की सलाह जो बताई गई है वो अच्छे से मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इसके इलाज के लिए। अब देखा जाए तो 2-3 हफ्ते में पूरा जो जाली है वो घुल जाती है शरीर में, और एक परत बन जाती है दोबारा, जो कि दोबारा हर्निया ना होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर यदि इस बीच में वज़न उठाएंगे दोबारा, और आप जो चीज़ें मना की गई हैं एक्सरसाइज करने के लिए एक्सटेंसिव, वो सारी चीज़ें करेंगे, तो वो हर्निया दोबारा हो सकता है उस जगह पे। और क्योंकि परत को वो बनने में समय लगता है, तो कम से कम 2 महीने का हम समय बोलते हैं पेशेंट को ऑपरेशन के बाद, कि आप उस समय में कोई भी वजन वाली वस्तु नहीं उठाएंगे। घर पे छोटे बच्चे हैं तो उनको गोदी नहीं उठाना है, और जो धूम्रपान करते हैं उनको हम सख्त मना करते हैं धूम्रपान करने के लिए। यदि खांसी है तो उसका सही समय में इलाज किया जाए, और यदि आपको कब्ज है तो उसका भी इलाज होना बहुत ज़रूरी है।
1: मतलब ये हर्निया के बचाव के उपाय भी कह सकते हैं हम इनको?
0: जी बिल्कुल।
1: कि पहले से अगर ऐसा कुछ लग रहा है हमें, वजन हमारी नियंत्रित नहीं है, कब्ज ज्यादा है, तो इसका उपचार भी कराएं, और दूर रहना ही है धूम्रपान से। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते श्रोताओं के लिए आपका संदेश क्या हो?

0: होगा ये बताएं।
1: यदि आपको कमर, नाभि या पुराने ऑपरेशन के स्थान पर कोई सूजन दिखाई देती है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। शुरुआती अवस्था में ऑपरेशन आसान है और सक्सेस भी ज़्यादा है। बहुत से लोग डर के कारण वर्षों तक इलाज नहीं कराते और बाद में इमरजेंसी के स्थिति बन जाती है।
0: जी
1: इसीलिए समय पर सर्जन से सलाह लें। याद रखिए, हर्निया छिपाने से नहीं, समय पर इलाज करने से ठीक होता है।
0: और सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंचना मरीज की जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप हमारे स्टूडियो में आए।
1: धन्यवाद। मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, किसी भी प्रकार की सूजन या परेशानी को नज़रअंदाज ना करें और समय पर योग्य सर्जन से सलाह लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
0: तो ये थे प्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन डॉक्टर गुरविंदर सिंह, जो हमें बता रहे थे हर्निया के बारे में। बहुत ही कम समय में अच्छी जानकारी दी इन्होंने। एक बार डॉक्टर साहब आपको पुनः धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ स्वास्थ्य जागरूकता, निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, समय पर जांच के साथ रोगों की शीघ्र पहचान और चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयासरत हैं। गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। आज हर्निया की पहचान समय पर करें व इलाज करवाएं, इस विषय पर डॉक्टर गुरविंदर सिंह से पद्मामणि की बातचीत आपने सुनी। कार्यक्रम प्रस्तुति थी सुप्रिया भारतीयन की और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे GI फाउंडेशन और लिवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है और अब आपको इंतज़ार है कार्यक्रम सदाबहार नगमे का। आज इस कार्यक्रम में आइए याद करें लोकप्रिय पार्श्व गायक को, जिनका नाम है कृष्ण कुमार कुन्नाद, जिन्हें हम कहते हैं KK। विभिन्न संगीत शैलियों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं ये। हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इन सभी भाषाओं में कई गीत हैं इनकी पहचान। अपने रोमांटिक गानों के लिए द मेस्मराइजर के नाम से भी मशहूर थे वो। आज उनकी जयंती पर उन्हें याद करते हुए सदाबहार नगमे कार्यक्रम में 2010 तक की उनकी फिल्मों के गीत सुनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओम शांति ओम फिल्म के इस गीत से। विशाल शेखर का संगीत है और गीत विशाल का।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज तो KK की ही है और समीर के बोल, हैरिस जयराज का संगीत।

इरशाद कामिल के बोल आप सुन रहे थे, प्रीतम का संगीत, के और सुनिधि चौहान की आवाज़ें, फिल्म का नाम खट्टा मीठा। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए, बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा। आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 2665 92, और STD कोड जरूर लगाइए उससे पहले 07752।

अपनी समस्याएं सीधे डीआईजी सर से आप पूछ सकते हैं। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। सूचना समाप्त हुई।

और आइए अब कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनते हैं, रहना है तेरे दिल में। इस फिल्म का गीत है, समीर के बोल हैरिस जयराज का संगीत, आवाज़ आप जानते हैं के।

0: के गाए इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे अब हम यहीं समाप्त करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 8 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
2: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HISTV और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में

0: ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
1: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए।

0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
1: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमा के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मकदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 100

0: 65 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिन भर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत US संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमेरिका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब US और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंप व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज, ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात

मॉर्निंग न्यूज़ अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम माटी के स्वर।

माटी के स्वर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पहला गीत। हमारे ये श्रोता हैं सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, गिरीश करण यादव, युवान ढाबेश यादव, हथबंद नेवधा से सेवक राम यादव, टुपेंद्र कुमार यादव, तुलेंद्र कुमार यादव और देव कुमार यादव, ग्राम दुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू, बलौदा अकलतरा से हैं दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया, युग कुमार झेरिया और भाटापारा से राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत। भाटापारा से ही हैं हमारे ये श्रोतागण राम श्याम रतन मुंदड़ा, रचनाकार मुंदड़ा, रावण भाटा भाटापारा से बबला यादव, रिकी राम यादव, श्रीमती कमलेश्वरी यादव। आप सभी की पसंद पे आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत कुलेश्वर ताम्रकार की आवाज में, ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अब महिला सभा हेतु सूचना सुनिए। श्रोताओं, फोन करें। गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 25 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 24 अगस्त 2026 सोमवार प्रातः 11 बजे से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा अतिथि देवो भवः। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं बातों बातों में, क्या कहना और जब वी मेट। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। नंबर है हमारा 266592, STD कोड 07752। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहे।

FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। और आइए सुनते हैं अगला गीत आप सभी की पसंद पर, पोड़ी पाली से राम सनेही साहू, मीना साहू, ब्रह्मानंद परमानंद, संध्या, प्रियंका, हर्ष, महिमा, प्रज्ञा, तन्मय, सोमांश और आनंद साहू। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम, सूरज पारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम टेलर। मारवाड़ी कुआं भाटापारा से हैं सियाराम टेलर, अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी और बेबी अनीशा, और रायपुर से हैं नीलू मेघ, जितेंद्र भी हैं साथ में। सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन। हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा। ओवरेठी पारा भाटापारा से हैं अनीता साहू, वीणा साहू, नेहा साहू और मोनिशा साहू। भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। आप सभी की पसंद पे आइए सुनते हैं अब अगला गाना, आवाज है राजकुमार निर्मलकर की।

0: और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का गीत। पोड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदू, निखिल चंदन, वसुंधरा चंदन और प्रांजल चंदन। जिला मुंगेली सिंघनपुरी कुकुरहट्टा से हैं लव सिंह ठगवा सिंह, श्याम शंकर लोकू, महाराज खीरू साहू, अनुज महेश साहू, दशरथ सोनकर और तुलसी कोटवार। ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू और डिकेश कुमार साहू। साथ में हैं वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। बिलगहना शक्ति बहरा से हैं श्याम शंकर मिस्त्री, बाबा विजय पायलट, रागिनी गीता देवी, शिवशंकर जयशंकर, दीनू कृष्णा और मनीष प्रकाश। पेंड्रा धनगवा बारपारा से हैं कैलाश कुमार दरकेश, चंद्रबाई दरकेश, सुरेंद्र कुमार दरकेश, श्याम शंकर दरका, प्यारेलाल सुनवानी, वनवारी लाल कोटा और मदन लाल राठौर। आप सभी की पसंद पे आइए सुनते हैं एक भजन आवाज नवल और साथियों की।
1: डमरू डम डम बजा दे तोर डमरू ला डम।

अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, पसंद आप सभी की। लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दें।

बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा। आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 2665 92, STD कोड जरूर लगाएं 07752। अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से आप पूछ सकते हैं। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गाना, पसंद आप सभी की। बुड़गहन, ग्राम बुड़गहन से हैं राम दुलारी प्रजापति, श्याम शरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति, शशिकांता प्रजापति। दत्रिंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा। भाटापारा से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, वेदबाई वर्मा, सुमित्रा, योगिता और फलेश्वरी वर्मा। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वरी रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी भाव्या रजक, कुमारी टानिया रजक। और आप सभी हमारे श्रोता लुधियाना पंजाब से हैं, अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फ़कीर, डब्लू उल्ला फ़कीर, परवीन।

तुलसी शर्मा और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही आज का माटी के स्वर कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

से 9:55 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम और 9:55 पर आकाशवाणी रायपुर से प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे। फिलहाल जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

माटी के स्वर, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9 बजे हैं।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और कार्यक्रम है चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हेट स्टोरी 3। इस फिल्म का गीत अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में, रश्मि विराग ने इसे लिखा है, अमाल मलिक का संगीत।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। ये दिवस हमें भारत की अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर देता है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। ये दिन हमारे वैज्ञानिकों के समर्पण, प्रतिभा और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को सलाम करने के साथ साथ युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं बटला हाउस, इस फिल्म का गीत नेहा कक्कड़, तुलसी कुमार और बी प्राक की आवाजों में। तनिष्क बागची और देव कोहली ने इसे लिखा है, संगीत है तनिष्क बागची और विशाल शेखर का।

मुबारका फिल्म का गीत सुनिए मीका सिंह और प्रकृति कक्कर की आवाजों में। इसे लिखा है कुमार ने, गौरव रोशनी का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं वार। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजें हैं। कुमार ने इसे लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म का गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में तनिष्क बागची आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और तनिष्क बागची और वीजू शाह का संगीत।

नेहा कक्कर और मीका सिंह और कुमार सानू की आवाजों में सुनिए सिम्बा फिल्म का ये गीत। शब्बीर अहमद ने इसे लिखा है, तनिष्क बागची का संगीत।

तुषार कपूर की आवाज में। तो ये था हमारा आज का खास संगीत सफर, जहां अलग अलग धुनों या फिर एक ही धुनों वाले गीत आपको सुनवाए गए, और कभी धुनें अलग थीं, कभी शब्द अलग थे। इस तरह के गीतों का ये सफर था। फिर होगी मुलाकात फिर किसी कार्यक्रम में। फिलहाल चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

जी हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सारा बानो की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी, नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी, छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानू को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला, और इसके बाद झुक गया आसमान।

0: दोस्तों, सायरा बानू जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा, और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगले आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम।
1: हाँ।
2: ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नई नई के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेगी।
2: आज

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी 3 फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

और हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।

0: हुआ है बट।
1: नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।
2: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर या आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9:55 हुए हैं। आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से।
3: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की शिक्षिका सुनीता यादव भी शामिल। छत्तीसगढ़ में अब तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। और रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक शाला खिचड़ी में पदस्थ शिक्षिका सुनीता यादव भी शामिल हैं। सुनीता यादव ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित करने, नवाचार के माध्यम से शिक्षा को प्रभावी बनाने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान करने वाला बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीर इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने कल दुर्ग में नवीन प्रधान जिला और सत्र न्यायालय भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कैशलेस जुर्माना भुगतान, AFR मोबाइल ऐप और कोर्ट फीस टिकट जनरेशन सिस्टम जैसे डिजिटल न्यायिक सुविधाओं का शुभारंभ भी किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 15 अगस्त से शुरू किए गए साइबर जागृति अभियान का दूसरा सप्ताह आज से शुरू हो गया है। इस दौरान आम बैंकों, ATM परिसरों, वित्तीय संस्थानों और अन्य जगहों पर लोगों को UPI फ्रॉड, फर्जी कॉल या मैसेज से ठगी, QR कोड और OTP से संबंधित ठगी के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। रायपुर पुलिस ने वॉश यानी काले नोटों को असली मुद्रा में बदलने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पुणे से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, 17 मोबाइल फोन और ठगी में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार गिरोह वर्ष 2005 से सक्रिय था और देश भर में 100 से अधिक लोगों से अरबों रुपए की ठगी कर चुका है। रायपुर में भी गिरोह ने एक व्यक्ति से 1,13,00,000 रुपए ठगे थे। इस मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सूरजपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के बाईपास रोड पर शनिवार को एक तेज रफ्तार हाईवा और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हाईवा चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के मारवाही थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से बैगा दंपति की मौत हो गई। घटना ग्राम कटरा ढपनी पानी में शनिवार शाम करीब 7 बजे की है। तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पति पत्नी जमीन पर गिर पड़े। परिजन दोनों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मारवाही ले गए, जहां चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। रायपुर के नकटी गांव स्थित ब्लू वाटर खदान में डूबे आदिल खान का शव पानी की सतह पर मिला है। 3 दिनों तक SDRF और NDRF की टीमें गहरे पानी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती रहीं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। शनिवार देर रात शव खुद पानी के ऊपर आ गया। घटना के बाद से परिजन लगातार मौके पर मौजूद थे। बता दें कि प्रशासन ने इंडियन नेवी से भी मदद मांगी थी। इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड की विशेष टीम आज रायपुर पहुंचने वाली थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की शिक्षिका सुनीता देव भी शामिल। छत्तीसगढ़ में अब तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। और रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: आप सभी को हमारा प्यार और स्वागत आपके फेवरेट प्रोग्राम आओ बच्चों में। आशा करते हैं अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए आप सभी स्वस्थ हैं और खुश हैं। बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे खूबसूरत चीज क्या लगती है, तो हमारे कुछ साथियों का जवाब होगा गार्डन या आंगन में खिले सुंदर फूल। कोई बच्चा सोच रहा होगा सुबह का उगता सूरज, या कुछ बच्चों के लिए बारिश की बूंदें, और कुछ नन्हे बच्चों का जवाब होगा मम्मी पापा या किसी अपनों का मुस्कुराता हुआ चेहरा, है ना बच्चों। और इन सारी खूबसूरत चीजों को महसूस करने और देखने के लिए हमारे पास एक अनमोल तोहफा है। जी हाँ बच्चों, वो है हमारी आँखें। और यदि बच्चों सुबह जब आप उठते हैं सूरज की किरणों को नहीं देख पाते हैं, या जब आप पढ़ाई के लिए किताबें खोलें लेकिन आपको अक्षर दिखाई नहीं दें, या फिर अपने आसपास खड़े लोगों का आप चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, तब आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, सही सोचा आपने, बहुत बुरा लगेगा, आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए बच्चों, आँखों को सिर्फ हमारे शरीर का अंग नहीं लेकिन दुनिया को देखने की खिड़की भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि हमारे जाने के बाद भी हमारी आँखें किसी दूसरे के जीवन में रोशनी ला सकती है। और इसी सुंदर विचार से जुड़ा है हमारा आज का विषय, एक छोटा कदम और बड़ी रोशनी, नेत्रदान महादान। हर साल बच्चों हमारे देश में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नेत्रदान के बारे में सही जानकारी देना एवं अधिक से अधिक लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना है। हमारे बहुत से नन्हे साथियों के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि नेत्रदान होता क्या है। नेत्रदान का अर्थ है बच्चों, किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उनकी आंखों से उपयोगी कॉर्निया लेकर जरूरतमंद व्यक्ति के उपचार में उसका उपयोग किया जा सके। कॉर्निया आंख के सामने वाला पारदर्शी हिस्सा होता है। बच्चों, बहुत से लोगों में कॉर्निया के खराब होने पर या अपारदर्शी हो जाने के कारण उनको दिखाई देना बहुत कम हो जाता है। ऐसे मामलों में कॉर्निया के प्रत्यारोपण से दृष्टि वापस लाने में मदद मिल सकती है। और अच्छी बात ये भी है बच्चों कि एक व्यक्ति के दोनों कॉर्निया दो अलग अलग जरूरतमंद लोगों को दृष्टि देने में उपयोगी हो सकती है, यानी एक व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी आंखें किसी और की दुनिया को रोशन करने में मदद कर सकती है। इसी कारण बच्चों नेत्रदान को महादान भी कहा जाता है। नेत्रदान की प्रक्रिया भी आसान है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में नेत्रदान करने की इच्छा व्यक्त करता है तो मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को इससे संबंधित नेत्र बैंक या संस्था को सूचना देनी होती है, और संस्था के दस्तावेज के अनुसार मृत्यु के बाद आँखों को जल्द से जल्द 4 से 6 घंटे के अंदर प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसमें नेत्र बैंक की प्रशिक्षित टीम आकर यह आवश्यक प्रक्रिया पूरी करती है, और प्रक्रिया 20 से 30 मिनट के अंदर पूरी भी हो जाती है। नेत्रदान की प्रक्रिया में बच्चों चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं आती है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मरने के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, और यदि आंखें जला दी गई तो वे राख हो जाएंगी, लेकिन अगर उनका दान कर दिया जाए तो वे इस दुनिया से जाने के बाद भी किसी नेत्रहीन व्यक्ति की अंधेरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। बच्चों, हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो कि आंखों की पुतली की खराबी के कारण देख नहीं पाते हैं, उनमें से बहुत सारे हमारे छोटे बच्चे भी हैं। ऐसे में बच्चों हमारा एक सही फैसला उन्हें पूरी जिंदगी की रोशनी दे सकता है, और छोटे बड़े सभी नेत्रदान कर सकते हैं, इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। चश्मा पहनने वाले लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं बच्चों, जिसमें अंतिम निर्णय नेत्र बैंक की चिकित्सीय जांच के आधार पर होता है। बच्चों, इस तरह से नेत्रदान केवल आँखों का दान नहीं है, यह उम्मीद का दान है, उजाले का दान है, एक नई दृष्टि का दान है। तो आइए इस नेत्रदान पखवाड़े पर हम स्वयं जागरूक बने

और अपने परिवार में भी जागरूकता फैलाएं। याद रखिए बच्चों, जीवन में रोशनी फैलाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने जाने के बाद भी किसी की दुनिया को रोशन कर जाना उससे बड़ा मुझे लगता है शायद ही कोई उपहार हो। इस सुंदर संदेश के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बच्चों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि अपनी सुंदर प्रस्तुतियों और मीठी मीठी बातों से कार्यक्रम को रौनक बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में

0: श्रीवास्तव कृष्णा पब्लिक स्कूल में हिंदी और संस्कृत की अध्यापिका आप सभी को नमस्कार करती हूँ। कृष्णा पब्लिक स्कूल बिलासपुर का एक प्रसिद्ध संस्थान है। बिलासपुर में इसकी मुख्य रूप से तीन शाखाएं हैं, जो नर्मदा नगर, आसमा सिटी एवं कोनी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के पास स्थित है। CBSE के द्वारा मान्यता प्राप्त KPS में नर्सरी से 12वीं तक की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ कंप्यूटर, खेल, संगीत और शास्त्रीय नृत्य की भी शिक्षा प्रदान की जाती है। कृष्णा पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती सविता त्रिपाठी एवं श्री वेदांत त्रिपाठी, प्रिंसिपल श्रीमती रुनकी अम्बस्ट, वाइस प्रिंसिपल श्री रमन मिश्रा जी के नेतृत्व में हम सभी शिक्षक छात्रों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी भविष्य में अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।
1: माँ सरस्वती की वंदना के साथ बच्चों हमारे बाल कलाकार कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। प्रस्तुति दे रहे हैं हिमनीश, परिधि, जानवी, शिखर, आरव, अयान, शौर्य और दीक्षा।

0: वाह सुंदर प्रस्तुति बच्चों, आपकी आवाजों में भक्ति के साथ मिलकर गाने की खूबसूरत कला भी थी। बच्चों अब हमें आयान संत कबीर और रहीम के दोहे सुनाएंगे।
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आयान अली कृष्णा पब्लिक स्कूल कोनी में कक्षा छठवी सा का छात्र हूँ। मैं आपको रहीम व कबीर के दोहे सुनाना चाहता हूँ। रहीम जी और कबीर जी हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। कबीर जी ने समाज की बुराइयों पर चोट की, जबकि रहीम जी ने प्रेम व्यवहार और रिश्तों को निभाने की सीख दी। दोनों की भाषा सरल थी और उनकी बातें आज भी अत्यंत उपयोगी हैं।

0: धन्यवाद।
1: क्या बात है अयान, संत कबीर और रहीम के दोहों को बड़ी ही मधुरता के साथ आपने प्रस्तुत किया। इन दोहों की खासियत है बच्चों, कुछ ही शब्दों में हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख मिल जाती है। कबीर के दोहे जहां हमें सच्चाई और अच्छे आचरण की राह दिखाते हैं, वहीं रहीम के दोहों में प्रेम, विनम्रता और रिश्तों की सुंदर सीख हमें मिलती है। बच्चों, अगली प्रस्तुति होगी भूमिका की, रक्षाबंधन पर प्यारी सी कविता के साथ पर्व के बारे में भी हमसे आप बातें साझा करेंगी।
2: आप सभी को नमस्कार, मैं भूमिका साहू कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर आपको कुछ बताने आई हूँ। रेशम के धागों में सिमटता बहनों का पावन प्यार है, भाई बहन के अटूट स्नेह का यह अनुपम त्योहार है। माथे पर तिलक लगा कलाई पर जब रेशमी डोर सजाती है, हर सुख दुख में साथ निभाने का भाई को वचन दिलाती है। धागा नहीं ये तो विश्वास की सबसे पक्की एक ढाल है, इस पावन बंधन के आगे फीका हर गम और मलाल है। कलाई पर बंधा यह रेशमी धागा केवल एक सूत नहीं है, ये तो इतिहास बदलने वाली ताकत है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार दानवीर राजा बलि ने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को पाताल लोक का द्वारपाल बना लिया था। तब माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि की कलाई पर पहला रक्षा सूत्र बांधा। जब बलि ने उपहार मांगने को कहा तो माता ने सोने चांदी के बजाय अपने स्वामी भगवान विष्णु को मांग लिया। महाभारत की कथा कौन भूल सकता है, जब युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा था। कृष्ण ने कलाई के उस छोटे से कपड़े का मान रखते हुए संकट के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। ये कथाएं हैं। दोस्तों, राखी केवल एक धागा नहीं है बल्कि यह भाई बहन के बीच प्रेम विश्वास का प्रतीक है। आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भाई बहनों के साथ प्रेम और सम्मान से रहेंगे तथा जरूरत के समय एक दूसरे की सहायता करेंगे। ईश्वर से बस यही दुआ है यह रिश्ता सदा यूं ही खिला रहे। भाई बहन का प्यार निराला जीवन भर रहे सबसे प्यारा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: वाह, सुंदर प्रस्तुति के साथ भूमिका आपने रक्षाबंधन पर्व का प्यारा सा संदेश हम सभी तक पहुँचाया। हर रिश्ते में बच्चों हमें प्रेम, विश्वास, सम्मान और

0: सुरक्षा की भावना को मजबूत करना चाहिए। और आइए अब मिलते हैं ईशांत और शौर्य से, जो कि नेत्रदान महादान इस पर प्रेरणादायक संवाद की प्रस्तुति देंगे।
1: नमस्कार, मेरा नाम ईशांत खुंटिया।
2: और मेरा नाम शौर्य प्रताप।
1: हम कृष्णा पब्लिक स्कूल कोनी में कक्षा 6वीं में पढ़ते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा संकल्प किसी के जीवन में रोशनी की नई शुरुआत हो सकती है। आइए एक छोटे से संवाद के रूप में मैं और शौर्य इसे आपको समझाते हैं। शौर्य, तुम क्या सोच रहे हो?
2: ईशांत, आज मैंने नेत्रदान के बारे में पढ़ा। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी आंखें हमारे बाद भी किसी के काम आ सकती है?
1: हाँ, लेकिन नेत्रदान होता क्या है?
2: नेत्रदान का मतलब है अपने नेत्रों का दान करना। हम मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की दृष्टि वापस लाने में उसकी मदद कर सकते हैं।
1: मतलब हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें किसी की दुनिया रोशन कर सकती है?
2: बिल्कुल, यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है।
1: शौर्य, लेकिन क्या सिर्फ आंखें दान करने से किसी को पूरी तरह दिखाई देने लगता है?
2: जरूरी नहीं है ईशांत, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले की आंखों में किसी तरह की समस्या तो नहीं। लेकिन नेत्रदान कई लोगों की दृष्टि वापस लाने में मदद करता है। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे में यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और दोस्तों, नेत्रदान जो है उसकी कोई उम्र नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, जिसकी सूचना उचित संस्थान में आपको पहले से ही बतानी होती है।
1: वाह, मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था।
2: हमें लोगों को नेत्रदान के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए।
1: सच कहा शौर्य तुमने, एक छोटा सा फैसला किसी के लिए जिंदगी भर की रोशनी बन सकता है।
2: बिल्कुल ईशान, हमें यह याद रखना चाहिए।
1: तो चलो दोस्तों, आज से हम खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें।
2: क्योंकि दोस्तों, हमारी जिंदगी की रोशनी हमारे साथ खत्म हो यह जरूरी नहीं। नेत्रदान केवल आँखों का दान नहीं, बल्कि किसी की दुनिया में उजाला बांटने का संकल्प है।
1: आइए दोस्तों, आज हम सब संकल्प करें कि अपना नेत्र दान करके दूसरों का जीवन रोशनी और खुशियों से भर देंगे।
2: तो दोस्तों, याद रखिए, हमारी आंखें मृत्यु के बाद भले बंद हो जाए, पर किसी की दुनिया हमेशा के लिए रोशन हो जाए।
1: थैंक यू।
0: वाह बच्चों, आप दोनों ने बड़ी ही सरलता और खूबसूरती से नाटक के जरिए नेत्रदान महादान विषय पर कमाल की एक्टिंग की। जी हाँ बच्चों, यदि हम सब मिलकर जागरूक होंगे तब निश्चित ही अंधकार से उजाले की ओर आगे बढ़ सकेंगे। और आइए अब जुड़ते हैं आरव से, जिनसे सुनेंगे हम श्लोक।
3: सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम आरव आर्यन अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम कृष्णा पब्लिक स्कूल अस्ति। अद्य अहम् भवतां समक्षं शूरावयं धीरावयं इति गीतं गातुम् इच्छामि।

सा सततम्। जन सेव का अति भाव का शुभ चिंत का नियतम्। गत भीत योधित नीत योधिर शक्ति यो निखिला।

0: नो देहि परमात्मन। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। धन्यवाद।
1: वाकई बच्चों, संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति और ज्ञान परंपरा की पहचान भी है। बहुत खूब आरव, अपनी प्रस्तुति के माध्यम से आपने हमें उसी विरासत से जोड़ दिया।

0: बच्चों अगली प्रस्तुति होगी दीक्षा की, जिनसे हम शिक्षक दिवस के महत्व के बारे में जानेंगे।
1: नमस्कार सभी को, आज मैं आप सभी को शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ बताना चाहती हूँ। एक साधारण शिक्षक से देश के राष्ट्रपति तक का सफर हमें सिखाता है कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। हमारे गुरु वह दीप है जो खुद जलकर हमें सही इंसान बनाते हैं। मेरा नाम दीक्षा पटेल है, मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताना चाहती हूँ। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के कुछ शिष्य उनके जन्मदिन पर उन्हें उपहार देना चाहते थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव हम आपका जन्मदिन कैसे मनाएं? राधाकृष्णन जी ने बहुत विनम्रता से कहा, यदि आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो इसे केवल मेरा जन्मदिन ना मनाकर शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। दोस्तों, उनका यह उत्तर उनकी महान सोच को दर्शाता है। वे मानते थे कि एक अच्छा शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता बल्कि विद्यार्थियों को अच्छा इंसान बनाने की राह दिखाता है। दोस्तों, इसी भावना के सम्मान में भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन राधा कृष्णन जी की जयंती भी है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी,

0: नमः। धन्यवाद।
1: बहुत खूब दीक्षा, आपने भारत के महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन से जुड़ी हमें जानकारी दी। यही नहीं, उनकी सोच और व्यक्तित्व को भी हमारे सामने सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया। वाकई बच्चों, हमारे शिक्षक केवल हमें किताबों का ज्ञान नहीं देते, लेकिन हमें जीवन जीने और आगे बढ़ने की दिशा भी सिखाते हैं।
2: नमस्कार। नामुमकिन किसने कहा, जब हौसला हो तो मुश्किल भी आसान लगने लगती है। मैं विभा सूर्यवंशी कक्षा 7A की छात्र हूँ, कृष्णा पब्लिक स्कूल कोनी बिलासपुर से यहाँ आई हूँ। आज मैं अपनी बात एक छोटे से सवाल से शुरू करना चाह रही हूँ। नामुमकिन किसने कहा, जब हम किसी मुश्किल काम को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है, यह मुझसे नहीं होगा। लेकिन सोचिए, अगर हर इंसान ने मुश्किल देखकर कोशिश करना छोड़ दिया होता तो आज दुनिया में इतनी सारी नई चीज़ें नहीं होती। लेकिन क्या दोस्तों, सच में ऐसा है? मुश्किल काम का मतलब यह नहीं है कि हम उसे नहीं कर सकते, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें उसे करने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना होगा। कभी कभी हमें कम अंक मिलते हैं, कभी हमारी मेहनत का परिणाम हमारी उम्मीद जैसा नहीं आता, कभी हम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं और सोचते हैं कि हम पीछे रह गए। लेकिन याद रखिए दोस्तों, पीछे होना और हार जाना एक बात नहीं है। जब तक हम कोशिश करते रहे तब तक हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, एक छोटी सी चींटी को ही देखिए, वह अपने से कई गुना बड़ा सामान उठाकर चलती है। रास्ते में रुकावटें तो आती है, वह रास्ता बदलती है लेकिन रुकती नहीं। हमें भी यही सीखना है। रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन हमारी कोशिश उससे भी बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, हमें हर दिन बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, बस आज कल से थोड़ा बेहतर बनना है, एक गलती से कुछ सीखना है, एक डर का सामना करना है और अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाना है। क्योंकि बड़ी सफलता अचानक से नहीं मिलती, वह हमारी छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। और कोई जब कहे तुम नहीं कर सकते तो उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मुस्कुराकर अपने मन में कहिए, नामुमकिन किसने कहा। दोस्तों, शायद आज हमें खुद पर पूरा विश्वास तो ना हो, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहे तो एक दिन वही काम जिसे हम आज मुश्किल समझते हैं कल हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, अपने सपनों को सिर्फ इसलिए मत छोड़िए क्योंकि रास्ता कठिन है। सपने बड़े रखिए, मेहनत सच्ची रखिए और खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि मंजिल कितनी दूर है यह मायने नहीं रखता। हर दिन उठाया गया एक कदम

0: हमें मंजिल की करीब ले जाता है। तो आज से जब भी कोई मुश्किल सामने आए, बस एक सवाल पूछिए, नामुमकिन किसने कहा? धन्यवाद, और याद रखिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपकी कहानी का सबसे अच्छा पन्ना अभी बाकी है।
1: वाह विभा, बहुत सुंदर और बड़े ही आत्मविश्वास और प्रभावशाली ढंग से आपने अपने विचार हम तक रखे। आपकी बातों से हम सभी ने सीखा कि अगर हमारे भीतर विश्वास हो, मेहनत करने का जज्बा हो और असफलता से सीखकर आगे बढ़ने का साहस हो, तो बड़ी सी बड़ी मंजिल भी हासिल की जा सकती है, है ना बच्चों?
2: जी दीदी।
3: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परिधि कुशवाहा है। मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल कोनी बिलासपुर के कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको विज्ञान के बारे में कुछ अद्भुत बातें बताने वाली हूँ। दोस्तों, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर 3 ट्रिलियन से अधिक पेड़ हैं, जो मिल्की वे आकाशगंगा में अनुमानित तारों की कुल संख्या से कई अधिक है। दोस्तों, आकाश में दिखने वाले एक सामान्य बादल का वजन लगभग 10 लाख टन तक हो सकता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी, बिजली की एक ही चमक अपने आसपास की हवा को लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकती है, जो सूर्य की सतह से लगभग 5 गुना अधिक गर्म है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, शुक्र ग्रह वीनस पर एक दिन उसके 1 साल से भी बड़ा होता है। उसे अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 243 दिन लगते हैं, जबकि सूरज का एक चक्कर लगाने में केवल 225 दिन लगते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। इसके 2 दिल गलफड़ों तक रक्त पहुंचाते हैं और 1 पूरे शरीर में। दोस्तों, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। धन्यवाद।
1: बड़ी ही रोचक जानकारी दी आपने परिधि, विज्ञान से संबंधित, बहुत खूब। बच्चों, ये शानदार प्रस्तुति थी कृष्णा पब्लिक स्कूल कोनी बिलासपुर के बच्चों की। आशा करते हैं इनकी प्रस्तुति और आज के कार्यक्रम का लुत्फ आप सभी ने अवश्य उठाया होगा। और यदि आप भी अपनी बातों और प्रस्तुतियों के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो जरूर पत्रों के द्वारा हमसे संपर्क आप कर सकते हैं। हमारा पता, कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी नूतन कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर। पिन नंबर है 495006। आप हमें पत्र, ईमेल, bsp@gmail.com पर भी मेल्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। और आपको बताना चाहेंगे बच्चों, कार्यक्रम में प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की। धीरे धीरे अब समय भी कार्यक्रम समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, तो दीजिए अनुमति आपकी दीदी लिंटा को कार्यक्रम समाप्त करने की। जय हिंद।
2: जय हिंद।
4: कार्यक्रम आओ बच्चों अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुति थी लिंटा की। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत अमाल मलिक और तुलसी कुमार की आवाज़ों में, सरबजीत फिल्म से लिया है इसे हमने। रश्मि विराग ने लिखा है, अमाल मलिक का संगीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
5: देश की सुरीली धड़कन
6: विविध भारती,
4: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।

0: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
0: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल। 22 को की बातें यादों के उजाले।
0: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
2: सखी सहेली।
0: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।
0: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
4: मुझे याद सब है जरा जरा।
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
0: सुरीली संदली।
5: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ें, विधि विनोद चोपड़ा ने लिखा है, शांतनु मोइत्रा का संगीत। फिल्म का नाम वजीर।

और आइए अब सुनते हैं सुपर 30 फिल्म का गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ें। अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, अजय अतुल का संगीत।

और अब एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा, आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर है 266592, STD कोड 07752। आपके फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच।

और अब आइए सुनते हैं सॉरी भाई फिल्म का ये गीत है। आवाज़ के की, अमिताभ वर्मा ने लिखा है, गौरव दयाल का संगीत।

0: आइए अब सुनते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमा शंकर पांडे जी से।
1: नमस्कार मित्रों, अब आप सुनेंगे अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था पर आधारित दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमा शंकर पांडे से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सावन माह में लोग अनेकानेक प्रकार से शिव आराधना में लगे हैं, जिनमें से कांवड़ यात्रा भी एक है। इसी क्रम में आज एक विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 10 से 15 हजार कांवड़ यात्रियों के शामिल होने की संभावना है। ये सभी कांवड़ यात्री आज प्रातः 6 बजे तखतपुर बेलपान से जल लेकर ग्राम महुआ कापा, साले कापा, नौवा पथरा, दैजा, बीजामोड़, छोटे करगी, लोकबन, लेटिया, गोबरीपाट होते हुए अग्रसेन भवन कोटा पहुंचेंगे। अल्प विश्राम पश्चात कांवड़ यात्री पुनः ग्राम अमाली मोड़, जोगीपुर, बजरंगबली मंदिर, भैंसाझार मोड़, लखनी देवी मंदिर रतनपुर होते हुए शाम 6 बजे महामाया धाम रतनपुर के धर्मशाला पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। साथियों, जिस कांवड़ यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो, वहां सड़कों में दृश्य कैसा होगा अनुमान लगा सकते हैं। सभी कांवड़ यात्रियों से अनुरोध है, यद्यपि सुगम यातायात व्यवस्था में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद होगा, फिर भी आप सभी सड़क के एक किनारे चले, कंधे में कांवड़ की स्थिति आमने सामने अर्थात खड़ी हो, न कि आड़ी, ताकि सड़क में शेष वाहन के लिए भी आवागमन हेतु तो स्थान बचा रहे। मित्रों, आज ही महादेव भक्त परिषद बहतराई के कांवड़ यात्री प्रातः 9 बजे बहतराई से यात्रा प्रारंभ करेंगे, जो ग्राम सकर्रा होते हुए धौरा भाटा स्थित भुलकेश्वर महादेव में जलाभिषेक करेंगे। आपसे भी यही अनुरोध है, सड़क के एक किनारे चलें। कांवड़ यात्रियों के दल को देखते हुए सभी वाहन चालकों से अनुरोध है, धीरे चलें, बहुत ही अधिक सुरक्षित चलें। साथियों, आज लाइब्रेरी असिस्टेंट पद की भर्ती परीक्षा शहर के 11 परीक्षा केंद्रों में हो रही है। यह परीक्षा प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक होगी, जिसमें 5000 से अधिक परीक्षार्थी

0: अपनी किस्मत आजमाएंगे। बिलासपुर पुलिस की सभी को शुभकामनाएं। आप सभी से यही कहना है कि आज वर्षा की संभावना जताई जा रही है, अतः घर से जल्दी निकलें ताकि विषम परिस्थिति में भी कोई हड़बड़ी ना रहे। दोस्तों, जब भी किसी यात्रा में जा रहे हों, प्रयास करें सामान कम हो, बैग, अटैची, सूट के साथ कम से कम हो। ऐसा करने से यात्रा सुरक्षित होगी और आरामदायक होगी। हमेशा यात्रा नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये थे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर, जो हम तक पहुंचा रहे थे उमा शंकर पांडे जी।

महिला सभा हेतु सूचना सुनिए। श्रोताओं, फोन करें, गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 25 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 24 अगस्त 2026 सोमवार को प्रातः 11 बजे से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा अतिथि देवो भव। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं बातों बातों में, क्या कहना और जब वी मेट। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पर और ये नंबर है 2665922 एसटीडी कोड ज़रूर लगाइएगा 07752077752। आपके फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। महिला सभा की एक और सूचना आपको दे दें। श्रोताओं, आप महिला सभा में अपनी फरमाइश के गीत लिखकर भेज सकते हैं और सुन सकते हैं महिला सभा में। आपकी फरमाइश हमें मेल कीजिएगा mahilasabha@gmail.com पर। एक बार फिर सुन लीजिए mahilasabha@gmail.com। महिला सभा का प्रसारण हर मंगलवार और गुरुवार को शाम 5:35 से होगा, तो ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिएगा mahilasabha@gmail.com। सूचना समाप्त हुई। सूचनाओं से पहले सॉरी भाई फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज़ थी के की और अमिताभ वर्मा ने लिखा था, गौरव दयाल का संगीत। और इसी के साथ नए तराने कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 11 बजने वाले हैं अब से 11:55 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 11:55 पर प्रादेशिक समाचार और फिर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे और उसके बाद विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम 12 बजे से पुनः शाम 5 बजे तक रिले किए जाएंगे। आइए फिलहाल जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। श्रोताओं, एक गीत हमारे आसपास गूंजने लगता है जो कहता है, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।
0: आवारगी का ये अंदाज लेकर के अपनी कलम के सहारे जिन्होंने इस फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई, वो अमर नाम है कवि शैलेंद्र का।
1: जी हाँ, शैलेंद्र साहब की ये जन्मतिथि 30 अगस्त बहुत सी स्मृतियों के द्वार

0: खोल देती है। शैलेंद्र जी के गीत वो गीत हैं श्रोताओं, जो हमारे आसपास की जिंदगी को बयान करते हैं, जिन्होंने जीवन का जो गहरा दर्शन है उसे बहुत सरल शब्दों में हम तक पहुंचाया है। बल्कि जयंती जी, मैं तो ये कहूंगी कि उनके लिखे जो गीत हैं उसकी कई बार तो पंक्तियां जैसे हमारे लिए रोजमर्रा में लोकोक्तियां या मुहावरे तक बन चुके हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी। मानवीय संबंधों में जो क्लिष्टता होती है, कई बार जो जज्बाती मुश्किलें देखने को मिलती है और उनकी वजह से जितने अवसाद इंसानों को झेलने पड़ते हैं, उन सभी को बड़ी सहजता से अपने कलम के सहारे उन्होंने अपनी रचनाओं में उंडेला था और हम सबके दिल को छू लिया था।
0: बिल्कुल, और शैलेंद्र जी की स्मृति को हम आज नमन करते हैं, जिन्होंने लिखा था, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार।
1: जीना इसी का नाम है।

0: जयंत जी
1: जी
0: जिस फलसफे की बात हमने की वो इस गीत में जैसे उभर कर आ रहा था, और कोई श्रोता, कोई दर्शक, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस गीत से प्रभावित हुए बिना रहा हो। ऐसी ही बहुत सी यादें हैं शैलेंद्र साहब की, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब इस प्रोग्राम को हम बना रहे हैं, हमें हमारी खुशकिस्मती से मिले दिनेश शैलेंद्र जी, जो शैलेंद्र जी के छोटे बेटे हैं, और उनसे हमने टेलीफोन पर बात की और उन्होंने हमसे यादें साझा की कि किस तरह से पिता शैलेंद्र उन्हें लगते थे, कैसे उन्होंने देखा, और एक गीतकार, फिल्मकार शैलेंद्र दिनेश जी की नजरों में कैसे थे। आइए सुने उनकी इन स्मृतियों को, हमने उनसे टेलीफोन पर बात की। नमस्कार दिनेश जी, मैं विविध भारती की ओर से आपका स्वागत करती हूं और आपके पिता महान गीतकार श्री शैलेंद्र जी की स्मृतियों को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका।
2: नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दिनेश जी, एक पुत्र से पूछूंगी कि आपने अपने पिता को किस तरह से देखा?
2: मनीषा जी, सच पूछिए तो बाबा जिस दिन गुजरे
0: जी,
2: उसी दिन हमें पता चला कि शायद वो कुछ बड़ा काम करते होंगे, कि इतने सारे लोग, इतनी भीड़, अगले दिन पेपर में उनकी फोटो और उनका न्यूज, ये सब हमारे को टोका सा दिया था इन सब चीजों ने
0: जी।
2: क्योंकि हम लोगों के घर पे माहौल जो था वो ऐसा था कि बहुत ही नॉर्मल, तो हमें तो ऐसा लगता था कि शायद शंकर जयकिशन, राज कपूर, सलील चौधरी, एस डी बर्मन, ये सभी के घर जाते आते रहते होंगे और कोई खास बात नहीं है, क्योंकि बाबा का भी रहन सहन और घर पे जो हम लोगों के साथ उनका वो था बिहेवियर, वो एकदम ही नॉर्मल था। हम सबसे छोटे थे तो जब भी घर आते थे तो हमें कोई वो फिक्र नहीं होती थी कि वो थके होंगे या काम करके आए या दिमागी तौर से आदमी थक जाता।
0: जी जी जी।
2: लेकिन हम बोलते थे घोड़ा बनो तो वो घोड़ा बन जाते थे, हमारे साथ म्यूजिक के गेम्स खेलते थे, हम लोग सब

0: बच्चों के साथ, वो बहुत ही घुल मिल के और बहुत ही आइडियल फादर। और एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि वो खार में हम जब उन्होंने बंगला ले लिया था
1: जी जी,
0: तो जो भी सुविधाएं होती हैं वो सभी थी हमारे घर में, लेकिन बाबा बहुत कम डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम लोगों के साथ खाते थे।
1: अच्छा।
0: वो अक्सर जमीन पर ही बैठ के खाया करते थे और हम लोगों को वो उन्होंने यही समझाया था कि यही हमारी जगह है, यहीं से हम शुरू हुए हैं। और

0: और हम लोगों को वो उन्होंने यही समझाया था कि यही हमारी जगह है, यहीं से हम शुरू हुए हैं। और बार बार वो अपने बचपन की कहानियां हम लोगों को सुनाते थे कि कितनी गरीबी में वो पले बड़े थे। वो
1: जी,
0: चाहते थे कि हम लोग भी वैसे ही बने।
1: आपने जो ये बात बताई कि वो जमीन पर बैठकर खाते थे, एकदम जिसको कहते हैं ना कि मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान जो होता है, वो थे शैलेंद्र जी। और ये उनकी हर गीत में दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके गीतों ने, मैंने जो पहले भी बात कही थी कि उनके गीतों में जीवन दर्शन इतना गहरा और इतनी सरल भाषा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है,
0: बिल्कुल
1: ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ये इतनी बड़ी बात बहुत सरल शब्दों में। वहीं आपको तो खैर मैं क्या बताऊं, हम तो सुबह शाम रात दिन, जैसे उनके गीतों ने हम लोगों के जीवन को, हमारे श्रोताओं के जीवन को प्रेरित भी बहुत किया। अब मैं दिनेश शैलेंद्र जी से जानना चाहूंगी कि गीतकार शैलेंद्र अपने पिता को जब आप याद करते हैं तो उनके गीतों को लेकर आपको कैसा लगता है? अभी भी जब आप सुनते होंगे तो कई बार तो आंखें भरती होंगी आपकी, क्योंकि हम
0: बिल्कुल
1: लोगों की भी भर आती हैं, तो हमसे वो आपकी जो फीलिंग्स हैं उसे शेयर कीजिए ना।
0: देखिए, हम तो जब वो गुजरे थे तो 10 साल के ही थे, तो
1: जी
0: उनके गाने सुनते तो रहते थे। हमारे घर में म्यूजिक तो बजता ही रहता था, हर तरह के गाने बजते थे। लेकिन एक्चुअली जब बड़े हुए तब उनके गानों का मतलब समझ में आया, और फिर और जब हमारे एक्सपीरियंसेस हुए तो ये समझ में आया कि वो बहुत ही एक अलग ही किस्म से लिखते थे, जो बहुत कम राइटरों में एक टैलेंट है
1: जी जी
0: कि जो भी गाना उनका ले लें आप, एक परत अगर उठा दें
1: जी जी
0: जो नॉर्मल वर्ड से, तो
1: जी
0: आपको एक अलग मीनिंग अंदर दिखाई देगा और
1: बिल्कुल
0: पता चलेगा। हम आज तक उनके गानों के बारे में लिखते हैं और हमें भी सीखने को मिलता है और समझ में आता है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। मतलब उनके गानों में इतनी गहराई होती थी कि एक आम आदमी तो अपने तौर पे गा लेता था। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं कि गुलजार साहब के साथ एक दिन हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि होंगे राजे राजकुमार, एक श्री 420 का गाना है, मेरा
1: जी
0: जूता है
1: जी
0: जापानी,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: उसके एक अंतरा है कि होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे,
1: जी,
0: हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे।
1: क्या बात है।
0: उन्होंने बताया कि ये आप उसके मीनिंग ऐसे ही ऑर्डिनरीली आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक परत हटाओ तो शैलेंद्र इज टॉकिंग अबाउट द न्यू इंडिया। मोनार्की खत्म हो गई है और डेमोक्रेसी आ गई है, तो राजे राजकुमार तो हैं, होंगे अब सिंहासन, वो कोई भी आम आदमी जाके बैठ सकता है, ये बोलना चाह रहे हैं वो।
1: उनके अंदर की जो ये आग थी ना, ये उनकी हर रचना में दिखती है। एक फिल्म भुलाए नहीं भूलती, और वो है फिल्म तीसरी कसम, जिसको आपके पिताजी ने बहुत दिल से बनाया था, और आज तक वो फिल्म हमारे जहन में बिल्कुल तरोताजा है। वही
0: बिल्कुल
1: हीरा मन और वही सारी चीजें, वही राज कपूर साहब और वही गीत, उसको लेकर के कुछ बातें हम जरूर आपसे करना चाहेंगे दिनेश जी।
0: मनीषा जी, एक शॉर्ट स्टोरी थी फणीश्वरनाथ रेणु जी की, तो
1: जी,
0: जिस दिन उन्होंने पढ़ी, छोटी सी किताब थी,
1: मारे गए गुलफाम।
0: हाँ मारे गए गुलफाम नाम की कहानी थी, उन्होंने जब पढ़ी तो वो शुरू से आखिर तक एक ही उसमें पढ़ी फ्लो में, और जैसे ही पढ़ी उन्होंने किताब साइड में रखी और एक चिट्ठी लिख दी रेणु जी को।
1: जी
0: तो एक अजीब सा, मतलब उनको कोई जरूरत नहीं थी फिल्म प्रोड्यूस करने की, वो सबसे हाईएस्ट पेड राइटर भी थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर वो एक कहानी इतनी पसंद आई, जो हमारे रूट्स हैं वो बिहार के हैं
1: जी जी
0: एक्चुअली,
1: जी
0: तो उनको लगा कि वो कहीं अपने रूट्स के साथ जुड़ने में ये कहानी बहुत हेल्प कर रही थी उनको। तो एक जुनून सा सवार था कि मैं इस फिल्म को तो प्रोड्यूस करूंगा ही। फिर शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बीच में वो फिल्म में कुछ ज्यादा समय लग गया, जो एक साल में बननी चाहिए थी फिल्म, इनफैक्ट कुछ महीनों में बननी चाहिए थी,
1: जी
0: उस फिल्म को 5 साल लग गए, और जब तक फिल्म कंप्लीट होने लगी थी तब तक सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था, पर वो अकेले, मतलब उनके दिमाग में बस यही था कि ये मेरा सपना है और मैं इस सपने को पूरा करके ही छोड़ूंगा, और जो

0: भी था उनके पास वो सारा कुछ उन्होंने झोंक दिया उस फिल्म में और फिल्म कंप्लीट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म शुरू में चली नहीं। तो कई लोगों का ये मानना है शायद फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से उनकी डेथ हो गई, या वो बिल्कुल बात नहीं थी। जितना पैसा वो उस वक्त ले रहे थे ये 3-4 महीने में वो इजिली कवर अप कर सकते थे सारे लॉसेस। और ये कुछ महीनों की ही बात है कि सितंबर में फिल्म रिलीज हुई, दिसंबर में वो गुजरे और मार्च या अप्रैल में नेशनल अवार्ड अनाउंस हुए, तब लोगों की आंखें खुली कि भाई ये इसमें कुछ तो होगा। और उसके बाद वो फिल्म जहां भी लगी है बहुत अच्छा बिजनेस किया है और लोगों को सारे गाने भी पसंद आए हैं और बहुत चली।
1: अपने बाबा शैलेंद्र की स्मृतियां बांट रहे थे उनके सुपुत्र दिनेश शैलेंद्र। मनीषा जी, हम इस बातचीत को सुन रहे थे और उस दौरान फिल्म तीसरी कसम का एक गीत बार बार मन में कौंध रहा है, क्यों ना अपने श्रोताओं को सुनवाया जाए।
2: गीतकार शैलेंद्र की अनुपम कृति सेल्यूलॉइड पर लिखी एक कविता तीसरी कसम।

श्रोताओं, आज हमने स्मरण किया महान गीतकार शैलेंद्र को, और अब एक ऐसी संगीतकार जोड़ी की बातें जिनके गीत एक जमाने में लोगों को दीवाना बना दिया करते थे, और आज भी जब रेडियो से ये गीत बजते हैं तो उस जोड़ी की स्मृति को भी हम नमन करते हैं। और जयंत जी, हुस्नलाल जी और भगत राम जी, संगीतकार खयाम।

0: के गुरु थे जिन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले हमने खो दिया, और
1: जी
0: इसके अलावा नौशाद साहब के भी गुरु थे हुस्नलाल जी और भगत राम जी।
1: जिनके गीतों का हुस्न देखते ही बनता था
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: जिनके गीतों को सुन करके उनके संगीत के सब भगत हो जाया करते
0: क्या
1: थे।
0: बात है। तो आइए इस कार्यक्रम को सुनते हैं श्रोताओं, सरगम के सितारे। हमारा एक ये बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम होता था, इसके कुछ संपादित अंश आज की विविधा में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वर निम्मी मिश्रा का है, तो आइए सुनते हैं विविध भारती के संग्रहालय से चुनी गई ये रिकॉर्डिंग।

1944 में फिल्म चांद से सिने संगीत जगत में कदम रखा इस जोड़ी यानी हुसनलाल भगतराम ने इस फिल्म का गीत दो दिलों को ये दुनिया मिलने नहीं देती बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

0: वरिष्ठ फिल्म संगीतकार खय्याम, जो स्वयं संगीतकार हुसनलाल भगतराम जी के शिष्य हैं, अपने गुरु की सुरीली यादों में खो से जाते हैं और बताते हैं।
1: फिल्मी संगीत की दुनिया में पहली जोड़ी ये थी, तो दोनों मतलब शास्त्रीय संगीत के बहुत ही बड़े गुरु, और एज वेल एज उतनी ही महारत उनको लाइट म्यूजिक में, जिसमें वो ठुमरी हो, दादरा हो, गजल हो, गीत हो, तो ये मतलब बहुत बड़ी दोनों हस्तियां थे ये लोग। तो भाई मेरी खुश नसीबी ये कि मेरे गुरु थे, और मैं जो सरगम और स्वर और ताल का जो ज्ञान मुझे मिला उन्हीं से मिला, पहले स्वर सा जिसे कहते हैं।

0: उन्हीं से मिला, सरगम और सुर और सुर और ताल का। तो उन्हीं से ज्ञान मिला, दिल्ली में मुझे ये शिक्षा मेरी हुई। तो मैं बहुत ही मतलब भाग्यशाली हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे गुरु मुझे मिले, और जिनसे मतलब गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो तो सबको मालूम है, बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन उन्होंने तो मुझे जैसे अपनी औलाद की तरह प्यार दिया। तो ये उनका, और फिर धुने उन्होंने क्या सुरीली, क्या अच्छी और कैची और आसान धुने बनाई उन्होंने हर एक फिल्म में। आप उनकी कोई भी फिल्म आप बजाएंगे, आप देखिए कितना आसान और उम्दा और अच्छा संगीत,
1: मतलब सुरीले होने के साथ साथ वो बहुत सरल भी होता था।
0: जी हाँ, बहुत सरल होता था,
1: और फिर जब सरल हो सुरीला हो तो असर की तो क्या,
0: या यकीनन वो मकबूल होता है और आम लोगों तक, यानी हर खासो आम तक वो पहुंच जाता है।

0: प्यार की जीत ने युगल जोड़ी को अपार सफलता दिलाई। यूं तो संगीत का गहरा ताल्लुक होता है दिल से, और फिल्म संगीत वो तो हर आम और खास की रग रग में बसता है, क्योंकि उसे सुनते सुनते ही हम बचपन से किशोर और किशोर से फिर युवा और फिर प्रौढ़ कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर हुसनलाल भगतराम जैसे संगीतकारों का उम्दा संगीत हमेशा वैसा ही असरदार ताजा रहता है। योग्य पिता संगीतकार हुसनलाल की सुयोग्य संतान दिनेश प्रभाकर ने संगीत को ही अपनाया बतौर संगीतकार। पिता और गुरु की मीठी सुरीली यादें आज भी वैसी ही ताजा हो जाती हैं।
1: इस जोड़ी ने पंजाब की मिट्टी की सौंधी खुशबू एवं पंजाबी फोक को इस तरह से फिल्म संगीत में ढाला, और एक जो खास बात थी कि पंजाबी ठेका इसको शंकर जयकिशन ने भी अडॉप्ट किया, उसके बाद में ओपी नैयर जी ने भी अडॉप्ट किया, और इस तरह से कई संगीतकार हैं जो कि उनके संगीत के इन्फ्लुएंस में आए। अपने जमाने के बहुत ही बिजी संगीतकार थे, धुने तो वो दोनों भाई इकट्ठे एक साथ ही बैठ के बनाते थे, और इतने अनुबंध थे उनके कि उनको कई बार ये भी याद नहीं रहता था कि हमने कौन सी फिल्म की धुन किस तरह से बनाई। पर इतने माहिर थे कि सेट पर जाते ही जब वो ये फील करते थे कि ये धुन हम पहले भी कहीं दे चुके हैं, सेट पर ही उस धुन को एकदम चेंज कर देते थे। मैंने एक्चुअली वायलिन की ट्रेनिंग ली फादर से, और उनका हमेशा यही रहा कि पहले स्टडी करो, संगीत तो तुम्हें आ ही जाएगा। संगीतकार होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े गायक भी थे और वायलिन वादक भी। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, जलंधर में शायद हरिवल्लभ संगीत सभा में गा रहे थे वो,

0: समय काफी बारिश हो रही थी और सामने बड़े गुलाम अली खान साहब और कई कई लोग बैठे थे, उन्होंने राग गाया मियां मल्हार। तो जब फंक्शन खत्म हुआ, गुलाम अली खान साहब स्टेज पर आए और उनको गले मिले और बोले कि उनका नाम जैसे आप जानते हो हुसन लाल था ना
1: जी हाँ,
0: तो कि जैसा तुम्हारा हुस्न है वैसा ही तुम्हारा गाने में हुस्न,
1: वैसा ही गायन का हुस्न भी लाजवाब है।

फिल्म बड़ी बहन के साथ हुसनलाल भगतराम के संगीत का जादू चला, जो सिलसिला बना तो कई बार एक साल में ही इस जोड़ी की 8-8 फिल्में भी आईं। सन 1950 में निर्मित सावन भादों, आधी रात, मीना बाजार और गौना तो विशेष रूप से लोकप्रिय रहीं। सन 1951 की फिल्मों में अफसाना और सनम बहुत ही उल्लेखनीय हैं।

0: संगीत के क्षेत्र में पिता श्री भगत राम के ताल से ताल मिलाने की कोशिश में बेटे अशोक शर्मा।
1: वो सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं, उन्हीं से मैंने सब शिक्षा हासिल की है। मैं तो काफी छोटा था, पर फिर भी उनके जो पीक टाइम था उस वक्त तो मैं नहीं था, पर फिर भी मैंने उन्हें स्टूडियो में अक्सर देखा है। मैं उनके साथ जाया करता था, तो उनकी जो लगन थी काम करने की वो बहुत देखने लायक थी। और बहुत ही, वैसे तो बहुत ही सरल लोग थे, पर उनके काम में उनका अलग ही ढंग था काम करने का, जो खुद ही सब इवन वो अरेंजमेंट में भी इन्वॉल्व होते थे। सिर्फ गाने पे ही नहीं, धुन तो थी उनकी, प्लस वो म्यूजिक पे भी अपना बहुत ध्यान देते थे। कभी जब वो दोनों बैठे रहते थे तब वो बैठ के ही धुन बनाया करते थे। कभी जैसे कभी मेरे पिता पंडित भगतराम जी बैठे रहते थे, उन्हें

0: कुछ पूछता था तो वो अलग बैठ के धुन बना लेते थे
1: जी,
0: और फिर उन्हें बता देते थे कि भी ये हो गया है। और कई बार प्रोड्यूसर बैठ जाते थे, उनके सामने भी वो इमीडिएट धुन बना देते थे, राइटर लिखते थे।
1: अच्छा।
0: तो पहले तो ऐसे नहीं था कि आपने ट्यून दे दी और उस पे लिख दिया,
1: हाँ।
0: इतना नहीं हुआ करता था। पहले राइटर को फ्रीडम दी जाती थी और वो अपना लिख के तभी म्यूजिक डायरेक्टर को देते थे और वो उसी पे धुन बनाया करते थे। तो वो हर तरह से ही धुन बनाया करते थे। धुनें काफी हैं, जैसे वो गाना है छुप छुप खड़े हो जरूर की बात है।
1: अच्छा।
0: इस तरह की जो है वो धुनें बस जैसे आई बैठे गए दिमाग में तो उन्होंने इमीडिएट कंपोज कर दी फिर। और उसके म्यूजिक भी देखिए, हारमोनियम का बहुत छोटा सा पीच बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है भगत राम जी ने उसमें।
1: कुछ कोई बात खास आप अपने पिताजी के बारे में बताना चाहेंगे हम लोगों को, श्रोताओं को?
0: जी, पिताजी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि बहुत सरल भाव के थे, बहुत सीधे थे और हमेशा संगीत में ही उनका दिमाग रहता था। और एक बात बताना चाहूंगा कि वो सिर्फ लाइट म्यूजिक के ही नहीं थे
1: जी,
0: बल्कि मतलब कहने का कि सिर्फ फिल्मों के संगीतकार नहीं थे बल्कि वो बहुत विद्वान शास्त्रीय संगीत के भी कलाकार थे। वो
2: हुसनलाल जी के साथ भगत राम जी भी हारमोनियम पर शास्त्रीय रागों को बखूबी प्रस्तुत करते थे, यानी सही मायने में थी ये जोड़ी एक दूसरे की पूरक, या यूं कहें कि एक दूसरे के लिए ही बनी थी।

0: शास्त्रीय संगीत में महारत बनाती है सिने संगीतकार की धुनों को और भी कामयाब और भी असरदार। संगीतकार हुसनलाल भगतराम जो थे सगे भाई और दोनों ही शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता। हुसनलाल जी की वायलिन की धुन स्वर कुछ अनूठे ही लगते थे, जिनकी प्रशंसा में संगीतकार खयाम यूं कहते हैं।
1: देखिए, उनकी खास बात ये थी कि पंडित हुसनलाल जी शास्त्रीय संगीत में वायलिन पर
0: जी
1: इतना अच्छा शास्त्रीय संगीत उसमें वायलिन में बजाते थे
0: जी।
1: तो मतलब एक रागा को पौना घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा वो बजाते थे किसी भी एक रागा को वायलिन के ऊपर।
0: अच्छा,
1: और ऐसी टोन वायलिन की बहुत कम सुनने में मिली पूरी दुनिया में, ऐसी टोन वायलिन की कि क्या कहने है ये, क्या मतलब कोई दूसरा विदेशी इंसान भी अगर सुन लेता था पंडित जी का वायलिन तो वो बहुत सराहना करते थे।
0: अच्छा,
1: कि वाह वाह, ऐसा ऐसी टोन हमने नहीं सुनी। पंडित सुलाल जी वायलिन बजाते थे और पंडित भक्तराम जी हारमोनियम, उसी तरह शास्त्रीय संगीत वो इसी तरह राग रागनियां हारमोनियम पे बजाते थे
0: जी हाँ।
1: वो भी आधा घंटा पौना घंटा किसी राग को हारमोनियम पर बजाते थे।
0: अच्छा, और उसमें हारमोनियम और वायलिन की जुगलबंदी भी होती थी।

0: खैर उन्होंने दोनों भाइयों ने तो नहीं की
1: जी।
0: लेकिन जाहिर है जब काम करते थे दोनों दो दो हारमोनियम, मैंने देखा कि भाई दो हारमोनियम होते थे, एक हारमोनियम पंडित जी पंडित सुलाल जी के पास होता था, एक भक्तराम जी के पास होता, दोनों भाई मिलकर काम करते। बहुत कोई चहिता शागिर्द हो तो मेरी खुशनसीबी के मुझे कभी जब वो काम करते थे, अदरवाइज जब इंसान काम करता है किसी थर्ड पर्सन को रिदमिस्ट के सिवाय किसी को पसंद नहीं करता कि उनके पास कोई बैठे, क्योंकि एक तख्लीक करना होता है, एक क्रिएटिव काम करना होता है। तो मगर मुझे अलाउड था, मैं मुझे कहते थे तू आ जा पुत्र, पुत्र आ जा, तू आ जा, काका आ जा तू इधर। तो हमारे जालंधर में ना, तो वो भी जालंधर के थे, मैं भी जालंधर का सब, तो वो कहते तू तू बैठ, तू ना जावा। तो मैं मुझे मतलब मुझे मौका मिलता कि मैं देखता पंडित जी किस बारीकी से किस तरह सजा रहे हैं।
1: वो आपके गुरु थे तो ये तो आप जानते होंगे, तो कैसे उन्होंने ऐसा सोचा कि उससे पहले तो कभी दो एक साथ संगीतकार हुए ही नहीं थे, उन्हीं की ये जोड़ी थी, तो उन्होंने कैसे ऐसे सोचा कि दो लोग मिलके और ये संगीतकार हम बने एक साथ?
0: देखिए ये इसके लिए तो मैं मेरी मतलब बहुत ही मैं छोटा इंसान हूँ उनके सामने, वो हाँ। बड़े मैं कैसे पूछ सकता था कि
1: नहीं,
0: वो
1: मैं पूछ मैं अपनी जानकारी,
0: मैं तो उनके सामने मैं तो कुछ, मैं तो हमेशा आपने सुना भी होगा, मैं कहता हूँ कि मैं जो खयाम है उनके पांव की धूल भी नहीं है,
1: अरे क्या
0: इतने बड़े वो थे।

0: गुणी कल्पनाशील संगीतकार के साथ साथ एक हंसमुख खुशमिजाज सरल इंसान भी थे हुसनलाल जी और भगत राम जी। पार्श्व गायक महेंद्र कपूर जो इनके शिष्य भी थे गुरु की यादों को ताजा करते हुए।
1: पंडित हुसनलाल जी को मैं जब मिला, गुरु जी के पास इतनी पिक्चरें नहीं थी, लेकिन म्यूजिशियन आला ग्रैंड और टीचर आला ग्रैंड भगत राम जी भी और हुसनलाल जी भी। हुसनलाल गुरु जी और भगत राम गुरु जी इतने लायक थे और इतने डाउन टू दी अर्थ, और एक तो कंपोजर इतने एक्सीलेंट थे। और फिर उसके बाद जो मैंने इनसे सीखा वो ये है कि हार्ड वर्क और रियाज बहुत जरूरी है, और रियाज बहुत करवाते थे और रियाज खुद बहुत करते थे गुरु जी।
0: मतलब अभी मतलब जब वो गुरु थे सिखाते थे तो भी रियाज करते थे लगातार
1: बहुत। अच्छा। बहुत जबरदस्त 24 घंटे। मैं जब भी गया हूँ इनके यहाँ तो मैंने इनको या गाते हुए देखा है या वायलिन बजाते हुए देखा है।
0: अच्छा।
1: गुरु जी को
0: पूरी तरह संगीत में डूबे हुए थे
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, आपने उनकी बनाई किसी धुन पे कोई गाया गीत
1: है जी?
0: आपने उनकी किसी तर्ज पे कोई गीत गाया हो?
1: मैंने गाए थे।
0: हाँ, कोई खास
1: है जी,
0: कोई खास गीत जो आपको याद हो?
1: अभी फिलहाल तो मेरे को ऐसे याद नहीं। पहाड़ी में इनके 2-3 गाने थे
0: जी,
1: इन्होंने फिल्म में गवाए थे मुझे।
0: अच्छा।
1: और वो इनकी लास्ट फिल्म थी।
0: अच्छा,
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा, लास्ट।
1: लेकिन यू सी क्या है कि कॉम्पोजिशन के साथ साथ जो मैंने इनसे विद्या दी है ना, वो बहुत वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। इन्होंने जो विद्या दी मुझे वो बहुत मेरे काम आई।
0: अच्छा।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: और कोई खास बात?
1: और इतने अच्छे जेंटलमैन, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दोनों भाई इतने अच्छे जेंटलमैन थे कि इतना अच्छा स्वभाव, इतने बड़े टॉप मोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद

0: ये लोग हमेशा हंसते रहते थे, हमेशा खुश रहते थे, और कहा करते थे कि भी खुश रहना चाहिए। ठीक है, जो अगर भगवान जिस स्थिति में रखे उसी में रहना चाहिए, लेकिन रहना चाहिए, लेकिन अपना रियाज नहीं छोड़ना चाहिए।
1: हाँ,
0: सरस्वती माँ की पूरी सेवा इन्होंने की है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि रेडियो प्रोग्राम पे गुरुजी का मुझे फोन आया दिल्ली से कि मैं नेशनल प्रोग्राम पे गा रहा हूँ। है जी,
1: जी।
0: इन्होंने गाया, ऐसा गाया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सुनने वालों ने ये समझा, जो लिसनर्स थे, बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने इंक्वायरीज की कि सिंगर कौन थे जिन्होंने गाया। मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ तक गुरुजी ने बताया था, यहूदी मैनियन
1: जी
0: जब आए थे यहाँ, उन्होंने इनकी वायलिन सुन के उन्होंने कहा, इतना बड़ा आर्टिस्ट, ये कैसा आर्टिस्ट है ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसा आर्टिस्ट और हमारे वर्ल्ड में ऐसा आर्टिस्ट, मैंने कभी ऐसी वायलिन सुनी नहीं, इतनी अच्छी वायलिन बजाते हैं ये
1: तो मतलब खूबी है कि गाते भी थे और वायलिन भी बजाते थे।
0: वायलिन भी बजाते थे
1: और दोनों बराबर दर्जे की, उच्च दर, उच्च कोटि की।
0: और देखिए कि 6 घंटे रियाज करते थे गाने का, इन्होंने कभी टाइम देखा ही नहीं था, मुझे लगता है 8 घंटे फिर वायलिन का करते थे, इतना मतलब लगे हुए थे म्यूजिक में कि इनको कुछ होश नहीं रहती थी।
1: हाँ जी, आप कोई उनका गीत गुनगुना पाएंगे, उनकी बनाई तर्ज कुछ याद आ रहा है क्या?
0: उनके गीत पुराने जो थे, बहुत जो पॉपुलर हुए,
1: जी हाँ,
0: बड़े अच्छे अच्छे गीत थे, हालांकि वो फिल्मी गीत थे।
1: आप कुछ गुनगुना सकते हैं? कोई बिगड़ी बनाने वाले, चुप चुप खड़े वो, दूर जाने वाले, कितने सारे
0: मुझे याद है, मैं तो बचपन में गाता था वो। बिगड़ी बनाने वाले,

0: कि ये जो मुखड़ा है
1: जी,
0: ये बड़े गुलाम अली खान साहब बड़े खुश होते थे सुन के।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने खान साहब ने ठुमरी में इस मुखड़े को ले लिया था।
1: अच्छा।
0: मतलब इतने इंस्पायर हुए थे खान साहब।
1: अच्छा।
0: गुलाम अली खान साहब, उन्होंने पंडित जी को कहा, गुरु जी को, कि वाह हुसैन लाल जी क्या बनाई आपने तर्ज।
2: प्रसिद्ध सरोदवादिका जरीन शर्मा, जो भगत राम जी की बहू हैं, उनके संगीत से बहुत प्रभावित हैं।
3: संगीतकारों में वो तो फिल्म इंडस्ट्री के पिलर थे
1: जी,
3: जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को ये मार्गदर्शन दिया कि संगीत को कैसे बनाना चाहिए, फिल्म संगीत क्या है, किस दर्जे का होना चाहिए, जिसमें अमर धुने दी है, मेलेडी कभी मरती नहीं है
1: जी,
3: वो उन्होंने अपने संगीत के द्वारा साबित कर दिया है। और केवल फिल्म म्यूजिक में ही नहीं, शास्त्रीय संगीत में भी वो बहुत विद्वान थे। उन्होंने पंडित दिलीप चंद्र बेदी जैसे शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की, कई शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम दिए, और शास्त्रीय संगीत में उनका फाउंडेशन इतना अच्छा था, इसीलिए वो फिल्म म्यूजिक में भी बहुत उम्दा संगीत दे पाए। उनका हर जो भी गाना देखिए, ऐसा नहीं एक दूसरे से मिलता रहता था, हर एक का अपना अंदाज होता है, हद के गाना होता था, मेलेडी होती थी। आज भी, आज सालों साल हो गए पर आज भी एवर ग्रीन है, जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस सुनते रहो। तो ये तो जब तक आपके अंदर मेरिट नहीं हो ये बात कभी नहीं आ सकती
1: जी,
3: क्योंकि एक आपके पास इतनी विद्वत्ता है कि आप उसको अलग अलग अंदाज में पेश कर सकते हैं।
1: हाँ।
3: जब आप किसी चीज से सीमित रहते हैं तो आप उस काबिल नहीं बनते कि आप अलग अलग चीजों का प्रयोग करें
1: जी।
3: अब जिनको राग की जानकारी हो तो वो हर अलग अलग रागों के आधारित गाना बना

0: आके तो ये सब जानकारी होने के वजह से वो सब कर सकते हैं
1: जी हाँ।
0: और उन्होंने हर तरह से नई नई चीजों को प्रयोग में लाया है, जैसे चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है
1: हाँ।
0: ये देखिए तो उसमें रिदम का पैटर्न देखिए, हारमोनियम हाँ। का पीस देखिए, मटके का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया
1: जी हाँ।
0: तो ये जो बातें होती है वो हमेशा सोचते थे कि आज ये गाने में हम नया क्या चीज बनाएं। उनको अपने काम से बेहद लगन थी, ये भी बहुत जरूरी है। सिर्फ आपको नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है
1: जी हाँ जी।
0: आपको अपने में कितनी लगन है वो लगन काम करती है
1: जी।
0: हर तरह से हर नए नए चीजों को प्रयोग में लाना और खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने लाना
1: जी हाँ।
0: ताकि लोग उसको तारीफ करें और लोगों को भी अच्छा लगे। जितने महान थे उतना ही वो नम्र थे
1: हाँ जी।
0: मतलब मैं तो ये को कभी मानना ही मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि इतना विद्वान हो के इतनी नम्रता से वो बात करते थे, अपने से छोटे कलाकार को भी इतना मान देते थे जैसे उसको लगे अरे बाप रे क्या बात है।
2: सिने संगीत के पुराने सुनहरे दौर में रविवार की रात रेडियो सिलोन से एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था, हमेशा जवां रहने वाले गीतों का कार्यक्रम। उसका शीर्षक गीत भी हुसनलाल भगत राम जी की ही तर्ज है। सन 1944 से 1954 तक के दशक में इस सफल संगीत जोड़ी हुसनलाल भगत राम का ही एक छत्र राज्य था। सन 1955 में बनी फिल्म अदले जहांगीर के संगीत की चमक की तो क्या बात थी। यूं भी कहें कि ये संगीत उनका अंतिम चमकदार नमूना था।

फिल्म प्यार की जीत का वो गीत जो अमर गायक मोहम्मद रफी के यादगार गीतों में गिना जाता है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा संगीतकार हुसनलाल भगतराम की धुन का ही कमाल है।

0: विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 11:55 हुए हैं। आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे और इसके बाद 12 बजे से शाम 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 11:55 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की शिक्षिका सुनीता यादव भी शामिल। छत्तीसगढ़ में अब तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। और दुर्ग जिले में अस्पताल में भर्ती एक बच्ची में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए जरूरी कदम उठाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक शाला खिचड़ी में पदस्थ शिक्षिका सुनीता यादव भी शामिल हैं। सुनीता यादव ने प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित करने, नवाचार के माध्यम से शिक्षा को प्रभावी बनाने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान करने वाला बड़ा

फैसला लिया है। राज्य में अब तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीर इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। रायपुर पुलिस ने वॉश यानी काले नोटों को असली मुद्रा में बदलने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने पुणे से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, 17 मोबाइल फोन और ठगी में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार गिरोह 2005 से सक्रिय था और देश भर में 100 से अधिक लोगों से अरबों रुपए की ठगी कर चुका है। रायपुर में भी गिरोह ने एक व्यक्ति से 1,13,00,000 रुपए ठगे थे। इस मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती करीब 3 साल की बच्ची में H1N1 वायरस की पुष्टि हुई है। बच्ची को तेज बुखार और फ्लू जैसे लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उसका उपचार विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है और उसे संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए आइसोलेट किया गया है। दुर्ग के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग बच्ची के संपर्क में आए अन्य लोगों की भी जानकारी जुटा रहा है। इसका उद्देश्य संभावित संक्रमण का शुरुआती स्तर पर पता लगाकर उसे फैलने से रोकना है। डॉक्टर बंजारे ने लोगों से न घबराने की अपील की है। उन्होंने लोगों से फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय सलाह लेने की अपील की है। गोरेला पिंडरा मारवाही जिले के मारवाही थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से बैगा दंपति की मौत हो गई। घटना ग्राम कटरा ढपनी पानी की बताई जा रही है। तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पति पत्नी जमीन पर गिर पड़े। परिजन दोनों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मारवाही ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक बदली बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने आज उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। बिलासपुर जिले के तखतपुर में शनिवार को स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे 3 बच्चे घोंघा नदी पार करते समय अचानक तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए। हादसे के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने नदी में घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 1 बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं 2 अन्य बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की शिक्षिका सुनीता यादव भी शामिल। छत्तीसगढ़ में अब तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। और दुर्ग जिले में अस्पताल में भर्ती एक बच्ची में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए जरूरी कदम उठाए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज

0: ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा।

मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल आप सुन रहे थे। आवारा फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर आसमान की सैर कराते गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस।

0: हसर जयपुरी के शब्द आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जयकिशन की तर्ज एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गीत में आपने सुनी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।
2: हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
3: कौन है जो

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर वो गीत सुनवा रहे हैं जो करवाते हैं आसमान की सैर।

0: साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे कलाकार फिल्म से गीत इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावने की हवा,
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की,
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध।

लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें सितारा फिल्म के इस गीत में आपने सुने और इसे लिखा गुलजार ने, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप, जिसे लिखा साहिल ध्यानवी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाजें सुषमा श्रेष्ठा और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ साथियों की।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

रोजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। या रहमान का संगीत, बीके मिश्रा के बोल, एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, सावन कुमार टांक के बोल और राजेश रोशन का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो

0: कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें बातें हैं आसमान की।

कोई मिल गया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और चित्रा के साथ साथियों की आवाजें, इब्राहिम अश्क के बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल आप विविध भारती पर सुन रहे हैं।

स्वदेश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बता देते हैं आज की इबारत, जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गीत शामिल होने वाले हैं। तो आज की इबारत है, माँ ने कहा था चंदा में रहती हैं लाखों परियां, उन परियों के बीच कभी खुद को भी देखा करते थे, सपनों की वो दुनिया जिसमें आसमान के बादल पल में मौसम बदल देते और चांद सितारे अपनी चमक से आँख

आंखों को रोशन कर देते। कभी देखी चंदा पर बैठी चरखा कातती एक बुढ़िया माई, तो कभी चंदा ने आप थाली में खाकर हमें प्याले में ही दे दी मिठाई। जितना अनोखा बचपन उतना ही अनोखा हमारा खामू का संसार। पर बड़े होकर भी कहां बदला चांद से हमारा ये प्यार। रॉकेट छोड़े यान उतारे नाप लिया जग सारा, पर चंदा की सपनीली बातों ने ही मन को संभाला। तो आप किस तरह से देखते हैं चांद को, ये हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में कौन सी वो लोरी थी आपको जो सुनाई जाती थी सुलाने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फिल्मी गीतों को भी लोरी के रूप में सुनाया जाता है। वहीं चांद से जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको जाना है चांद की सैर पर? हमें बताइए। तब तक सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत को किस फिल्म से हमने लिया ये बताइएगा।

अरे दीदी बच्चा थोड़ी है। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद के शहर को जाएंगे।

0: मन जाएंगे, लोरी के रिकॉर्ड होते बाजे पर बजवाएंगे
1: बजवाएंगे।
0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद।

0: रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे।
1: दीदी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। साहिल उद्यानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। हमने आपसे पूछा कि बचपन में कौन सी लोरी है जो आपके लिए गाई जाती थी, और चांद से जुड़ी वो कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, और साथ ही ये भी पूछा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप चांद की सैर पर जाएंगे, और बचपन का वो कौन सा सपना है जो अब भी आपकी आंखों में बसता है, ये भी हमें बताइएगा। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चांद आदिकाल से ही मानव के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इंसान ने चांद को निहारा नहीं बल्कि कविता और गीतों में भी उतारा है। चांद को देखने का सबका अपना नजरिया है। बच्चों को चांद में चरखा चलाती बुढ़िया नजर आती है, तो नौजवानों को अपनी महबूबा का चेहरा नजर आता है, और तो और भूखे को चांद में नजर आती है रोटियां। एक ओर चांद को स्त्री पुरुष के प्रेम का साक्षी स्वरूप भी माना जाता है, और दूसरी ओर चांद संदेश वाहक भी बनता है। चांद को लेकर हमारी हिंदी फिल्में दूरदर्शी रही हैं। अंतरिक्ष में पहला मानव 1960 में गया था, लेकिन उससे पहले ही 1959 की फिल्म दीदी में मामा जी की रॉकेट में हम चांद को सैर पर जाएंगे ये गीत लिखा गया था। इसी तरह चांद पर मानव 1969 में पहुंचा, मगर उससे पहले 1968 में

अंतरिक्ष के वासियों की कल्पना को लेकर वहां के लोग फिल्म का निर्माण किया गया था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे कि चंदा मामा दूर के ये गीत बचपन में बहुत बार सुन चुके हैं और चांद पर बैठी चरखा कातती बुढ़िया माई की कहानी भी सुन चुके हैं। किसी सुंदर स्त्री के गोरे गोरे मुख को भी चांद की उपमा दी जाती है और चांद कितना सुंदर या खूबसूरत है। ये साल 1969 से में 20 जुलाई के दिन अपोलो 11 चंद्रयान ने चांद की धरती पर उतरकर गलत साबित कर दिया कि वहां की जमीन सुंदर रहे या उबड़ खाबड़। दूर से ली गई तस्वीर देखकर महसूस हो रहा है कि जैसे

चंद्रयान ने चांद की धरती पर उतरकर गलत साबित कर दिया कि वहां की जमीन सुंदर रहे या उबड़ खाबड़, दूर से ली गई तस्वीर देखकर महसूस हो रहा है कि जैसे किसी स्त्री के चेहरे पर निकले हुए शीतला के दाग हो, यानी चेचक के दाग हो, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि सुंदरता को इस तरह से आंकना तो हमारी नजर में बिल्कुल सही नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ख्वाब कहीं या सपना, इनकी दुनिया ही अलग होती है। ये चांद के भी कई रूप होते हैं, कभी उसमें दाग तो कभी सूत काटती बुढ़िया परियां। क्या क्या कल्पना कर लेते हैं हम चांद मामा, चंदा मामा दूर के बचपन से आज तक सुनते हैं। पूर्णिमा का चांद तो बेहद खूबसूरत होता है, वो अपनी धवल चांदनी से हमें आह्लादित करता है। और हमारी आप जिस तरह से बातें करें कि चांद पर हमने देखा है, तो सिर्फ सूत काती बुढ़िया माई को ही हमने चांद पर नहीं देखा, बल्कि और भी अलग अलग आकृतियां हम अक्सर देखते हैं चांद पर भी, सितारों के साथ भी। तो आपने अंतरिक्ष में या कहें आसमान में कौन कौन सी ऐसी आकृतियां देखी हैं चांद और तारों को मिलाकर, हमें बताइए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद बचपन और यादों के हंसी सपनों को समेटे हुए गद्यांश आज अंतरिक्ष का रुख करवाएगा। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि वो उन्होंने अलग अलग गीत लिख भेजे हैं। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि माँ ने अपने बच्चों को चंदा मामा, परियां, चांद, सितारों की कहानियां सुनाकर बचपन में सपनों की दुनिया सजाई, जो हकीकत लगी आज भी चांद में वही सब दिखता है। ऐसा कोई नहीं जिसने चंदा मामा दूर के लोरी माँ से न सुनी हो। आज भी प्लेन आकाश में उड़ता दिखाई देने पर ऊपर देखे बिना नहीं रह पाते। शरद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की खूबसूरत चंद्रमा को देखने की आदत है, शायद बचपन फिर याद आ जाता है। तो हम बड़े होकर भी तो इन चीजों को देख सकते हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में हमें बताइए, क्योंकि बातें तो बचपन की, चांद की, सितारों की और परियों की होने वाली है, साथ ही साथ सपनों की दुनिया में भी हम खोने वाले हैं। हमारे साथी क्या लिखते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या तारों की पहचान करने के लिए आपने आसमान में कभी ताक झांक की है, और क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप चांद पर जाएं। इस गीत को किस फिल्म से लिया है हमें बताइएगा।

बचपन हर गम से। गीत गाता चल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन की बोल, उन्हीं का संगीत। हमारे साथी ने लिखा कि आसमान पर चंद्रमा के साथ तारों के समूह जैसे काल पुरुष, तारामंडल, सप्तर्षि मंडल, आकाश गंगा जिसमें अनगिनत तारे हैं, आप टेलीस्कोप या साधारण आंखों से भी देख सकते हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना अब मुश्किल नहीं, लेकिन जाने का तो नहीं सोचा है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान में तो चांद को देखकर व्रत भी खोलती हैं सुहागन औरतें। फिल्म गीत गाता चल का ये गीत आपने सुनवाया, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की टॉर्च हूं, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि मलयालम में चंदा मामा दूर के जैसे ही गाना है, अंबिली अंबावा तमारा कुंबिलील इन थोड़ू, ऐसा गाना है, मेरी माँ सुनाती थी, ऐसा उनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन में हम उसे मामा कहकर पुकारते थे और फिर जब बड़े होते गए तो चांद के प्रति जो महसूस करते थे वही अक्स उसमें नजर आने लगा। फिल्मों में और कवियों ने चांद को लेकर कितना सुंदर सुंदर लिखा है, इसकी बानगी वे गीत है जिनकी ठंडक में हम अपना गम बिसरा देते हैं। चांद आसमान में टंगा सबसे सुंदर आभूषण है, समय की खाली आंखों में तैरते आकाश के तारे चांद के पैरों की पाजेब है, उसके घुंघरू हैं, इसको जिस चाहे उस नजर से देखो, ये पल में बच्चों का मामा बन जाता है, किसी बहन को उसमें अपना भाई नजर आता है, तो किसी को दूर देश में बैठा अपना प्रियतम भी नजर आता है। तो जिस तरह से अलग अलग रिश्ते होते हैं एक ही व्यक्ति के जीवन में, कुछ उसी तरह से चांद को भी हमने अलग अलग रिश्तों में बांध रखा है और अलग अलग नजरिए से उसे देखते हैं। वही हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि भले ही विज्ञान ने चंद्र का असली स्वरूप हमें समझा दिया है, चांद तो आज भी हमारे लिए मनोरम परिकथाओं का जनक है। बचपन का पोए पकाने वाला चंदा मामा, अपने अंक पर खरगोश, हिरण की गाड़ी और सूत कताई करती दादी माँ को संभालने वाला प्यारा इंसान है। सजा के तौर पर रोज खुद का आकार बदलने वाला नटखट बेटा है। प्रभु रामचंद्र जी ने भी बचपन में उसे पाने के लिए आतंक मचाया था। सभी के मन पर वो राज करता है। जवां दिलों के सपनों का सौदागर है। करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, कोजागरी पूर्णिमा, नारियली पूर्णिमा को पूजनीय आराध्य देव भी वो कहलाता है। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि दादी कहती थी तारों की महफिल में सजता है एक जादुई नगर जहां जुगनू बनकर हम भी रोज करते थे सफर। कागज की वो नावें जो बारिश के पानी में समंदर पार कर जाती और वो कागज के हवाई जहाज जो बादलों को छूकर वापस आ जाते। कभी धूप की छांव में परछाइयों से राजा रानी की कहानी बुनते तो कभी रात को छत पर लेटकर हवाओं की सरसराहट में परियों के गीत सुनते। जितना मासूम वो लड़कपन उतनी ही जादुई हमारा वो गुजरा जमाना। पर वक्त के इस दौर में भी कहां कम हुआ बचपन का वो फसाना। डिग्रियां ली, दफ्तर संभाले, नाप ले दुनिया की हर डगर, पर बचपने की उन मासूम यादों ने आज भी जिंदा रखा है दिल के अंदर का वो बेफिक्र सफर। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने लिखा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सबसे प्यारी बात इबारत की आखिरी पंक्ति है, रॉकेट और यान से चांद तक पहुंच गए मगर मन आज भी उसी चंदा में अपने बचपन वाली परियों को ढूंढता है। यही तो संगीत भी करता है, हमें बड़ा होने के बाद भी थोड़ी देर के लिए हमारा बचपन लौटा देता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि माँ परियां सपने चंदा दुनिया आसमान बादल मौसम सितारे बचपन, इन वर्ड से आज के गीत हो सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का अगला गीत, और एक ऐसा गीत है जिससे सभी का बचपन कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। तो बताइए किसकी आवाज में है और संगीतकार कौन है।

वचन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज, रवि का संगीत। यही हमने सवाल आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी ने तो ये भी बताया कि ये गीत गीता बाली पर फिल्माया गया है, और हमारे साथी ने आशा भोसले की आवाज को भी सही पहचाना। चांद वही है, आसमान भी वही है, बस उसे देखने का वो बचपन कहीं खो गया है। पहले वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, अब पास होकर भी दिल तन्हा सा हो गया है, ऐसा हमारे एक साथी ने लिख भेजा है। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। तो एक साथी लिखते हैं कि आज विज्ञान चांद तक पहुंच गया, रॉकेट और यान उसकी सतह को छू रहे हैं, लेकिन हमारे मन का चांद आज भी उतना ही रहस्यमय और प्यारा है। शायद इसलिए चांद आसमान में जितना दूर है, हमारे दिल और हमारी यादों में उतना ही करीब है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि भारत में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस का महत्व है कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की याद दिलाता है। इसी दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित उतरा था, और इस उपलब्धि के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की रातें जब अम्मा लोरी गाती थी, चांद के उस आंगन में परियां रोज ही आती थीं, कागज की कश्ती लेकर तारों पार पहुंचते थे, चंदा मामा के संग संग हम भी आसमान चढ़ जाते, कभी धूप की चादर ओढ़े, कभी छांव से आंख मिचौली, सपनों के उस मेले में थी मन की कितनी भोली झोली। आज उम्र के इस मोड़ पर भले चांद को हमने पा लिया, पर बचपन वाला जादू हमने दिल में आज भी जिंदा रख लिया। वहीं मालिक साथी कह रहे हैं कि वो बचपन के दिन, बड़ा सा खुला आंगन, खेल खिलौने और चांद, रात खुले खुले आसमान के नीचे बिछी खाट और दादा दादी माँ की कहानियां, तब सिर्फ कुछ मांगना नहीं था, टूटते तारों से बस चांद की चमक और उसे निहारते हुए उसकी कहानियां सुनना, कोई बोल रहा वहां परिया रहती हैं तो कोई उसकी छवि में सिमटकर बैठी बूढ़ी महिला, बस हमारी कल्पनाओं के घोड़े तभी जो दौड़ लगाते थे कि सवालों का उत्तर जो भी मिलता था सच ही लगता था। आज भी चांद हमारे जीवन की यात्राएं श्रद्धा के साथ शामिल है, व्रत त्योहार उसके बिना अधूरे। पूर्णिमा के दिन दूध में भिगोए पोहे खाने का रिवाज है, आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन, जिसे उस रात चांद की चमक में रखकर ठंडा करके खाते हैं। और माँ कहती थी उस रात में जो सुई में धागा पिरो सकता है, उसकी दृष्टि उतनी ही तेज होती थी। और हमने तरक्की कर ली, इस सुहाने सफर को कितना आसान बना दिया, हम उसकी जमीन पर जाने लगे, पर वो बच्चों को सुनाई गई कहानियों ने असर ऐसा छोड़ा कि आज भी धरती से चांद उतना ही हसीन लगता है। बचपन के वो दिन अब नहीं रहे, लेकिन गांव छूटा, गली मोहल्ले और खुले आसमान में सोते हुए तारों को देखना और चांद की कहानियां सुनना, अब सब बदल गया है। ऐसा हमारे साथी का कहना है कि अब सब बदलता जा रहा है। तो क्यों बदल रहा है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि अब वो सारी चीजें नहीं है जिसके बारे में हम बचपन में सोचा करते थे, क्यों? और हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि गीत लिखते साथी कि बचपन की रातें ना बिजली से रोशन थी, ना मोबाइल से, वो माँ की गोद और चंदा मामा की रोशनी से उजली थी।

अलोरी गाते गाते जब परियों की कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद पर सच में एक मामा रहता है जो बादलों की रुई से हमारे लिए खिलौने बनाता है। रात को चुपके से आंगन में रख जाता है। हम आंखें बंद करके कल्पना करते थे कि परी आएगी, उड़ते घोड़े पर बिठा कर चंदा मामा के घर ले जाएगी और माँ की लोरी और चंदा मामा की ठंडी रोशनी मिलकर हमारे लिए एक ऐसी दुनिया बना देती थी जहाँ न डर था न उदासी, बस परियों की हंसी और सपनों की उड़ान थी। आज बड़े होकर समझ आता है कि वो परियां कहीं और नहीं थी, वो माँ के हाथों में थी जो लोरी गाते हुए थपकी देती थी। कितनी सुंदर बात हमारे साथी ने लिखी। और हमारे एक और साथी बचपन के सुहाने दिन को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब माँ और दादी खाना खिलाते समय सुलाते समय चंदा मामा की कहानी सुनाती थी, वो बचपन का दौर हम सभी के जीवन का अनमोल दौर होता है जो कभी भी लौट कर नहीं आता। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सुहाने दौर की यादों में खो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। एक साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, दूध के कटोरी में दूध भात लेते आवा सुना करते थे हम बचपन में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं चंदा बचपन के हमारे मामा, सच चरखे वाली बुढ़िया को हम सचमुच का समझ जाते थे। और एक और साथी भी कह रहे हैं कि चांद बचपन से एक नाता है चांद से, मामा है, लेकिन चांद सिर्फ बचपन का मामा ही नहीं रहा, अपने भाई के लिए दूर देश या बॉर्डर पर बहना उसके लिए खुशी की प्रार्थना करती है। कभी करवा चौथ पर पत्नी अपने पति की लंबी आयु या प्रेम की बातें प्रेमिका अपने चांद के साथ साझा करती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि चंदा के लिए गाना वो अलग अलग सुनते हैं। एक साथी कह रहे हैं कि आज के दिन 3 साल पहले चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुई थी और ये हमारे लिए गर्व का दिन था, हमारे देश भारत किसी से पीछे नहीं है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि चांद यूनिवर्स का एक बहुत ही खास हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत भी उन्हें लगता है, बहुत ही रोशन है और वो अक्सर से शाम को देखा करते हैं और सोचते हैं कि कितना खूबसूरत ये नजर आता है, उसे एक अपना अच्छा चहेता दोस्त ये मानते हैं, ऐसा अंग्रेजी में उन्होंने लिखा जिसका हिंदी अनुवाद हमने करके आपको सुनवाया। हमारे एक और साथी ने लिखा निम्बुणिया चाम झाड़ा मागे चंद्र झोपला गबाई आज माझा पाड़साला झोप का ग येतना ही, ये मराठी लोरी हम बच्चों को सुनाते थे। और ऐसा ही हमारी एक और साथी ने भी इसी लोरी को याद किया है, लेकिन हमने याद क्या किया है, किसी की याद कब आती है चांद को देखकर, वो गीत आपको सुनवाते हैं। आपको पहचानना है आवाज किसकी है और

जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि सच, बचपन में कितनी देर खुले आसमान के तले चंद्रमा को टकटकी लगा के देखना और कल्पना की दुनिया में खो जाना, कितने नजदीक थे प्रकृति के हम, कितने खुशहाल थे हम। स्मार्टफोन की आज स्क्रीन में हम गिरफ्त हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए फोन लेकर बैठते हैं, फिर ध्यान आता है कि सिर्फ 10 मिनट्स के लिए काम था, इस फोन से 2-3 घंटे कैसे बीत गए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारी नानी हमें कहती थी कि देखो चांद के पास खरगोश है, उसके 2 बड़े बड़े कान हैं। कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी ऊपर देखकर हाँ बोलते थे। वहीं हमारी एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि मेरी उन्होंने अपनी माँ की बात याद की और लोरी बताई, लिंबाची छाया ज्यादा जड़ा मधे चंद्रा झोपले। ये जो हमने एक मराठी गीत लोरी के बारे में कहा, माफ कीजिएगा उच्चारण के दोष के लिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, जब एक बार गाने में सुने थे तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तो चांद के लिए थोड़ा मन को अच्छा नहीं लगा था। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना तो हम में से हर एक ने सोचा है, मैंने भी सोचा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रही हैं कि मैं मराठी मुलगी अभी तक समझ नहीं पाई कि पुए कौन सा पकवान है जो आप थाली में खाएं और मुन्ना प्याली में। भाई पुए तो एक बहुत ही अच्छी मिठाई होती है। अगर आप, अब तो गूगल सर्च का जमाना है, अगर गूगल सर्च करें तो आपको नजर आ जाएगी, वो बड़ा ही मीठा सा अच्छा पकवान होता है वो, जिसे कहीं कहीं मालपुए भी कहा जाता है। अगर आप ये सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे कि आज बातें चांद की हो रही, जिसमें कभी मामा दिखते हैं, कभी प्यारा प्रियतम, कभी कितनी गजल और लोरियां इस चांद को देखकर बनाई गई हैं। इतना तो याद नहीं, लेकिन दादी बचपन में हमें चंदा मामा दिखाकर खाना खिलाती थी और गाती थी, ए चंदा मामा आरे आवा बारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरी में दूध भात लेके आवा। और हमारे एक और साथी वही आगे कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को लल्ला लल्ला लोरी गाना ही सुनाया है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन तो सभी का भूला होता है। बचपन में कृष्ण भी अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूँ, तो माँ समझाती हुई कहती कि दूध पियो, जब तुम्हारी चोटी लंबी होगी तब चांद खिलौना मिलेगा। वहीं हमारे एक और साथी 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो इस गीत को याद कर रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरी बेटी जब अमेरिका गई तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की क्लास लेने जाती थी, वहां से चांद की कलाओं का प्रोजेक्ट मिला जिसमें हर दिन चांद की कला कौन सी दिशा से उगेगी और कितना होगा, कब डूबेगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। उसने जब क्लास में बताया कि भारत में पति की दीर्घायु के लिए व्रत

रखा जाता है और चांद को देखकर व्रत खोला जाता है, तो प्रोफेसर और क्लास मंत्रमुग्ध हो गए और इस बात पर लंबी चर्चा हुई। मेरी बेटी ने जब मुझे ये बताया तो वो बहुत खुश थी और कहने लगी भारत की परंपराएं बहुत अच्छी है। बाद में मैंने इस पर एक कहानी भी लिखी, करवा चौथ एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में वडोदरा में प्लेनेटोरियम में बैठकर आकाश दर्शन किया था, मानो हम आकाश में चांद सितारों के बीच घूम रहे थे। क्या आपने भी इस तरह से कोई सैर किया है, चंद्रमा को देखने वाला कोई टेलीस्कोप से देखा हो आपने, या आपने इस तरह से प्लेनेटोरियम में जाकर उसका आनंद लिया हो, या अपनी ही आंखों से? कभी कभी चंद्रमा को हम देखते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि चांद धरती के बिल्कुल निकट आ गया है, खासतौर से जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऐसा लगता है। क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है? क्या आपने चांदनी रात में किसी खुले आसमान के नीचे वो रात बिताई है? हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या सपनों में कभी आपने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि सपनों की बातें भी हो रही हैं, और सपने में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले हैं जिसे वास्तव में आप मिलना चाहते हैं, या उनसे मिलना मुमकिन नहीं हो आपके लिए अब और आप सपनों में उनसे मुलाकात किए हों, ये हमें बताइए। और अंतरिक्ष की वो कौन सी बातें हैं जो आपको आश्चर्य से भर जाती हैं? साथ ही ये भी बताइए कि कौन सी फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं।

0: हम कहां ताल कहां सम कहां तुम कहां हम कहां तेरे कड़ तुम नल कड़ तुम तेरे कड़ तुम नल कड़ तुम हम तुम लता हाथ की पाता लता हाथ पता पात मेरा कस करामत
1: ताते खेता ताते देता ताते खेता ताते देता थैया थैया थै टकटा दुम टकटन्या
2: सपने में देखा सपना ओ सपने में देखा सपना।
3: गोलमाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का

0: नाम ही हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन की दुनिया भी कितनी सुंदर होती है, आसमान में चमकता चांद, टिमटिमाते सितारे, उड़ते बादल और परियों की कहानियां मन में एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया बसा देती है। माँ जब चंदा को दिखाकर कोई कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद सचमुच हमारा अपना साथी है। कभी उसमें चरखा काती बुढ़िया दिखाई देती तो कभी लगता चांद परियों का घर है। समय बीता, बचपन पीछे छूटा और हम बड़े हो गए, लेकिन चांद के प्रति वो प्यार आज भी वैसा ही है। इंसान ने रॉकेट से चांद तक पहुँच कर विज्ञान की नई ऊंचाइयां छू ली, फिर भी बचपन के उस चंदा में बसे सपनों और कल्पनाओं की चमक आज भी मन को सुकून देती है। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि चांद पर परियों का निवास और बादलों से पल में मौसम बदलना कल्पना और सौंदर्य का प्रतीक है, जहाँ प्रकृति और मनुष्य का मन दोनों मिलकर एक दिव्य लोक की रचना रचते नजर आया करते हैं। ये वास्तविकता से दूर एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ जिज्ञासा और कौतूहल से एक अजीब सी खुशी उत्पन्न हो सकती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, जब माँ बच्चे को चांद से बहलाया करती थी और बच्चों को लोरी सुनाया करती थी चंदा मामा दूर के। बच्चों को प्यार करती कहती, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, और आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। बच्चा जब किशोर से युवा होता तो चांद की परिकल्पनाएं बदल जाती हैं, सौंदर्य की तुलना चांद से करता है। चांद सी महबूबा हूँ मेरी तो आज बात होगी चांद की, चंदा हो चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि किशोरावस्था के किस्सों कहानियों के स्वर्णिम कालक्रम की झांकी दिखाती भारत है, जहां काल्पनिक कथानक में ही संसार बसते थे। कभी विभिन्न चंद्रकलाओं में कल्पना नजर आती तो कभी टिमटिमाते सितारों में स्वयं को नियोजित कर स्वप्निल संसार में विचरण करते थे। पता ही नहीं चला कि कभी चरखा तो कभी खरगोश की झांकी दिखाती वही चंद्रकलाएं पूर्ण व्यस्कता प्राप्ति पर महबूब के सौंदर्य की झांकी में कब तब्दील हो गई। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि बचपन की सुरीली यादें, माँ के आंचल में छुप जाना और माँ की गोद में सर रखकर सोना, उसकी ममता भरी आवाज में लोरी सुनना आज भी याद आता है तो आंखों से अश्क बहने लगते हैं। एक माँ ही तो थी जिसकी गोद जन्नत से कम नहीं थी। आज अपने प्रोग्राम से दिलों में दस्तक आप गीतों के जरिए दी जाएगी। हमारे एक और साथी कह रहे कि ममता, माँ और बेटा बेटी का एक अजोड़ रिश्ता, सबको निछावर करने वाली माँ और उनका प्यार दुनिया में भगवान से उच्च दर्जे का माना जाता है, और बच्चों को संभालना, रूठना, मनाना शायद यही गीतों की इबारत है। लोरी के बिना माँ का साथ, प्रेम मरते दम तक उनकी लोरी याद रहती है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि वो क्या कहते हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किसकी आवाज में है और किसने लिखा।
1: चंदा।

हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आप चांद को, सितारों को देख सकते हैं, सूरज को नहीं, इसलिए मामा कहते हैं क्योंकि बहन भाई को बहुत लाड प्यार करती है लेकिन बार बार भाई का नाम नहीं ले सकती और अपने बच्चों को जरूर याद दिलाती है। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चंदा एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो सबसे अच्छा होता है। तो सूरज की बात अगर हो की गई है तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि सूरज के लिए भी एक रिश्तेदारी रखी गई है। तो किस नाम से सूरज को बुलाया जाता है? अगर चंदा मामा है तो सूरज क्या है? एक गीत में भी इसका जिक्र आता है, आप बताइए। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि बहने चांद को अपना भाई मानती है, अक्सर छोटे भाई को प्यार करती हैं। बहने चंदा ही कहती हैं, वे छोटे भाई के रूठने पर अक्सर कहती हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं ऊपर वाले भाई के पास चले जाऊंगी, रूठ जाऊंगी तो फिर नहीं आऊंगी। ऐसे में कटोरे में दूध भात लेकर माताएं भी अपने लल्ला को समझाते हुए कहती कि तू जल्दी जल्दी खा, नहीं तो ऊपर से चंदा उतर के आएगा और तेरा दूध भात गटक जाएगा। माँ की बातों पर विश्वास करके बच्चे जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और चांद कभी उतरता नहीं है। परियों की कहानी तो अलग ही मशहूर है कि चंदा के पास तमाम परियां हैं जो बच्चों को सुलाने के काम आती हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज हम लोग भले ही फ्लैट संस्कृति में जीवन जी रहे हैं जिसके फलस्वरूप चांद तारे हमारे लिए दुर्लभ है, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए भरी दोपहरी में ही केवल चांद तारों के सफर में रहेंगे बल्कि अपने बचपन से यौवन तक की उपलब्धियों को नाना नानी दादा दादी की कहानियों के माध्यम से परियों द्वारा भी मुखातिब होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आसमान चांद सितारों का नजारा, बचपन में चांद को देखकर सपनों की दुनिया में खो जाना, आप माँ से सुनी थी कहानियां, लाखों परियां रहती थी, कई आकृतियां दिखाई देती थी, चरखा काटती बुढ़िया, चंदा ने थाली में खाई मिठाई और हमें दी प्याली में अनोखा बचपन, बड़े होकर भी चंदा से प्यार कम नहीं हुआ। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में चांद से लेकर मन में एक अनोखी और जादुई दुनिया बसी होती थी, तब लगता था चांद पर परियों का बसेरा, एक बुढ़िया माई चरखा काटती, समय के साथ बड़े हो गए और अंतरिक्ष में विज्ञान ने तरक्की कर ली, रॉकेट यान भी पहुंच गए, लेकिन चांद से हमारा वो पुराना और प्यारा रिश्ता आज भी वैसा ही है। चांद और बचपन, कल्पनाओं में चांद कोई दूर का ग्रह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह लगता है, बच्चे उसे खिलौना मानते हैं और उससे जुड़ी सारी कहानियों को सच मानते हैं। वाकई जब चंदा की बातें होती हैं तो आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है बच्चों की और चेहरा कितना रोशन नजर आता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुन

बातें हैं हम, और आप हमें ये बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है, फिल्म का नाम क्या है, और ये आपने बताया नहीं कि सपने में आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते थे क्या? गोलमाल फिल्म के उस गीत की तरह ही हमने आपसे ये पूछा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं पर वास्तविक जीवन में मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन सपने में हुई है। वो सपने हमसे साझा कीजिए और सुनिए ये गीत।

पारस मणि फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि चांद को यदि मामा कहा जाता है तो सूरज को क्या कहा जाता है, वहीं हमने तो सुना है चाचू, जिसके बारे में हमारे बहुत से साथियों ने कहा। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि सूरज संग अक्सर बेटे की तुलना या उपमा की जाती है, वंश का नाम सूरज की तरह रोशन करेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं हम तो अपनी नन्ही परी को चांद की बहुत बातें बताते हैं, चांद दिखाते भी हैं, क्योंकि हमें तो चांद बहुत अच्छा लगता है और हमने अपनी परी से कई बार पूछा कि चांद अच्छा लगता है कि सूरज, की दोनों, पर उसने सदा ही चांद को अच्छा कहा। हमने उसे समझाया कि सूरज भी बहुत अच्छा है, तो लगता है आपको सूरज की कहानियां भी उन्हें सुनानी पड़ेंगी, क्योंकि चांद इस तरह से सुकून देता है रातों में कि सभी को वो ज्यादा प्यारा लगने लगता है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन और चांद का अटूट रिश्ता रहा है। श्री कृष्ण ने भी तो चांद के लिए हट किया था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। प्राइमरी कक्षा में चांद पर कविता पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, जिसमें जिसे आज भी पोते पोती को सुनाता हूँ। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा।

पूरी करता हूँ। वाकई ये कविता हमें भी याद आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की कहानियों में चांद एक आसमानी गोला नहीं था, उसकी गोद में परियां रहती थी, बुढ़िया चरखा काटती थी, कभी कभी हमारे थाली में चुपके से खीर पूड़ी भी रख देता था। बड़े हुए थे रॉकेट ने चांद की दूरी नाप ली, मगर बचपन की वो दूरी आज भी वही है, जहाँ ख्वाब हाथ बढ़ाने से पहले ही आंखों में उतर आते थे। चांद से मोहब्बत उसकी रोशनी से कम और उन कहानियों से ज्यादा है जो माँ ने उसकी चांदनी में हमारे भीतर रख दी थी। उम्र गुजर गई, चांद वही रहा, बस हम कहानी से निकलकर जिंदगी में आ गए। हमारे एक साथी ने कहा कि सपने में वो श्रीदेवी और राहुल द्रविड़ से मिलना चाहते थे, अभी तक मिल नहीं पाए हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि सूरज को दादा भी कहते हैं, और हमारे एक साथी ने कहा कि सूरज को चाचा चाचू मुन्ना भाई MBBS में कहा गया था इस गीत में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भौतिक प्रगति और तार्किकता के बावजूद इंसान को अब मानसिक सुकून और ठहराव अपनी कल्पनाओं, जड़ों और बचपन की मासूम भावनाओं में ही मिलता है। विज्ञान ने चांद पर रॉकेट और यान भले उतार दिए, लेकिन इंसान के भीतर का वो भावुक बच्चा आज भी चांद की सपनीली कहानियों में ही सुकून तलाशता है। लोक कथाओं के जादू और आधुनिक वैज्ञानिक यथार्थ के बीच के भावनात्मक संतुलन को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। हमारे एक और साथी कहने की चंद्रमा ने सदियों से कवियों को शब्द दिए, प्रेमियों को सपने दिए और अकेले लोगों को एक मौन हमसफर दिया। उसकी शीतल रोशनी में जैसे हर दुख थोड़ा हल्का हो जाता है और हर याद थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसलिए कि चंद्रमा हमें सिखाता है अंधेरी रातों में भी उजाला बिखेरना संभव है। उसकी चांदनी उम्मीद का वो संदेश है जो हर रात हमें ये विश्वास दिलाती कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश का रास्ता रास्ता हमेशा बना रहता है। तो ये सारी बातें आपने भेजी, और हमें ये भी बताइए कि क्या आपने कभी सफर किया है चांद के साथ? जब हम ट्रेन या बस ऐसे जाते हैं और रातों में जाते हैं, तो कई बार हमारी नजर चांद पर पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही सफर कर रहा है। तो वो याद भी हमसे साझा कीजिए और बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है और संगीत किसका है।

अब्दुल्ला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आनंद बख्शी के बोल। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथ ही बार बार कह रहे हैं कि सूरज को चाचू नहीं बल्कि दादा या पिता की उपाधि मिली है, क्योंकि उसे सभी ग्रहों का पिता भी कहा जाता है।

तो इस तरह से उन्होंने बताया कि सूरज के लिए कौन सा ये रिश्ता तय किया गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इस तरह से चांद सितारों की जो बातें होती हैं, सपनीली दुनिया होती है, कभी कभी कल्पना लोक में जीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और एक तरह से मन को सुकून देता है ये। तो इस तरह से आप भी खुश रहें, आबाद रहें। और आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार साथियों, आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज का दिन उत्सव मनाता है उन कठिन वैज्ञानिक लक्ष्यों का जो संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मेहनत और क्षमता को सामने लाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड अनंत है और अंतरिक्ष उसकी असीम गहराइयों का एक अद्भुत संसार है। अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के बीच हमारी पृथ्वी एक छोटी सी नीली दुनिया है और इसी पृथ्वी पर हमारा देश भारत, जो न सिर्फ सभ्यता संस्कृति के लिए पहचाना जाता है बल्कि हमारे खगोलविदों के महत्वपूर्ण खोज के लिए प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, भास्कराचार्य द्वितीय, ये वो नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को समृद्ध खगोल विज्ञान का विशाल ज्ञान दिया। इन्हीं से प्रेरित होकर देश ने नवीन उपलब्धताएं हासिल की। जब एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखता है तो उसे देशों की सीमाएं नहीं दिखाई देती, उसे सिर्फ जीवंत ग्रह दिखाई देता है। जब उस विशाल अंतरिक्ष से अपने देश को देखने का अवसर मिलता है तो मन देश प्रेम के प्रति और अधिक गहरा हो जाता है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये केवल उनकी नहीं करोड़ों भारतीयों के हृदय की आवाज थी।

अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। इन वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों ने सिद्ध कर दिखाया कि विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में भी महिलाएं किसी भी स्तर पर पीछे नहीं है। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की वो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताया है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कई वैज्ञानिक मिशन पूरे किए। इसी प्रकार इसरो में भारतीय महिलाओं का योगदान अत्यंत मूल्यवान रहा। ऋतु करिधाल, जिन्हें मंगलयान की रॉकेट वुमेन कहा जाता है, वे मंगलयान मिशन की संचालक प्रमुख में से एक थीं और भारत को मंगल ग्रह तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही उनकी। मुथैया वनीता चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहीं। नंदिनी हरिनाथ इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक जिन्होंने मंगलयान मिशन में नेविगेशन और मिशन डिजाइन का कार्यभार संभाला था। भारत की अंतरिक्ष यात्रा का इतिहास हमें बताता है कि विज्ञान और तकनीक किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। भारतीय महिलाएं और पुरुष मिलकर देश को अंतरिक्ष की नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।

0: देश ने अंतरिक्ष की दुनिया की यात्रा आर्यभट्ट उपग्रह से शुरू की और चंद्रमा और सूर्य तक अपने मिशन भेज चुका है। भारत का चंद्रयान 2 मिशन जुलाई 2019 में प्रक्षेपित।
1: इस मिशन के अनुभव और सीख को साथ लेकर चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को अंतरिक्ष में भेजा। 23 जुलाई 2023 को इसके लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग किए। इसी सफलता के साथ हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट उतरने वाला पहला देश बना। इसी ऐतिहासिक सफलता को सदा याद रखने के लिए और अंतरिक्ष उपलब्धियों का सम्मान करने हेतु हर वर्ष 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। चंद्रयान 3 की उपलब्धि हमें सिखाती है कि यदि लक्ष्य बड़ा हो, मेहनत सच्ची हो और असफलता से सीखने का साहस हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है।

0: जौनपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने

0: अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वी एन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड

0: कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहांडी में बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहांडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने होर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ है अर्जुन।
3: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी

0: और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में एक एक की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
1: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

शागिर्द फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, झुक गया आसमां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने तर्ज शंकर जयकिशन की फिल्म जंगली।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, जिसमें आज अभिनेत्री सायरा बानो अभिनीत फिल्मों से गीत।

आओ प्यार करें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत। दीवाना फिल्म का ये गीत हसरत जयपुरी ने लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: समझ जाएगी।
1: मन चाहेगी।
2: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम में खत भेजने के नियम।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा, और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं मल्हार फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें इस गीत को सुनते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि किसने इसकी फरमाइश भेजी है। इस गीत को लिखा कैफ इरफानी ने, रोशन का संगीत। तो सुनिए मल्हार फिल्म से ये गीत।

मल्हार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, कैफ इरफानी की बोल, रोशन का संगीत। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता गुजरात से अनिल देसाई, परिमल, बिंदी दत्त और देसाई परिवार, मोरटक्का माफी, खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम देवी, मिशन भावना, मनमानस और कनिका पटेल, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिर और नूर, चलाला काठियाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल, महबूब दल, इकबाल दल, कटारिया कच्छ से मंतिक राधाणी, डॉक्टर निशांत राधाणी, कबीर राधाणी और रमजान राधाणी। आप सभी की पसंद पर आपने सुना मल्हार फिल्म का ये गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत है धर्मात्मा फिल्म से, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हेवर खेड़ तेल्हारा अमोला महाराष्ट्र से, माफ कीजिएगा, अकोला महाराष्ट्र से आप हैं, विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता उर्वीबेन अढ़िया, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, गुमारेता नगर उपारे से अनिल कवलाले, सुषमा और सबीहा, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विन कुमार, गणेश राम, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार सुनना चाहता है धर्मात्मा फिल्म का ही गीत। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मुकेश और कंचन की आवाज में धर्मात्मा फिल्म से गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

धर्मात्मा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे विविध भारती पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत और हम सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद पर आधारित गीत। और अगला गीत मेरा गांव मेरा देश फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमें आई है प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर से, वी पूनम नायडू, साजन के, मास्टर शिवांशु, ऋषु, अक्षय और अभिषेक नायडू, अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता नायडू, डी कृष्णाराव नायडू, अमृता और संतोष, मालीवेस बीड़ शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, कोरदा लदन से लवन से शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा, वेद किरण वर्मा और जूनातार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे, मराठवाड़ा नांदेड़ से वामन मगरे और उनका पूरा परिवार आप सभी के पसंद पर सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और बोल आनंद बख्शी के। तो सुनिए आपकी ही पसंद पर ये गीत।

मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत हमने आपकी पसंद पर सुनवाया और आपको हमने ये बताया भी किन किन पसंद पर ये गीत सुनवाया जा रहा है। वैसे हमारे साथी मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए अपनी फरमाइशें भेजते रहते हैं और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है कि चंबल की कसम फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ दुर्ग शीतलानगर से अरपा पैरी पार्वती राधा शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी मधु आयाम और प्रतीक कुमार, ग्राम खकल कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर अंशराज सिंह गुर्जर और इनका परिवार, गर्ल्स रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता भोलू नीलू विशालराज और वंशराज, बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गड़े सुभाष दिगंबर राजेश गड़े शिवम शुभांग और सृष्टि गड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए चंबल की कसम फिल्म से ये गीत।

चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल जाह्नवी के बोल, खय्याम का संगीत। विविध भारती पर समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम, और अगला पसंदीदा गीत जो हम सुनवाने वाले हैं वो है फिल्म प्यार का मौसम। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और फरमाइश किसने की है ये आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

प्यार का मौसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसे पसंद किया था एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी संजना मराठा और मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। सेक्टर 67 मोहाली छत्तीसगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एक एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले शेख, शमा परवीन, अल कमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबीन शेख और मिर्जा नसरीन बेगम। आप सभी के पसंद पर ये गीत हमने आपको सुनवाया और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत पसंद किया है विट्ठल मंदिर चौक भीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, संतोष पगारिया, केशव पटेल, सांगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन। और साथ ही भरी टोला डोंडी से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम। और आप हैं इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर। आप सभी के पसंद पर सुनिए शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत।

नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर दो फूल जूही के। लेखन एवं अनुवाद किया है हृदय कौल भारती ने। निर्देशन है दीनानाथ।

0: के मानी, तोए के मानी। अरे चीतक तो हमारी सहन के सामने ही रुका। बाप रे, कितना सामान भरा है इसमें। बॉय के माने खिलौना, बॉय के माने खिलौना, बॉय के माने। कितना बड़ा है ये ट्रक, कैसी कैसी चीजें हैं इसमें। संदूक, बिस्तर, सोफा, मेज और वो साइकिल, कैसी प्यारी छोटी साइकिल। इसकी तो सवारी करनी चाहिए। ट्रन ट्रन ट्रन, बटके जरा बटके भाई साहब। मैं नीचे जाकर इसको दिखाता हूँ। पर नहीं, फिर मम्मी डांटनी है तो कभी पड़ता भी है। टी ओ वाई टॉय। तो क्या हुआ, मैं नीचे जाकर ही पढ़ूंगा। बी ओ वाई बॉय, टॉय के माने खिलौना, बी ओ वाई बॉय।
1: अरे धीरे धीरे उतारो भाई, जरा सावधानी से, इसमें क्राकरी है।
2: अरे चिंता न करो साहब, हम तो फूल की तरह सामान उतारेंगे।
0: बी ओ वाई बॉय, बॉय के माने लड़का, लड़का।
1: अरे क्या करते हो भाई, जरा देखना छूट ना जाए हाथ से।
2: एक छूटेगा साहब, रस्सी से जो बंधा है।
0: बॉय के माने खिलौना, टॉय के माने लड़का। इस साइकिल तो नीचे उतार ही नहीं रहे हैं। बी ओ वाई टॉय, टॉय के माने लड़का, टी ओ वाई बॉय, बॉय के माने खिलौना। तू किस बात पे हंसती है रे?
3: टी ओ वाई बॉय।
0: टी ओ वाई बॉय होता है क्या?
3: नहीं, पर तुम तो यही पढ़ रहे थे। टी ओ वाई
0: टॉय होता है, टॉय के माने खिलौना। जैसे मुझे नहीं मालूम।
3: फिर क्यों कह रहे थे?
0: मैं साइकिल को देख रहा था।
3: साइकिल? कौन सी साइकिल?
0: जो इस ट्रक में रखी है, ये लोग उतार ही नहीं रहे हैं उसे।
3: ये किसकी साइकिल है?
0: पता नहीं।
3: तुम्हें चलानी आती है?
0: नहीं, मेरे पास साइकिल ही नहीं।
3: मुझे चलानी आती है?
0: मुझे सिखाएगी?
3: ये साइकिल मेरी ही है।
0: मुझे इस पर बैठने देगी?
3: तुम्हारा घर कहाँ है?
0: वो सामने। तुम्हारा?
3: वो वाला जहाँ ये सामान ले जाया जा रहा है ना, ये हमारा अपना घर नहीं है।
0: तो
3: पापा की बदली हुई है, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पापा वापस बदली करवा लेंगे तो हम फिर

0: घर वापस जाएंगे।
1: कब?
0: पता नहीं,
1: मुझे अपनी साइकिल पर बैठने देगी?
0: ना बाबा ना, मुझे नहीं आता दूसरों को बिठाना, मैं गिर जाती हूँ ऐसे।
1: तो
0: मैं तुम्हें सिखा दूंगी, फिर हम दोनों सवारी किया करेंगे, है ना?
1: तब मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। अरे मैं तुम्हें ही देख रहा था।
0: झूठ।
1: और नहीं तो क्या, मैंने आज स्कूल से आते ही सारा होमवर्क कर लिया।
0: तो फिर बेल सुनते ही बाहर क्यों नहीं आए?
1: मम्मी होमवर्क क्यों देख रही थी, आता कैसे?
0: तुम्हारी मम्मी भी होमवर्क देखती है क्या?
1: हाँ, तुम्हारी?
0: मेरी मम्मी भी देखती है।
1: मेरी मम्मी को पढ़ना आता ही नहीं, पर होमवर्क फिर भी देखती है।
0: मेरी मम्मी तो फर फर फर फर सारा कुछ पढ़ लेती है। मैं झूठ कहती हूँ, उसे भी पढ़ना नहीं आता। सीखोगे साइकिल चलाना?
1: हाँ, मैं समझाता, तुम भूल ही गई होगी।
0: पापा की तरह, जैसे मैं भी कोई पापा हूँ।
1: वो क्या होता है?
0: जब मैं पापा से कुछ लाने के लिए कहती हूँ ना, शाम को आकर वो कहते हैं, अरे बेटा मैं तो भूल ही गया।
1: मेरी डैडी तो मेरी कोई चीज नहीं भूलते।
2: झूठ, वो भी इसी तरह भूलते हैं।
0: नहीं तो क्या, पापा भूल जाते हैं? मम्मी की तो हर चीज उन्हें याद रहती है।
1: नहीं तो वो झगड़ा करेंगी ना।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
1: मुझे मालूम है, मेरे मम्मी डैडी भी झगड़ते हैं ना।
0: हाँ, मेरे भी।
1: मैं उस समय नींद का बहाना करता हूँ
0: और मैं साइकिल लेके गली में निकल जाती हूँ।
1: मुझे सिखाएगी साइकिल चलाना?
0: तुम सीख ही नहीं रहे हो तो चलो उठो, पहले इस पर पैर रखो। ना ना, नहीं नहीं, ये पैर नहीं बाबा, वो पैर रखो।
1: अच्छा।
0: हाँ, अब बैठो सीट पर। ओफो, नहीं, पहले एक हाथ से इस दीवार का सहारा लो।
1: अच्छा, ले लिया।
0: हाँ बस, अभी हाथ नहीं हटाना। अच्छा, जब मैं कहूंगी तब छोड़ना, ठीक है?
1: अच्छा अच्छा, छोड़ो।
0: नहीं नहीं, अभी नहीं, अब सामने देखो ऐसे।
1: ऐसे?
0: तुम तो डरते हो, डरपोक कहीं के।
1: नहीं तो
2: मैं डरता हूँ, मुझे कहीं चोट लगी तो मम्मी मारेगी, वो इसकी मम्मी के साथ झगड़ा करेगी, इसको भी मारेगी, फिर ये मेरे साथ कभी नहीं खेलेगी।
1: अब धक्का दो ना।
0: हैंडल ठीक से थामना।
1: अच्छा
0: देखो, मैं अब धक्का देने जा रही हूँ, मैं तब कहूंगी गो, ठीक है?
1: हाँ। अब कहो ना गो।
0: गो।
1: गिरा।
0: अरे तुमने हैंडल से हाथ हटाए थे ना?
1: कहाँ हटाए?
0: लगी तो नहीं?
1: नहीं।
0: अब मैं एक बार चलाकर दिखा दूंगी, तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है?
1: अच्छा।
0: देखो ऐसे, फिर घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे, देखा?
1: हाँ, तुमने किसे सीखी?
0: खुद ही सीखी।
1: नहीं।
0: और नहीं तो क्या?
3: झूठ, मुझे तो मामा जी ने सिखाई,
0: मैं एक बार भी नहीं गिरी थी। जानते हो ये साइकिल मुझे किसने लाके दी है?
1: पापा ने।
0: नहीं
1: तो फिर?
0: तुम ही बताओ।
1: मुझे क्या मालूम?
0: मामा जी ने।
1: पापा मम्मी ने चलाने दी।
0: और क्या, मैं इस पर बैठकर बाजार जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, पापा के लिए सिगरेट लाती हूँ, मम्मी पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते।
1: एक दिन मैंने भी सिगरेट पी थी।
0: झूठ।
1: झूठ क्यों? चोरी चोरी पी थी।
0: फिर
1: शाम को डैडी ने सिगरेट ढूंढी, मम्मी ने भी ढूंढी।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर मम्मी ने थक कर कहा, वो चूहे ले गए होंगे।
0: चूहे?
1: फिर उन्होंने झगड़ा किया। मैंने झूठ मूठ नींद का बहाना किया, अब डैडी सिगरेट अपनी अलमारी में बंद रखते हैं ताकि
0: ताकि चूहे

0: ऐसे ही कार थी, उसमें जब चाबी भरते थे वो दीवार के पास पहुंचकर खुद ही मुड़ जाया करती थी।
1: झूठ कहा मैंने, पापा कहते हैं ऐसी चीजें लाने से पैसे बर्बाद हो जाते हैं।
0: मेरी एक सहेली ने उसे तोड़ दिया।
2: तुमने उसे कुछ नहीं कहा?
0: सहेली को क्या कहती?
2: मैं होता तो झगड़ा करता, टाई की तोड़ा मेरा।
0: बीओ
2: नहीं, बीओ वाई,
0: बीओ वाई, बीओ वाई।
2: जानती हो, जानती हो, हमारे यहाँ बुलबुल ने बच्चे दिए हैं।
0: हैं? कहाँ?
2: बाग में पेड़ पर। चल दिखाता हूँ।
0: चल
2: चल आ जा,
0: आ
2: जा।
0: अगर हमारे भी पंख होते,
2: आहा, तब हम भी उड़ते।
0: ना बस के लिए खड़ा रहना पड़ता, ना साइकिल सीखनी पड़ती।
2: मैं एक ही उड़ान में स्कूल पहुंच जाता, फिर नाना जी के पास, फिर घर।
0: तब हम खिड़की से अंदर आते
2: चिड़ियों की तरह। मुझे स्कूल की बस बहुत बुरी लगती है।
0: क्यों?
2: और नहीं तो क्या, हम उसमें समा ही नहीं पाते। मैडम सीट पर बैठती है, हम खड़े रहते हैं। पीछे से कंडक्टर अंकल कहते हैं शाबाश, आगे चलो, आगे चलो। और आगे से मैडम डांटती है पीछे चलो, पीछे चलो। परसों मुझे पीटी सर ने मारा।
0: क्यों, उसे क्या हुआ?
2: हम बस में बैठे थे, ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी। मैडम सीट पर बैठी थी, मैं गिर पड़ा। मैडम के होठों का रंग मेरी कमीज पे लग गया।
0: फिर
2: स्कूल पहुँच कर पीटी सर ने पकड़ा और कहा शर्ट पर दाग क्यों है, बैड बॉय। फिर मारा। ना मैडम को कुछ कहा, ना ड्राइवर से।
0: तुमने पीटी सर से कहा नहीं?
2: मैं क्या कहता, वो उस मैडम को कुछ कहते ही नहीं, बस उसे ही देख कर हंसते। अरे तुम यहाँ बैठी हो, पता है क्या हुआ?
0: क्या?
2: वो थे ना हमारे पेड़ पर बुलबुल के दो बच्चे।
0: हाँ थे तो?
2: वो वहाँ है ही नहीं, जाने कहाँ भाग गए। वहाँ उनकी मम्मी डैडी अब अकेले हैं।
0: उन्होंने शादी की होगी।
2: शादी? तुम्हें कैसे पता?
0: अरे तुम्हें नहीं मालूम, शादी के बाद ही अलग हो जाते हैं।
2: अलग? अलग क्या?
0: ओफो, अलग भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। B-O-Y, टॉय। अलग होता है दूसरे घर में रहना, अलग से खाना पकाना और बस।
2: तुम्हें कैसे पता?
0: बस है पता, मेरे अंकल भी तो शादी के बाद अलग रहने लगे। पहले उन्होंने पापा और मम्मी के साथ खूब झगड़ा किया, फिर अलग घर में रहने लगे। मम्मी बेचारी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी झगड़ा नहीं किया।
1: झूठ कहती हूँ मैं, मम्मी ने बहुत झगड़ा किया, गालियाँ दी, बहुत गालियाँ, फिर खींच कर माथे पर गड़वी मारी। आंटी बेचारी रो रही थी, मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं।
0: मेरी मम्मी बहुत अच्छी है।
2: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी? हंसते किस बात पर हो?
0: तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, अलग लड़कियां नहीं होती, लड़के हो जाते हैं। अंकल क्या कोई लड़की थे?
2: लड़कियां क्यों नहीं अलग होती?
0: पता नहीं, डरती होंगी शायद। नहीं नहीं, शर्माती होंगी। मम्मी भी कहती है ना लड़कियों को शर्माना चाहिए।
2: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी?
0: और तुम?
2: ना नहीं, मुझे तो डर लगता है अकेले में।
0: डरपोक डरपोक,
2: खुद शर्मीली नहीं,
0: नहीं तुम...

0: होगा। मम्मी कहती हैं जो झूठ बोलता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता।
1: चल चल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जानती भी हो झूठ बोलना पाप है।
0: तब तो तुम्हें पाप लग गया, कल तुमने झूठ बोला ना, कहा था मम्मी डैडी के साथ कल घूमने जाना है, देर से लौटूंगा।
1: कहा था तो क्या हुआ, नहीं गया?
0: पाप लगा कि नहीं?
1: क्यों, मम्मी डैडी तो गए।
0: तुम क्यों नहीं गए?
1: मुझे उनके साथ घूमने में मजा नहीं आता।
2: झूठ कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया ही नहीं। पहले मम्मी ने डांटा, फिर डैडी ने चॉकलेट ला के दी, कहा हम अभी लौटेंगे। झूठ कहा डैडी ने, उन्हें भी तो पाप लगेगा झूठ बोलकर।
1: वो रास्ते में चलते चलते जाने क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। डैडी को कोई दोस्त मिलते हैं तो ऑफिस की बातें करते हैं, बीमारियों की बातें करते हैं। मम्मी को कोई सहेली मिले तो बस वो यही पूछती है, बड़ी कमजोर लग रही हो, घर में सब ठीक ठाक है ना? मैं उनकी उंगली थामे खड़ा खड़ा थक जाता हूँ। उनका हाथ खींचता हूँ तो उंगली दबाकर तोड़ देती है। मम्मी बस चिल्लाती ही रहती है, किनारे किनारे बेटे, किनारे किनारे चल। जैसे मुझे नहीं मालूम, सड़क पर किनारे किनारे चलना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अकेले घूमने जाया करूंगा।
0: मैं भी।
1: तुम कैसे जाओगी, लड़कियां थोड़ी ही घूमने जाती हैं।
0: तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगी।
1: हाँ, हम बहुत दूर घूमने जाया करेंगे, टैक्सी में।
0: हम रास्ते में किसी से बातें नहीं किया करेंगे।
1: हाँ, हम बस आपस में ही बातें करेंगे। मैं सिगरेट पीता रहूंगा जैसे डैडी पीते हैं।
0: जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आया करूंगी।
1: क्यों,
0: और क्या, मुझे सिगरेट के धुएं से खांसी आती है।
1: अच्छा, मैं धुआं दूसरी ओर फेंक दिया करूंगा ऐसे।
0: फिर एक दिन तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।
1: खेलेंगे हमारे बाग में, वहाँ कोई नहीं है ना।
0: तुम्हारे सभी खिलौने तो अंदर कमरे में बंद होंगे।
1: नहीं तो, मैंने वो पहले ही निकाल रखे हैं।
0: मम्मी ने कुछ नहीं कहा?
1: जब उन्हें घूमने जाना होता है वो मुझे कुछ नहीं कहती।
0: तो चलो फिर।
1: चलो,
0: चलो।
1: देखो ये मेरी कार है, गाड़ी है।
0: मुझे तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी लगती है, ये चाबी के बिना ही चलती है ना, सचमुच की कार की तरह।
1: अगर ये सचमुच की कार ही होती
0: तब तुम्हारे मम्मी डैडी इसी में घूमने जाते।
1: जब मैं देता तभी ना, हम खुद इतने घूमने जाते।
0: हाँ, कार मैं चलाती।
1: अरे, लड़कियाँ भी कभी कार चलाती है क्या?
0: क्यों नहीं चलाती, मैंने क्या पिक्चर में नहीं देखा है?
1: तब स्कूल की बस ड्राइवर क्यों चलाते हैं?
0: पता नहीं, बस बड़ी होती है ना, शायद इसलिए।
1: क्या पौधों को सींचेंगे?
0: बूटा होता है।
1: सींचना भी नहीं मालूम। इसे नहीं मालूम सींचना क्या होता है।
0: तो क्या हुआ, तुम्हें मालूम था क्या अलग होना क्या होता है?
1: सींचना होता है पानी पिलाना, पौधों को पानी पिलाना, समझी?
0: मुझे आएगा क्या पानी पिलाना?
1: क्यों नहीं आएगा, मैं सिखा दूंगा। चलो बाहर
0: चलो। अरे देखो तो, पानी किस तरह इस लकीर में से अंदर अंदर गायब हो जाता है।
1: इस पौधे को बहुत प्यास लगी होगी।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
1: और क्या, हमें जब बहुत प्यास लगती है हम बहुत सारा पानी नहीं पीते क्या? अरे, ये बुलबुल तो मर गई।
0: कहाँ?
1: यहाँ तो आओ।
0: अरे, ये तो वही बुलबुल है।
1: हाँ, वही जिससे वो अलग हो गए थे, अलग मकान में।
0: अगर वो किसी दिन लौट आएंगे, यहाँ तो ये होंगे ही नहीं, उन्हें कौन बताएगा?
1: अब क्या करे इसका?
0: मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है।
1: तुम्हें कैसे मालूम, झूठी कही की?
0: सच, मुझे मालूम है, जब दादी माँ मरी थी, डैडी की मम्मी ना, सब बहुत रोए थे, मम्मी भी रोई थी।
3: झूठ कहती हूँ मैं, वो तो बस ट्रंकों अलमारियों में कुछ ढूंढ रही थी। झूठ मुंह थी उस समय रोती थी जब बाहर से कोई आता था, फिर उसने अंकल के साथ बहुत झगड़ा किया।
0: मुझे दादी माँ के पास जाने ही नहीं दिया था किसी ने, मैंने दालान में

0: से चोरी चोरी झांक कर देखा, उसे सफेद कपड़े में लपेटा था उन्होंने।
1: चल हम भी इसे सफेद कपड़े में लपेटेंगे।
0: कहाँ से लाएंगे कपड़ा?
1: हाँ वो लाएंगे कहाँ से? तुम ठहरो मैं अभी आया।
0: तुम कहाँ जा रहे हो?
1: बस मैं अभी आया। ये रहा सफेद कपड़ा।
0: रुमाल?
1: हाँ डैडी का है, मम्मी ने सुखाने के लिए डाला था।
0: डैडी मारेंगे?
1: वो कुछ नहीं कहेंगे।
0: झूठ।
1: कहा ना, जिस दिन उन्हें घूमने जाना होता है उस दिन वो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मैं बरामदे का बल्ब भी तोड़ दूं, वो आज मुझे कुछ नहीं कहेंगे।
0: क्यों?
1: वो बहुत देर से लौटते हैं ना।
0: अच्छा लपेटो फिर।
1: ना तुम लपेटो।
0: क्यों? तुम क्यों नहीं लपेटोगे?
1: मुझे नहीं पता कैसे लपेटते हैं, मैंने नहीं देखा ना, तुमने देखा है।
2: नहीं मैं डरता हूँ इसे हाथ लगाने से।
0: अच्छा ला रुमाल, मैं ही लपेटती हूँ।
1: लो।
0: मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका।
1: मुझे भी।

0: पहले ही आ गई?
1: मैं आज स्कूल गई ही नहीं।
0: तुम्हें मजा आ गया होगा घर में बैठे। डैडी मुझे एक दिन भी घर में नहीं बैठने देते, कदाचित से छुट्टी लेते हैं। बड़ों की तो मजे होते हैं।
1: खाक मजे होते हैं। मुझे नहीं लगता अच्छा घर में बैठना।
0: क्यों?
1: वो हर छुट्टी के दिन झगड़ते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: कल पापा और मम्मी ने इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया।
0: तुम्हें साइकिल लेके निकल जाना चाहिए था।
1: आग लगा दूंगी उस साइकिल को। मैं अब उस पर कभी भी नहीं बैठूंगी। लाए पापा अपने लिए खुद ही सिगरेट, मैं क्यों लाऊंगी? मैं तो उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी।
0: क्यों?
1: वो साइकिल मामा जी लाए हैं ना।
0: उससे क्या होता है?
1: मामा जी की शादी है।
0: तब तो वो भी अलग हो जाएंगे।
1: पता नहीं, मम्मी ने कहा उनके लिए सूट और घड़ी होनी चाहिए।
0: क्यों?
1: अफो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। शादी पर देते हैं ना घड़ी और सूट। पापा को आ गया गुस्सा, कहने लगे मैं कहां से लाऊंगा, है इतने फालतू के पैसे मेरे पास। मम्मी ने कहा वो भी तो बेबी के बर्थडे पर साइकिल लाया था।
0: फिर?
1: बस फिर क्या, दोनों ने बहुत झगड़ा किया। मम्मी बहुत रोई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मुझे पापा अच्छे नहीं लगते जब वो मम्मी के साथ झगड़ते हैं। तुम्हें?
0: मुझे भी नहीं।
1: मेरी मम्मी तो यूं ही पापा से डरती हैं। मैं नहीं डरती वरती पापा से।
2: झूठ कहा मैंने, मैं मम्मी से भी ज्यादा डरती हूँ उनसे।
1: तुम डैडी से डरते हो?
0: मैं क्यों डरूंगा? झूठ, मैं उसे बहुत डरता हूँ, वो मारते हैं ना।
1: चल आज पौधों को फिर सींचेंगे।
0: नहीं।
1: क्यों?
0: क्या पता आज और कोई बुलबुल मरी हो। खिलौनों से खेलेंगे।

0: मुझे ये बारी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें?
1: मुझे नहीं लगती।
0: क्यों?
1: मम्मी कहीं जाने ही नहीं देती, कहती है बीमार हो जाओगी।
2: झूठ, वो कहती है कपड़े भीग जाएंगे। रोज रोज ना कपड़े धुल सकते हैं ना प्रेस हो सकते हैं। अपने पापा से कहो नौकरानी रखें।
1: तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहती?
0: कहती तो है, फिर?
1: अरे देखो बैलगाड़ी।
0: कहाँ?
1: वो नहीं देखते, उस मोड़ के पास।
0: अरे हाँ, इधर ही आ रही है।
3: तुमने कभी बैलों को लड़ते देखा है?
0: नहीं, तुमने?
1: मैंने भी नहीं देखा।
0: एक बात कहूँ?
1: क्या?
0: ये लड़ ही नहीं सकते।
1: क्यों?
0: क्यों क्या, इतना भी नहीं समझती? ये बैलगाड़ी में बंधे हैं, लड़ेंगे कैसे?
1: अरे हाँ।
0: अरे इसमें भी बहुत सारा सामान भरा है, जैसे उस दिन तुम्हारी ट्रक में भरा था।
1: वो मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना।
0: क्या?
1: पापा मम्मी से कह रहे थे हमारी वापस बदली हो गई है।
0: सच?
1: और नहीं तो क्या, अब हम अपने घर जाएंगे।

0: या मैं तुझसे नहीं बोलता, कुट्टी है तुम्हारी मेरे साथ।
1: क्यों?
0: मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आई क्यों नहीं? मम्मी मुझे हर रोज डांटती है, आया ना काट कपड़ों का सत्यानाश करके।
1: मुझे मम्मी आने ही नहीं देती थी, कहती है इस बारिश में आदमी बीमार हो जाता है।
0: झूठ कहती है, मैं क्यों नहीं हुआ?
1: जानते हो हम जा रहे हैं।
0: कहाँ?
1: वापस अपने घर।
0: कब?
1: अभी, पापा ट्रक में सामान भरवा रहे हैं।
0: तुम भी जाओगी?
1: और नहीं तो क्या।
0: जाने दो उन्हें, तुम यहीं रहो, वो झगड़ा करते हैं ना।
1: लेकिन पापा मम्मी के बिना कैसे रहूं?
0: तुम अलग हो जाओ।
1: कह तो दिया कि लड़कियां अलग नहीं होती।
0: हाँ, लड़कियां अलग नहीं होती।
1: तू किसके साथ खेला करेगा?
0: पता नहीं। और तू?
1: किसके साथ खेलूं? अपने साथ।
0: एक बात बोलूं?
1: क्या?
0: हम शादी करेंगे।
1: क्या?
0: शादी करेंगे। क्यों?
1: हम छोटे हैं ना।
0: है तो क्या हुआ?
1: हमारी शादी करेगा कौन?
0: हम खुद करेंगे, फिर अलग रहेंगे। जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम यहीं रहेंगे।
1: मम्मी डैडी के बगैर ही?
0: हाँ, जैसे बुलबुल के बच्चे अलग हुए। पर वो बुट्टी बुलबुल जो मर गई, नहीं होगी।
1: आ गई टैक्सी, पापा हॉर्न बजा रहे हैं, मैं जाती हूँ।
0: जाओगी? तुम ठहरो, मैं भी आया। तुम्हें ये कार अच्छी लगती है ना? ये तुम रखो।
1: कुछ कहेंगे तो नहीं?
0: क्यों कहेंगे, मैं किसी से नहीं डरता, मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहे। तुम इस कार के संग रोज खेलना, खूब खेलना, ऐसे ऐसे ऐसे।
1: Ha ha ha!

0: दो फूल जूही के। अभी आपने कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर सुना। लेखक और अनुवादकर्ता थे हृदय कौल भारती, निर्देशन दीनानाथ का था। यह हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी।
1: कुछ दिल ने
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
3: अपनी कहानी उतनी रहेगी, चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो।
4: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया।

0: एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं। गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका दूसरा भाग।
1: वामन केंद्रे जी, जो ये पूरा ब्यौरा मैं जिस तरह से सुन रहा हूँ तो आंखों के आगे पूरे दृश्य चल रहे हैं। एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो है आगे बढ़ने की और अपनी मंजिल को पाने की जबरदस्त ललक, जबरदस्त ऊर्जा, क्योंकि 40 घरों के गांव से आप निकल के आते हैं और फिर एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है और आपकी दृष्टि और आपका क्षितिज बड़ा हो रहा है और दिल्ली तक आप जिस तैयारी के साथ और जिस तेवर के साथ पहुंचे वो बहुत बेमिसाल है। ये ऊर्जा जो है
2: जी,
1: ये कहां से आ रही थी?
2: ये ऊर्जा मुझे लगता है कि आपके डिटर्मिनेशन से आती है
1: जी।
2: आपके सारा बैकग्राउंड ऑड है,
1: हाँ,
2: आपके
1: सब कुछ
2: खिलाफ
1: विरुद्ध है
2: और मुझे लगता है जीतने का एक ही जज्बा हो सकता है, वो होती है जिद।
1: वाह वाह,
2: क्योंकि कोई भी ऊर्जा आती है वो आपके जिद से निर्माण होती है कि मुझे तो जाना ही था, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही पढ़ना था।
1: ये बात,
2: और वो मैं नहीं पढ़ता तब भी मैं और कुछ करता जो इससे बेहतर भी हो सकता था, पता नहीं
1: जी जी,
2: पर मुझे तो वहीं जाना था। तो इसीलिए वो जो तैयारी होती है, जो होमवर्क है, रिसर्च है, आपका प्रेपरेशन है, लक्ष्य अगर आपको मालूम है और जाने का तरीका अगर आपको मालूम है तो पूरी शक्तियों के साथ अपने आप को झोंक देने का आपका स्वभाव होना चाहिए।
1: वाह वाह वाह,
2: मैं स्टूडेंट मूवमेंट में भी था तो मैं इतना सा छोटा नाटा था तो 5,000 लोगों के मोर्चा को कंट्रोल कर रहा हूं और आप जवाबदेह है। उस सारे मोर्चा में किसी ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो वो सारा का सारा ठिकरा तो आपके ऊपर फूटने वाला है
1: जी।
2: तो ये सारी जिम्मेदारी का एहसास भी था और इसीलिए वो जिद और श्रम, मेहनत करने की ताकत, मुझे लगता है ये दोनों अगर आपके पास हो तो आपको कहीं से भी कहीं भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप कहां से आए हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कहां क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, गरीब हो अमीर हो, आपको कोई मान्य नहीं रखता। आपका लक्ष्य सीधा आपके सामने होना चाहिए और वहां पहुंचने की ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ पहुंचने की ख्वाहिश बहुत लंबी होनी चाहिए, पुख्ती होनी चाहिए और काम करने का मादा होना चाहिए।
1: क्या बात है, छोटे कद के हल्की सी दाढ़ी वाले दुबले पतले वामन केंद्रे जब दिल्ली पहुंचे तो वहां की शुरुआती दिन कैसे थे?
2: मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैं कुछ, एक आप इमेजिन करते, मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, पहली

0: बार गया
1: जी
0: तो एनएसडी में पहुंचते ही पहले तो ऐसा लगा, मुंबई देख के थोड़ा बहुत गया था तो ये बड़ी 10-12 मंजिला बिल्डिंग होगी, ये थिएटर बड़े बड़े, ये होगा वो होगा वो, वहां गया तो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है,
1: हाँ
0: हाँ 1+1 का कुछ एरिया है, बाकी तो सारा 1-1 एरिया है ऐसा फैला हुआ 7-8 एकड़ में। और मैं जब जा रहा था तो बाहर कुछ वहां की विद्यार्थिनी आ रही थी, जुलाई का महीना था और जुलाई में बहुत गर्मी होती है दिल्ली में,
1: जी
0: तो जो कुछ लड़के लड़कियां वहां से बाहर निकल रहे थे, चाय का टाइम हुआ था 4:30-5 बजे का, और उसी समय मैं अपना रिक्शा लेके वहां उतरा हूं और एक पायजामा पहना हुआ और एक 3 बटन का शर्ट,
1: 3 बटन का
0: तीन
1: मतलब
0: बटन
1: एकदम
0: का,
1: तेवर
0: हाँ
1: के
0: पूरा
1: साथ
0: पूरा गांव
1: कशन
0: वाला गांव वाला, और पैंट और एक शर्ट, ऐसे दो ही पेयर थे मेरे पास,
1: जी
0: एक पैंट शर्ट सूटकेस में रखा था ताकि वो दूसरे दिन स्कूल में जाने के समय मैं पहन लूंगा, और ये पहन के ऐसे ही गया था तो देखा तो सामने से हाई फाई सारे लड़के लड़कियां आ रही कुछ, और हाथ में पैकेट है सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं, तो मैंने उनको पूछा कि एनएसडी किधर है,
1: वाह
0: तो मेरी तरफ देख के हंसे वो, बोले यही तो है एनएसडी, ये सामने जहां से हम आए हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वो समय एक ये था फैशन का कि वो सारे धागे जो है वैसे छुटे हुए होते थे शॉर्ट्स के,
1: जी
0: लगभग इज्जत ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उतनी ही थी, गर्मी बहुत थी। तो ऐसे देखने के बाद मुझे पहला तो शॉक लगा, कल्चरल शॉक, माय गॉड ये एनएसडी है, और यहां पर मुझे 3 साल रहना है,
1: जी
0: तो अंदर ही अंदर ऐसा हो गया वामन केंद्रे संभालो अब कब वापस जाओगे। तो ऐसे एक कुछ सोच मन में आई और धीरे धीरे अंदर गया और रिसेप्शन पे जाके बोला मेरा नाम फलाना है और मैं फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हो गया हूं, एक साड़ी पहनी हुई औरत थी तो मुझे लगा ये टीचर होगी,
1: हाँ
0: तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है उधर बाहर जाना है आपको, तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहां पर एक कमरा है, यहां पर आप अपना सूटकेस और वो जो भी रखना है रखो, और वहां पर एक फर्स्ट ईयर के साथ गैदरिंग होने वाला है सारे उनका स्वागत आगत, तो वहां रख के मैं चला गया, तो जिस महिला से मेरी बात हुई थी तो मुझे लगा वो टीचर होगी, कोई एक्टिंग पढ़ाती होगी या डायरेक्शन, वहां गया तो जब मैं बैठा फर्स्ट ईयर के लाइन में तो मेरे बगल में बैठी थी, मैंने कहा मैडम आप यहां क्यों, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है, और उनका नाम था अनामिका अक्सर
1: हो, घोड़े को जलेबी खिलाना चाहता हूं जिन्होंने
0: तो
1: आगे चल के
0: वो
1: फिल्म
0: मेरी
1: बनाई।
0: क्लासमेट जो
1: वाह
0: पीएन अक्सर जो इंदिरा गांधी जी के एडवाइजर थे, इलीगल एडवाइजर थे, तो उनकी वो बेटी।
1: वाह वाह
0: तो फिर वहां से कारण जी आए, फिर माहौल बन गया, फिर क्या कहते हैं स्वागत हो गया, परिचय हो गया, कौन क्या कहां से आया है, तो एक आध दो गाना गाओ, ये करो वो करो, सब हो गया, तो लगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये जो
1: अच्छी
0: पहला शौक था उस
1: जगह।
0: शौक से उस सदमे से थोड़ा मैं बाहर आना शुरू हो गया कि नहीं नहीं यहां माहौल ठीक है,
1: वो पहले दृश्य में जो लोग थे उनकी कोई सुराग।
0: नहीं नहीं वो नहीं बताऊंगा, उनका नाम बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। अभी भी अजीज दोस्त थे दोनों भी, दोनों तीनों भी,
1: अच्छा
0: और ये
1: ठीक
0: मुंबई में ही रहती है।
1: है। चलिए हम लोग अंदाजा लगा
0: ठीक
1: लेंगे
0: है ठीक
1: है ना। यहां एक गाना सुनते हैं।

0: फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत तूफानी होता है।
1: नहीं, सारा ही तूफानी होता है। एक्चुअली पढ़ने वाले के लिए मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है।
0: जी जी,
1: मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा।
0: अरे कसम,
1: मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना तो महाराष्ट्र है।
0: वाह वाह,
1: क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मराठी है और थिएटर की जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं।
0: जी,
1: तो इसीलिए मैंने, मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहां जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था। हम दो तीन लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई, तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई अमोनकर के गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं, या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं, या श्रीराम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं, या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं, या जापानी सेंटर था वहां जाके कोई उनका फोक आया है वो देख रहे हैं। नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है तो सीधा कोई एक दूर दराज पे चाणक्यपुरी में थिएटर हॉल था, जो फिल्म समझ में नहीं आए ऐसी अंग्रेजी फिल्में जाके देखते थे।
0: वाह वाह वाह,
1: वो इसीलिए था कि शाम फालतू में बर्बाद नहीं करनी है।
0: क्या बात,
1: मेरी रिहर्सल है तो मैं रिहर्सल में रहूंगा, या मुझे किसी और को मदद करनी है तो उनके साथ रहूंगा, सीनियर्स के साथ। तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था। वो सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती थी और रात को कितने बजे खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह 8 बजते ही आप योगा कर रहे हो, 2 दिन हफ्ते में 2 दिन डांस कर रहे हो, 2 दिन ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो, 2 दिन मॉडर्न डांस कर रहे हो, इस तरीके से ये था। किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए है, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे, उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है। एक महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस एंड मूवमेंट का वर्कशॉप लगा, 1 महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया, तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की क्या कहते हैं एक तरीके से 4-5 दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था। तो इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया 1 महीने के अंदर। तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी। सौभाग्य से एक से बेहतर एक टीचर मिले
0: जी,
1: और कारण जी जैसा आदमी हमारे डायरेक्टर थे वो भी पढ़ाते थे, और उन्होंने इतने सारे दुनिया भर के टीचर इकट्ठा करके लाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए। और उसमें सौभाग्य से अलकनंदा समर
0: वाह
1: नाम की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ी हुई और वहां कई सालों से पढ़ा रही थी एक्टिंग, वो फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी उनकी, सौभाग्य से उनके हस्बैंड के ट्रांसफर दिल्ली में हुई एज एम्बेसेडर, फ्रांस के एम्बेसेडर दिल्ली में, तो उनका यहां आना हुआ। और सौभाग्य से कारण जी को जैसे पता चला कि अलकनंदा समर्थ यहां आई, तो उनको उन्होंने 2 साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया, तो हफ्ते में उनकी 2 या 3 क्लासेस होती थी। तो

0: इस तरीके का माहौल था। आप लाइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, नाट्य शास्त्र भी पढ़ रहे हो, वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ रहे हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, और उस तरीके के प्रोडक्शन भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, और पूरी दुनिया से जो थिएटर आता है, मतलब वो एक दिल्ली ऐसा शहर था, तब तो भारंगम वगैरह कुछ नहीं होता उस समय, एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का, वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे। पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया, अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे। तो एक मुझे लगा कि ये अंदर चार दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा, देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला, और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी बनती हैं, फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है उस समय के, जो थियोरिटिशियन भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का, गिरीश कारनाड जी से लेकर चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे हैं, तो कावालम नारायण पनीकर नाटक लेके आए मध्यम व्यायोग उनकी अपने तरीके का, हबीब साहब के नाटक पहले जाते ही पहले महीने में मुझे लगा कि 10 दिन उनके चरणदास चोर के शो मंजर थिएटर में प्रगति मैदान में लगे थे, 10 के 10 शो हमने उस नाटक के देखे।
1: वाह, एक ही नाटक के 10,
0: एक ही नाटक के 10, हर दिन शो कैसे बदलता है और क्या मैजिक है उस थिएटर का
1: जी।
0: ये सारा जो था, फिर एमके रैना थे, बंसी कौल थे, जो हिंदी में थिएटर करने वाले भी थे, और भी भाषाओं के आने वाले लोग थे, प्रसन्ना जी थे, तो ये मुझे लगा कि शांता गांधी का क्या कहते हैं रेपर्टरी कंपनी का नाटक देख रहे, जसमावडन, सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो, तो एक इतना एक्सपोजर थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सब का एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है
1: जी।
0: फ्रिट्स बेनिविट्स भी हम वहां से ब्रेक की नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इप्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का नाटक कर रहा है, कारण जी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, 3 साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो, और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया कि जाओ अब अपने तरीके का थिएटर देखो।
1: वाह,
0: तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहां पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी, विजनरी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रुक को आप पहले साल ही समझ रहे हो,
1: बड़ी बात है।
0: सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर ब्रुक कौन है मालूम थे, तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे, तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला, और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक।
1: बिल्कुल,
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्ट्री कर रही है, श्रीराम सेंटर की रेपर्ट्री क्या कहते हैं अंजी तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहां मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद
1: जी,
0: तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहां रविंद्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने, खुद के मन में जोड़ने की

0: आदत हो जाती है। क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो। तो ये सोचना समझना कहां पर आज भारत का थिएटर है, कहां पर दुनिया का थिएटर है, मतलब जितना भी एक्सपोजर उससे आप ये संचित इकट्ठा करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो। पर मैंने ये तय किया था जो मुझे मिलेगा वो मैं सीखूं।
1: ये बहुत अद्भुत बात है कि
0: मुझे कोई ये रिजेक्ट नहीं करना है, ये मेरे काम का है क्या नहीं, मेरे काम का है क्या नहीं, वो नहीं, जो मिलेगा वो खाना है,
1: वाह वाह,
0: बचाना है, बाद में देखेंगे खून में किसको रखना है और खून से बाहर किसको उतारना है।
1: वाह, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: ए भाई दर्द।

दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तेरे पैर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है ये भाई जरा देख के चलो आगे।

0: अखिल वार है जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: जिस समय आप एनएसडी में थे, आपके बैच और आपके सीनियर बैच के कुछ लोगों के नाम बताइए।
1: बहुत है, अभी सीनियर बैच में देखिए आलोकनाथ, नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, ये श्रीराम बड़े उसी बैच में थे, जो पॉपुलर है उनमें से तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में। प्रांजल साइकिया है, वहाँ आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामीज फिल्म के थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अनामिका अक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटल उन्होंने लिखी
0: नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म,
1: और उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। ब्रिज मोहन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है, वो हिमानी शिवपुरी है,
0: वाह,
1: जो मेरी क्लासमेट है, वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सहाय, हेमा सिंह, हेमा सहाय जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी, अभी मैं था तभी, अभी अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं, सुंदरशी है वहाँ, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में, गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है, राजकिरण बम्मा है वो मॉरिशस में है, तो ये सारे भी, अशोक भाटिया है जो यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं, तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे, कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदंबरा राव जांबे हैं जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है, नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर रहे। तो ये इतने सारे, प्रताप सामल है, वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया, वो भोपाल में स्थित है, वह था ओडिशा का, पर वो अभी भी वो लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से। नीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है, और अभी वो अपने तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है।
0: क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा?
1: मैं तो गया था एक्टर होने के लिए
0: जी,
1: पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। ये सौभाग्य से सब कुछ तीन साल में जितनी संभवता ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं। क्योंकि कारण जी का यह कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके वो थिएटर करे और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से कोर्स इंटीग्रेटेड

0: कर दिया।
1: वो
0: दो या तीन ही बैच के साथ रहा, सौभाग्य से मैं उसमें से एक बैच का हूँ
1: जी।
0: तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो रहा है, पर साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्टिव देखने का जो स्वभाव है चीजों को वो ज्यादा ग्रो हो रहा है, मेरे विजुअल्स ज्यादा ग्रो हो रही है। ह्यूमन हैंडलिंग का तो मुझे अनुभव था ही
1: जी,
0: स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से, और लीडरशिप जो भी छोटी मोटी थी उसका अनुभव तो था ही कि चलो एक 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कुछ हंगामा करते हैं, ये वाला माहौल तो था। पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के दो वजह हैं, एक्टर होता मैं बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है
1: जी।
0: इसी के ऊपर निर्भर हो आप। कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था कि ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने नैरेटिव्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था, मेरा नाटक कुछ बात कहें, वो केवल मनोरंजन ना करे, मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का जो मैं निरंतर करते आया हूं। आप जुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने मन से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंझ वारे से, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी अदा
1: जी,
0: या गजब किची अदा मराठी में
1: जी,
0: या
1: जी,
0: मोहे पिया मध्यम व्यायोग जो है
1: जी,
0: इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और दो लाइट है और दो एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा।
1: वाह वाह क्या बात।
0: तो यहां से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, 3 मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख।
1: ये बात
0: कि मैं जाऊंगा भीड़ जाऊंगा तो वहां 2 फ्लड लगी हुई है,
1: उसी में करना है,
0: उसी में। जयदत्त सिरसागर कॉलेज के वो केशरभाई काकू के बेटे हैं, तो जब वो इंजीनियरिंग कोर्स करके आए तो तब हमें 3 अंक की नाटक कर रहे थे, तो वो आए एक दिन, बताया कि वो इंजीनियर है, तो हमने कहा कि हमको ऐसा ऐसा कुछ करवा के दोगे, तो उन्होंने डालडे के डिब्बे मंगवा के उसको ट्विस्ट ट्राइन करके उसको बड़ा बल्ब लगा के उसको लटका के हमको उन्होंने 2 या 3 फ्लड लाइट बनवा दिए।
1: गजब।
0: तो ऐसे स्थिति में भी हमारे यहाँ सारे के सारे मुंबई या दिल्ली में रहेंगे नहीं, हम अपने अपने गांव में भी जाएंगे, तो वहां नाटक करने के लिए भी हमको मिनिमम रिसोर्सेस में नाटक करना है। तो बोले क्या करना होगा, हमने कहा आप हमें नाटक करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा।
1: अच्छा।
0: हमने अपने 24-25 लोग थे तो 8-8 के इसमें हमने 3 ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे, एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो 2 ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस एक साल में हमने 22 नाटक किए।
1: अरे बाप रे।
0: जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा नहीं है,
1: एक्स्ट्रा थे
0: ये। मैंने महेश एलकुंजवार जी का यातनागर हिंदी में की,
1: बहुत इंटेंस नाटक है
0: और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन देन एक्टिंग।
1: ओके, ये वो पॉइंट,
0: ये अनुभव होता है ना आपको। और ये एक्टर ब्लॉक्ड हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा, और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है। और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारण जी, हबीब तनवीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ, बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर ब्रेक नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक के, वो बर्निनारा और थिएटर एंसेंबल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है।

0: ब्रेक्ट को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट बर्टोल ब्रेक्ट, सो दिस टाइम आई वॉन्ट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच।
1: क्या बात,
0: हमने करी है। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग, डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है। तो 3 साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रजमोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए।
1: वाह।
0: तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह। उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स मिरेक्युलसली एक्टर, इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे हैं ये डायरेक्टर। और दैट वॉज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 इयर्स टाइम।
1: वाह वाह वाह, अद्भुत अनुभव,
0: अद्भुत अनुभव। और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में घुसकर उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो और उसके जो अर्थ के, भाव के जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है, वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख लिया। और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली लेगा आई शुड बी द डायरेक्टर।
1: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा
0: मतलब 2-3 चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया, दूसरा मेरा संस्कार था, और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी बात कहनी है।
1: यस।
0: और मैं आज भी इतने सारे व्यावसायिक भी नाटक किए जहां मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, ऐसे कई सैकड़ों नाटक, कितने भी पैसे देने के लिए प्रोड्यूसर तैयार थे, मैंने आज तक एक भी ऐसा नाटक डायरेक्ट नहीं किया।
1: क्या बात है,
0: जो मुझे अंदर से नहीं लगा।
1: जी, यहां एक गाना सुनते फिर आगे बहुत दिलचस्प सवाल।
0: बिल्कुल, दिल की बात।

0: वामन केंद्र जी, ये जो एनएसजी का पूरा आपने खाका खींचा के इस तरह की इंटेंस गतिविधियां, लेजेंड लोग, सिखाने वाले, साथी, सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है, वो आप जी रहे थे उस समय जब आप एनएसजी का कोर्स फिनिश कर रहे थे। केरल का रुख हो गया अचानक।
1: जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया
0: जी,
1: और मेरे सामने दो चॉइस थे।
0: एक तो
1: जैसे
0: आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना
1: नहीं,
0: है।
1: एक दिन पहले मैं वापस लौटा। फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएसडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह, जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में और नाटक के भी बाहर, तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपर्टरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो गया है और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं।
0: वाह वाह, मतलब दो अलग अलग रास्ते
1: अलग
0: खुले।
1: दोनों भी दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ।

0: जी
1: और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपर्टरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था
0: जी,
1: और वहां पर एनएसडी रेपर्टरी के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है? आपने कहा कि वी आर डिराइविंग समथिंग, तो बोले आपके लिए हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं। तो किस बात की? बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहां के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले, प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं रिसर्च के लिए और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर।
0: अरे गजब।
1: और हमने सब देख लिया है कि यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट, आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से, और वहां के 2-3 स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहां जाना है आपको? तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए।
0: अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड की चमक दमक दिख रही है,
1: इंटरनेशनल। तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मैं, मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं 6 देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भाला ही होगा किसी या एक या 2 डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है इतने सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, जहां पर पंकज कपूर जी है, जहां पर गोविंद नामदेव है, जहां पर आनंद देसाई है, ये सारे के सारे, राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है, के रैना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर हैं, डॉली अहलूवालिया है, इनके सामने उत्तरा भावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है,
0: बाप रे।
1: तो ये सारा इतना, मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहां। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए, और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा, केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों? मैंने कहा मैंने सोचा सर, क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल नहीं मालूम है, ढंग से यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है मुझे, मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है, तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं?
0: गजब।
1: मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है, और वो भी केरल जैसा, जहां पर पूरा द्रविड़ डोमिनेशन है कल्चर में। तो एक आर्य कल्चर से तो मैं हूं, लेकिन मुझे द्रविड़ कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा, और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर फॉर्म से आपको ये सब्जेक्ट के, क्या कहते, आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे रेपर्टरी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो 2 साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था
0: जी,
1: वो 35-35, 40-40 फुट के हेडगेयर आप देख रहे हो, उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, 100-100 चंडे बज रहे हैं, वो जितनी धारधार हथियार लेके वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरी पाइटू सब उसमें सम्मिलित है। तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया
0: जी,
1: खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है।
0: हाँ,
1: वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। दैयम का मतलब होता है दैवम।
0: अच्छा,
1: दैवम मतलब देव
0: जी,
1: उसका वो मलयाली करप्ट प्रोनंसिएशन है, गलत, मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है
0: जी जी जी,
1: पर वो प्रोनंसिएशन है तैयम। तैयम का मतलब है देव,
0: देव
1: जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव बनकर आपके सामने नाच रहा है।
0: क्या अनुभूति है, वाह।
1: मतलब वहां कोई जो एक्टर है पीछे, उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है मेकअप से, कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता
0: कि कौन है,
1: यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्रे कर रहे हैं और कोई है। उसका एक एक मेकअप करने के लिए 4-4, 5-5 घंटा लगता है उसकी।

0: आइडेंटिटी खत्म करने के लिए, और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग है वो गांव के कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग है। उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है,

0: इतना बड़ा वो कॉस्ट्यूम, मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के तार है तो उसके नीचे से जर्नी हो नहीं सकती।
1: इतना बड़ा है वो,
0: इतना ऊंचा है और कुछ कुछ राउंड है, कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दूधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका कसब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है तीन तीन महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी प्यूरिफिकेशन होता है। वो दिसंबर से मई के बीच में तैयम होता है, तो तीन महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, उतनी इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गांव उसके सामने नतमस्तक होता है, अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारे यहां होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर उसके आंगन में और वहां पर जो कठड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती है, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम। और वो आग जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको 32 बार पेट पे जंप करना है,
1: अरे बाप,
0: 32 बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं नारियल के पत्तों से, जलकर जिसको बोलते हैं ना हम, जो

0: खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं। ऐसा काम जो करता है और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहां, जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए, वो भगवान को देखने आए,
1: आस्था है,
0: आस्था है उसके पीछे। इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है
1: जी,
0: जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग है। तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए तैयम वो भगवान निकलता है।
1: अच्छा,
0: सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ।
1: वाह,
0: अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए वो पूरी कम्युनिटी वही करती है, दो तीन कम्युनिटी है जो वहां का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ती चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है। तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है
1: जी, जी, जी।
0: अंदर कितना जलता है किसको नहीं मालूम, वो सारे टीबी के इन्फेक्शन से पड़े हुए लोग हैं। उनके इंटरव्यू किए मैंने और कोई एक पेपर में, तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है, जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ कहाँ है, कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल में है, और कुल मिलाकर आपको वो, मुझे लगता ही नहीं था ये मेरा माहौल है, मुझे लगता था ये मेरा है, पर मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया
1: जी।
0: क्योंकि वो द्रविड़ी कल्चर का पूरा गढ़ है। ये चार राज्यों ने मुझे लगता है कि एक भारत की बहुत अलग अस्मिता को आज तक जिंदा बनाए रखा हुआ है, एंड आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एक्सपोजर एंड नॉर्थ इंडियन एक्सपोजर।
1: एक संगम हो रहा है।
0: तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो ऊर्जा वहां की, विजुअल्स वहां के, नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व्ड थिंग
1: जी।
0: तो मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलोसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलोसॉफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने सवाल था, लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया या नाच में किया, सब हो गया। उसमें तो हमारे दो जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं। हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा या जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा। मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरीके का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं, क्योंकि तब तक ये था कि चलो कव्वाली एक फोक फॉर्म पे बेस्ड नाटक किया, या इस फॉर्म से लिया, इस फॉर्म से लिया, इसको हम कहते हैं कि गुलदस्ता बना के भी नाटक करके देखे। मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा।
1: वाह वाह वाह।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: के साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा रमकोला भेलकक्ष बड़वारी धुरिया अरचोका बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये अभय पुर मेंड्रा चंदन नगर टुकुडाण सिलफिली कनक नगर करसी बूढ़ाडाण गणेशपुर गुड़गवा मदन नगर सिंघरा दलदली भरदा गौरा धर्मपुर सरहरी केवरा करंजवार सेमई दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रघुनाथ नगर धमनी और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये पिंडारी कोटराही मदन पुर गुरमुटी सोनहत नवगई गैना धौरा बिशुनपुर सिलाजू उचेरवा चीनिया महावीरगंज इंदरपुर शिवपुर रामपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये उदारी असकला दोरना मोहरा जरहा डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये मयूर चूंदी कुंजारा पाकरटोली ढोंगा आंबा उपका पानी कुदरा झरिया साजा पानी सोनार पहरी झिक्की खंताडाण परसाडाण पेटा कुरडेग सामरबार मैनी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 106 है। ये आमगांव गेरसा उदउदा पोटिया आमापाली नागदरहा कुड़ेकेला छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये कांसी पानी जाम पानी साजा पानी गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान जडगा एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी मड़ई लोधीबहरा मतीन आमाटिकरा नवापारा सिटी पखना फुलसर कोरबी झुनकीडी जुनवानी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये बंगूरसिया बरकछार चक्रधरपुर धुमाबहाल नागदरहा कया कमतरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर चन्हाट ताल दादर नवागांव कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा नारी पानी कोनारी बुड़ार जिडार पायलीखंड बेसराझर कोदोमाली तौरेंगा कुकरार ताराझर खोलापारा छिंदौला लूठापारा फरसरा के वन क्षेत्रों में

0: विचरण कर रहे हैं।
1: दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार
3: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आइए आनंद लेते हैं चित्रपट संगीत का।

श्रोताओं नमस्कार। शाम के सुहाने वक्त पर आसमान पर छाए बादल, हवा में घुली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और दूर से आती बारिश की बूंदों की रिमझिम, और ऐसे मौसम में रेडियो में बजते कुछ खूबसूरत फिल्मी गीत माहौल को और रंगीन बना देते हैं। तो आइए आनंद लेते हैं कुछ बहुत ही सुंदर गीतों का जो दिल को छू लेते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने सुना गुरु फिल्म से श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज में ये गीत। और एक आवश्यक सूचना, बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा। आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें 07752 यह हमारा फोन नंबर का कोड है, STD कोड है, और फोन नंबर है 266592। इस नंबर पर हमें कॉल करें और अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से पूछें। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। श्रोताओं, एक बार हमारा फोन नंबर और नोट कर लें, 266592, और STD कोड है 07752। इस नंबर पर हमें कॉल करें। सूचना समाप्त हुई। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गुलाम फिल्म से कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में ये गीत। गीत के बोल समीर के हैं और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, आइए अगला गीत सुनते हैं सरफरोश फिल्म से कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में फिल्म लगान से सुखविंदर सिंह, उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वरों में ये गीत। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और धुन बनाई है AR रहमान ने।

मिलकर साथ में सबको, हर किसी को साथ लाना है, सभी अपराधों को खत्म करने को, बस हमें चेतना जगाना है। महिलाओं पर अत्याचार और बाल मजदूरी, ये सब बस बन जाए इतिहास। नशे की लत और सड़क दुर्घटनाओं से

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म दबंग से। राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं। फैज अहमद का गीत है और तर्ज बनाई है साजिद वाजिद ने, और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइशें आई हैं। नानघाट कातल बोर्ड से हैं भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत। डोंगरगांव से हैं राजपाल गजभिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये। करावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुरित, रमेश साहू। कैदी मुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुर से हैं अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना भगत और चेतन भगत। साधुल शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। दिल्ली शहर से हैं अस्मा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी। संबलपुर कांकेर से हैं फागू राम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी। गिरिडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहमद मिफरा नवाज और चाहत। बिलासपुर से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। देवरी भाटापारा से हैं केआर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली छत्री। सावतपुर से हैं ऋषि सेन, रितेश, कंचन, माही सेन। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया। मुंबई से हैं आदिबा नाज, फातिमा नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी। जालंधर से हैं संदीप जटोलिया। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म दबंग से ये गीत।

अभी आपने सुना दबंग फिल्म से राहत फ़तेह अली खान श्रेया घोषाल के युगल सरों में ये गीत, और आइए अगला गीत सुनते हैं आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। गीत के बोल साहिर के हैं और धुन बनाई है रवि ने, और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैलेश गवाणकर, टुक टुक प्रिंस एकांश सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर।

जालंधर से हैं मीना कौर और मन्नत नूर, यवतमाल से हैं पंजाब रामटेके, यशोधरा श्राव्या रामटेके, भाटापारा से हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी। ओवरे ठीपारा भाटापारा से हैं अनीता साहू, वीणा नेहा, मुनिषा साहू। खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म आदमी और इंसान, फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा। आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे में की जाएगी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश सिंह श्रोत। श्रोता उनसे बात करने के लिए हमारे इस नंबर पर कॉल करें, नंबर है 2665592 और STD कोड है 07752, और अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से पूछें। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर एक बार और नोट कर लें, 2665592 और STD कोड है 07752। सूचना समाप्त हुई। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आम्रपाली फिल्म से शैलेंद्र का लिखा ये गीत। शंकर जयकिशन की धुन है और साथियों की आवाज़ है, और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता प्रिंस एकांश गवाणकर हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशी और शीतल राजेश। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू। लच्छनपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। डुमराव से हैं वली उल्लाह।

सारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफ्साल ताज कोटवा नारायणपुर बलिया से हैं, ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय और हैप्पी राय। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म आम्रपाली से ये गीत।

इस गीत के साथ इस कार्यक्रम को अभी देते हैं थोड़ी देर के लिए विराम। श्रोताओं ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 6 बजे।

पहले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद 6:05 पर जिले की चिट्ठी रायपुर से रिले की जाएगी। ईमेल करेगी सुने कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:20 से 6:30 तक और 7 बजे से शाम 7:30 तक। 6:30 पर कानून की बात में आज आप सुनेंगे किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम पर जिला न्यायालय रायपुर के अधिवक्ता श्री टी.आर. साहू से बातचीत। शाम के 7:30 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोठ में चर्चा होगी तालाबों का रखरखाव व मछली पालन पर। फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम होगा आप मन के गीत, साथ होगा मौसम मंडी की जानकारी। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत में सुनिए अभिजीत पोहनकर के गाए कुछ गीत और रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 9:15 से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

और अब कल के मुख्य कार्यक्रम। कल प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे। 6:30 पर खेती की बात आपको सुनाई जाएगी। प्रातः 6:35 पर रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा और 6:45 पर फ्लैगशिप कार्यक्रम में नवनिहान केंद्रित होगा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर। प्रातः 7:05 पर सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह आप सुनेंगे। 7:30 पर पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा यादों की झरोखे से। सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे अमराई। इसमें केदार यादव, सुनीता थवाइत, साधना यादव और साथियों के साथ सहारोबाई, प्रकाश देवांगन, माया खापड़े, सुरेंद्र मधुकर, ज्योति चौहान और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। सुबह 10:00 फोन इन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत का प्रसारण होगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण किया जाएगा 11:30 पर और 12:00 से शाम 5:00 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण होगा और 5:05 पर चित्रपट संगीत का आनंद आप लेंगे। शाम 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आज की बात में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गणित और अंग्रेजी का अध्ययन कैसे करें विषय पर चर्चा होगी। साथ ही सुनिएगा भगवती चरण बोहरा का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। ईमेल करेंगी सुने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे से 7:30 तक। शाम 7:30 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें बेरा के गोट का विषय होगा दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भेंटवार्ता क्रम में सुनिएगा जिले में जलवायु अनुकूल फलोद्यान की स्थापना विषय पर कृषि महाविद्यालय बिलासपुर की डॉक्टर पुष्पलता तिर्की से चैतु भैया की बातचीत। साथ ही होगा गीत संगीत मौसम मंडी की जानकारी। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत में सपना अवस्थी के गायक कुछ गीत आप सुनेंगे और रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे। रात्रि 9:15 से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। जिले की चिट्ठी के लिए आइए जुड़ते हैं।

0: रायपुर केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं दंतेवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख है नरेश मिश्रा का।
2: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं दंतेवाड़ा जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति से निपटने और प्रभावी राहत तथा बचाव कार्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा के बड़े कारली तालाब में 20 अगस्त को मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान तालाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू कर घायल लोगों को प्राथमिक चिकित्सा देने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल में नाव की तकनीकी क्षमता, गोताखोरों की तत्परता तथा बचाव कार्य में अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रियाओं का भी परीक्षण किया गया। वहीं नदी किनारे बसे गांवों में बारिश के दौरान बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए ग्रामीणों के फंसने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारियों का भी पूर्वाभ्यास किया गया। श्रोताओं, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जिले में भी 20 अगस्त को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को योजना के प्रावधानों की जानकारी दी गई, साथ ही चालू वित्त वर्ष में योजना के तहत होने वाले कार्यों का अनुमोदन भी किया गया। ग्राम सभा में ग्रामीणों से गांव की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और संभावित विकास कार्यों के बारे में सुझाव प्राप्त किए गए। श्रोताओं, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में भी 18 अगस्त से शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है। 24 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी केंद्रों में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। वहीं 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 2 बार 1 ml आयरन सिरप पिलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से निर्धारित तिथियों पर बच्चों को निकटतम सत्र में लाने की अपील की है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए दंतेवाड़ा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट परिसर में बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने और इच्छुक हितग्राहियों के लिए बैंकिंग तथा वेंडर की सेवाएं सरल और सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के तहत मिलने वाले बैंक ऋण के लिए बैंकों और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा। श्रोताओं, प्रदेश में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों में निवासरत छात्र छात्राओं की जानकारी अब hmstribal.cg.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आम नागरिक पोर्टल के विद्यार्थी उपस्थिति रिपोर्ट मेनू पर क्लिक कर विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पोर्टल पर शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त संस्थाओं सहित विशिष्ट संस्थाओं में प्रवेशित छात्र छात्राओं की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। श्रोताओं, जिले में महिला किसानों को स्वावलंबी बनाने और उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए 250 महिला किसानों को जैविक उड़द की खेती से जोड़ा गया है। ये पहल बिहान कृषि विभाग और प्रदान संस्था के सहयोग से की जा रही है। इसके तहत प्रत्येक किसान को एक एक एकड़ में खेती के लिए उन्नत बीज और जैविक दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। कृषि सखियों द्वारा बीज उपचार, कतारबद्ध बुवाई, जीवामृत और प्राकृतिक कीट नियंत्रण की जानकारी दी जा रही है। किसानों की उपज को उचित मूल्य दिलाने के लिए मादंतेश्वरी किसान उत्पादक कंपनी के माध्यम से बाजार की व्यवस्था भी की गई है। इस पहल का उद्देश्य गांवों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ महिला किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। श्रोताओं, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष क्लिनिक शुरू किया गया है। इस क्लिनिक का संचालन हर बुधवार को किया जाएगा। जिला अस्पताल में इस विशेष क्लिनिक के शुरू होने से टाइप 1 मधुमेह के मरीजों को अब नियमित उपचार और परामर्श के लिए दूरस्थ स्वास्थ्य संस्थान या दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही मरीज का समय समय पर फॉलो अप होने से उनके स्वास्थ्य की बेहतर निगरानी की जा सकेगी। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दंतेवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख था नरेश मिश्रा का। ये आकाशवाणी रायपुर।

है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरीमा शर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर के नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 जिन शिक्षक मनला देही।

0: कैंसिल। और रायपुर पुलिस ह अंतरराज्यीय ठगी गिरोह के 7 जिन आरोपी ला करिस गिरफ्तार। एखर मन तिर ले 4 करोड़ रुपया ले ज्यादा के नकदी बरामद। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर के नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 जिन शिक्षक मन ला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देही। एमा छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के शासकीय प्राथमिक शाला खिचड़ी में पदस्थ शिक्षिका सुनीता यादव के नाम घलो शामिल है। सुनीता यादव हा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुघर काम करत नान्हे लैका मन में पढ़ई सोच रुचि बढ़ाए नवाचार के माध्यम ले शिक्षा ला प्रभावी बनाए के संगे पढ़ैया लैका मन के सर्वांगीण विकास खातिर सहारा के लिए काम करें हैं। आज अंतरिक्ष दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीन है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स सरकार में अपन भरोसा दिखा है। ओमन अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी मन संग चर्चा में उखर मन ले सल्लक प्रयास करे के संगे अंतरिक्ष क्षेत्र के एक ठीन मजबूत इकोसिस्टम तैयार करे के अपील करे हैं। प्रधानमंत्री हकीन है कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जेखर ले दुनिया भर के लोगन अंतरिक्ष क्षेत्र में अपन कैरियर बनाए बर भारत ला पसंद के रूप में देखें। उन्हें प्रधानमंत्री अंतरिक्ष क्षेत्र में जवान लड़का मन के कामला गलो सहराइन। दुर्ग जिला में स्वाइन फ्लू के पहले या मामला आगू आए बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गए है। जिला के एक ठीन निजी अस्पताल में भर्ती करीबन 3 साल के नाहने नोनी H1N1 वायरस के पुष्टि हो है। ए नोनी ला तेज बुखार और फ्लू असन लक्षण बाद अस्पताल में भर्ती कराई गई रही। फिलहाल ओखर उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर मन की निगरानी में चलत है। उन्हें संक्रमण झन फैले कही के ओला आइसोलेट करे गए है। दुर्ग के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे है बताई कि स्वास्थ्य विभाग ए नान्हे नोनी के संपर्क में आए आने मनखे मन के बारे में घलो जानकारी सकेला थे। एकर उद्देश्य शुरुआती स्तर में संक्रमण ला बगरे ले रोकना है। डॉक्टर बंजारे हा लोगन मन ले अपील करे हैं कि वो मन घबराए जान और कोनो भी मनखे में फ्लू असन लक्षण दिखते साठ सावधानी राखे के संगे डॉक्टरी सलाह तुरते ले मैं। छत्तीसगढ़ सरकार है पूर्व अग्निवीर मन बर सरकारी नौकरी के रद्दा ला सरल बनाए खातिर बड़का फैसला ली है। राज्य में अब तृतीय श्रेणी के पद मन बर सोझे भर्ती में पूर्व अग्निवीर मन ला 10% आरक्षण मिली। राज्य सरकार है एखर बर अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम 2026 के नोटिफिकेशन निकाल दे है। 4 बच्चर की सेवा पूरा करैया अग्निवीर मन ए व्यवस्था के दायरा में आही। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है प्रश्न पत्र लीक होए की घटना ला देखत बीते 7 अगस्त के होए BSc कृषि के फर्स्ट ईयर के प्लांट पैथोलॉजी वाले परीक्षा ला घलो कैंसल कर दी है। ये निर्णय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल के पगरैती में होए बैठका में लेगी। ये बैठका में अवैया परीक्षा बेरा गोपनीयता और निष्पक्षता तय राखे बर कई ठीन बड़का निर्णय लेगी। उन्हें दुर्ग के भारतीय कृषि महाविद्यालय के खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई करे के फैसला ले गई है। बैठका में यह तय करेगी कि दोनों रद्द हुए पेपर ला सितंबर के पहला सप्ताह में ले जाही। उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री विजय शर्मा हा कहिन कि पाछू 2.5 बच्चर में प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 11 लाख ले ज्यादा घर कुरिया बनाए गए है। आज रायपुर में पत्रकार मन ले गोड़ बात करत उप मुख्यमंत्री हा कहिन कि वर्तमान में प्रदेश में करीबन 4 लाख मकान बनत है। अवेला बहुत जल्दी पूरा करे बर विभाग डहर ले प्रयास करे जाते। श्री शर्मा हा कहिन कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बारे में बात करना चाहते तो सरकार हा तैयार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के गुढ़ियारी में राखे गए कांवर यात्रा में शामिल हुईन। ओमन भगवान शिव के रुद्राभिषेक करके कांवर यात्रा में शामिल शिव भक्त मल्ला पवित्र सावन महीना पर शुभकामना दिन है। ओमन कहिन कि सावन महीना हा भगवान शिव की आराधना और भक्ति भाव के विशेष मौका रही थे। ये आयोजन है धार्मिक यात्रा पर धार्मिक यात्रा बर नोए भलुक हमार संस्कृति परंपरा और सामाजिक एकता के तिहार घलो है। यहाँ आए बता दन कि गुढ़ियारी के मारुति मंगलम परिसर ले हजारों कांवरिया मन शुद्ध जल ला ले के महादेव घाटी स्थित भगवान हटकेश्वर नाथ महादेव के जल अभिषेक बर रवाना हुई। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग

0: आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बढ़बो बांचे समाचार डहार। राज्य पुलिस वास वास यानी करिया नोट ला असली पैसा में बदले के झांसा दे के ठगैया अंतर्राज्यीय गिरोह के पर्दाफाश करे है। पुलिस पुणे ले 7 जिन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मंत्री ले 4 करोड़ रुपया ले ज्यादा के नकदी, 17 ठिन मोबाइल फोन और ठगई मामला में इस्तेमाल हुआ जिनिस जब्त करे गए है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह बछड़ 2005 ले सक्रिय रहीस और देश भर में 100 ले ज्यादा मन के मंत्री ले अरबों रुपया के ठगी करे है। ये मामला में अब तक 9 जिन आरोपी ला गिरफ्तार करेगे है। छत्तीसगढ़ पुलिस डहाल ले 15 अगस्त ले शुरू करेंगे साइबर जागृति अभियान के दूसरा हफ्ता आज ले शुरू हो गए है। ये दौरान बैंक, एटीएम परिसर, वित्तीय संस्थान और अन्य जगह मन में लोगन मन ला यूपीआई फ्रॉड, फर्जी कॉल या मैसेज ले ठगई, क्यूआर कोड और ओटीपी ले जुड़े ठगई बारे में जागरूक करे जाते। संगे साइबर धोखाधड़ी होए की स्थिति में 1930 में शिकायत दर्ज करे बारे में घलो जानकारी दे जाही। रायपुर के नकटी गांव स्थित ब्लू वाटर खदान में बुढ़े आदिल खान के लाश पानी ऊपर उफलाए ले मिली से। 3 दिन तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के टीम वाले मन गहिर पानी भीतरी सल्लग सर्च ऑपरेशन चलात रहीन, तब होले कामयाबी नहीं मिली रहीस। फिर सनिचर देर रती लाश खुदे पानी ऊपर उफला गिस। घटना के बाद ले परिवार वाले मन लगातार मौका में मौजूद रहीन। यहाँ बता दन की प्रशासन इंडियन नेवी ले घलो मदद मांगे रहीस, जेखर बाद इंडियन नेवी की विशेष टीम आज रायपुर पहुंचाई। उन्हें बिलासपुर जिला के तखतपुर मा काली स्कूल छुट्टी बाद घर लौटत 3 जिन नान्हे लैका मन घोंघा नदी ला नहाकत बेरा हुरहा पानी के तेज बहाव मा बुहागिन। हादसा बाद पुलिस और गवई के मनखे मन ए नदी मा घंटों सर्च ऑपरेशन चलाइन, जेखर बाद 1 जिन नान्हे लैका के लाश मिली से उन्हें 2 जिन ला खोजे के काम चलत है। छत्तीसगढ़ राज्य काउंसलिंग समिति नीट यूजी प्रवेश बछर 2026 के राज्य स्तरीय काउंसलिंग ल लेके दिशा निर्देश जारी करे है। समिति स्पष्ट करे है कि केवल मेरिट सूची में नाम आए या फिर कोनो संस्थान में सीट आवंटित हो ले कैंडिडेट के एडमिशन आखिरी नहीं माने जाही। पाछू बछर असन ए बछर घलो काउंसलिंग, मेरिट और आवंटन के प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम ले करे जावत है। आवंटन बाद कैंडिडेट डहार ले जरूरी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करे और उखर वेरिफिकेशन में पात्र पाए जाए के बाद प्रवेश प्रक्रिया पूरा माने जाही। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हकी ने कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय पढ़ैया लैका मन के हित के संग कोनो भी तरह के अनदेखी बर्दाश्त नहीं करे जाही। ओमन किहीन के डोमेसाइल लले के अगर कोनो शिकायत सामने आही तो ओखर गंभीरता ले जांच कराए जाही। अब थोरकुन समाचार सारमा। रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के नेत्र रोग विभाग डहर ले नेत्रदान प्रक्रिया पर राज्य स्तरीय वर्कशॉप राखेगी और विशेष रोजगार कार्यालय और एक ठीन निजी संस्थान डहर ले दिव्यांगजन मन बर रायपुर में 31 अगस्त के रोजगार मेला राखी जाही, जेमा कुल 30 ठीन पद में भर्ती करे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर के नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 जिन शिक्षक मन ला देही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। एमा छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के शिक्षिका सुनीता यादव के नाम घलो शामिल। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बीएससी कृषि के फर्स्ट ईयर के बीते 7 अगस्त के होए प्लांट पैथोलॉजी वाले परीक्षा ला घलो करिस कैंसिल। और रायपुर पुलिस अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह के 7 जिन आरोपी ला करिस गिरफ्तार। एखर मंत्री ले 4 करोड़ रुपया ले ज्यादा के नकदी बरामद। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: अभी छत्तीसगढ़ी में समाचार रायपुर से रिले किए जा रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम ईमेल करेंगी सुने कार्यक्रम का शेष भाग। श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म छोटी बहन से मुकेश का गाया ये गीत। गीत के बोल हसरत जयपुरी के हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। और इस गीत के लिए हमारे पास ईमेल से फरमाइशें आई हैं। नरवेल महाराष्ट्र से PS नमहानकर, निर्मला विशाल नवहानकर, सौगा मगरलोट से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार हे अंश कुमार चंदन, कुम्हार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका दले, कर्मा चौक लोहारी डी जिला कवर्धा से हैं।

0: अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशांत, निशांत साहू, रोहासी से हैं मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू, गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम, सहोदर नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे, मंजू कटीला से हैं कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सरगांव से हैं राजेश वर्मा, हीरो मन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, यवतमाल से हैं राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी मानव, दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु, पाखुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू, तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, कालेगांव जाफराबाद से हैं सुधाकर राजे जाधव प्रशांत, राजे जाधव, संचेत वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख और सर्वत देशमुख, दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना, चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म छोटी बहन से मुकेश की आवाज में ये गीत।
1: जाऊं कहां बताए दिल

आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

Chekele! Mir pas vaktin futbol.

भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए

0: BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोताओं, महिला सभा हेतु एक सूचना। फोन करेगी सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 25 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 24 अगस्त 2026 सोमवार प्रातः 11 बजे से 11:30 पर के बीच में की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा अतिथि देवो भव। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं बातों बातों में, क्या कहना और जब वी मेट। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 266592। हमारा STD कोड है 07752। श्रोताओं, फ़ोन नंबर एक बार और नोट कर लें 266592 और STD कोड नंबर है 07752। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म धड़कन से अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में ये गीत। गीत के बोल समीर के हैं और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने, और इस गीत को सुनना चाहा है वडी खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने। नरखोड़ा से हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, टिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। गांव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। महसोल सीतामणि बिहार से हैं मुसर्रत जहां नाज, तलत, फरहत, रिफत, नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान, उत्तम जमदाड़े। भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से हैं परिम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करणदीप, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजोत। गुजरात से हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, पूजा परिहार। वीरगाम राजकोट से हैं रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं धड़कन फिल्म से ये गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत हम कार्यक्रम के शेष भाग में जब आप सुनेंगे उसमें सुनाएंगे। अभी सुन लेते हैं एक संदेश।
1: के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रमाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: श्रोताओं, ईमेल करेगी सुने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:30 होने वाले हैं कानून की बात। ये कार्यक्रम हम कुछ ही देर में रायपुर से रिले करेंगे।
2: कानून की बात कार्यक्रम में आइए सुनते हैं किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, इस विषय पर अधिवक्ता जिला न्यायालय रायपुर श्री TR साहू द्वारा दी गई जानकारी।

0: कानून की बात इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में, और इस विषय पर आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं अधिवक्ता श्री टी आर साहू जी। और साहू जी से हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम 2015 क्या है और इसका उद्देश्य क्या है।
1: सर, बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। सबसे पहले मैं श्रोता साथियों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। सर, किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम 2015, बालक के भविष्य जो वर्तमान है वो कल देश के नागरिक बनेंगे और राष्ट्रहित पर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 3, 24 एवं 39 को संदर्भित किया गया है। इस बात को महसूस करते हुए कि देश की किशोरों से संबंधित एक दृष्टिगत रखते हुए यह अधिनियम बनाई गई है, जिसे किशोर न्याय बालकों के देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 कहा गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह देखती है सर कि ऐसे बालक या बालिका या फिर जो संविधान में संदर्भित जो उल्लिखित परिभाषित है, तो जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं वे प्रत्येक बालक की परिभाषा और बालक की श्रेणी में आएंगे और इस अधिनियम के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्मिलित की जाएगी और इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें लाभान्वित की जाएगी।
0: तो उद्देश्य क्या है इसका, इसे बनाने का?
1: सर, मुख्य उद्देश्य यह है कि कभी कभार यह हो जाती है सर कि अपराध व्यक्ति जानबूझकर नहीं करता या कुछ कारण, कुछ परिस्थिति, और ऐसे परिस्थिति भी निर्मित हो जाते हैं जिससे उन बालकों को भविष्य में एक स्वच्छ नागरिक, स्वतंत्र नागरिक एवं सुशिक्षित नागरिक ना बन पाए, ऐसे बाधा ना हो। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक को एक समानता के अवसर पैदा होना चाहिए और समानता के अवसर हमारी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार भी प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार प्रदान करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह देखी जाती है सर कि हम कानून के दायरे में रखकर केवल किसी व्यक्ति को इस आधार पर अपराधी घोषित करके या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ऐसी स्थिति में 18 वर्ष से कम बालकों जो किसी कारणवश किसी अपराध के संदर्भ में या फिर कीचड़ के दलदल में फंस जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसे संरक्षण प्रदान करना जो बालकों के देखरेख अधिनियम 2015 बनाई गई,
0: यानी कि समाज की जो मुख्य धारा है उसमें वो शामिल हो सके और अच्छा नागरिक बने,
1: अच्छे नागरिक बन सके।
0: संवैधानिक रूप से यदि हम देखें तो बालकों की देखरेख और संरक्षण के साधारण सिद्धांत क्या है?
1: सर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखी जाती है कि निर्दोषता की धारणा, निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार का दंड ना मिले, पनिशमेंट ना मिले, कानूनी की पेचीदगी में ना फंसे, ताकि उनकी भविष्य उज्जवल रहे और कल के डेट में वो आने वाले समय में एक स्वच्छ सिद्धांतिक नागरिक बन सके जो देश की भविष्य को संवार सके। दूसरा उद्देश्य है सर मर्यादा तथा आधार का सिद्धांत। एक मर्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सर, उस आधार पर उन व्यक्तियों को एक मौलिकता का आधार सिद्धांतिक रूप से मिलना चाहिए जो प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। तीसरा देखेंगे भागीदारी का सिद्धांत। भागीदारी, समाज में प्रत्येक वर्गों, प्रत्येक व्यक्ति को भागीदारी, भाग लेने का अधिकार है। हमारी भारतीय संविधान में बहुत ही बढ़िया इस बात को एक्सप्लेन की गई है कि हम केवल जाति, धर्म या फिर किसी लिंग अनुपात के आधार पे हम उसको किसी भी प्रकार से उनके अधिकारों से, फंडामेंटल राइट्स से वंचित नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। तो बालकों के संरक्षण अधिनियम 2015 बनाए जाने का उद्देश्य भी यही है, न्याय सबको प्राप्त हो सके। कहावत है कि जस्टिस इज ऑल, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। तो केवल उस सिद्धांत के हिसाब से एक बालक जो है, जिसको नाबालिग भी कहा जाता है, अवयस्क कहा जाता है या 18 वर्ष से कम उम्र कहा जाते हैं, उनको भी सर्वोत्तम न्याय का सिद्धांत मिल सके। पारिवारिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत, तो परिवार में आपकी जो आपसे बड़े हैं उनकी क्या दायित्व है, क्या उनकी जो लाइबिलिटी है, या फिर उस बालकों को किस प्रकार संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, किस प्रकार की एक अच्छी शिक्षा के मार्ग में ले जा सकते हैं, तो यह भी सिद्धांत इस बातों को उपार्जित करती है। और अर्थविहीन या फिर कहने का मतलब यह है कि कहावत है कि कलंकित कर सिद्धांत, क्या बोलते हैं ना, कलंक लग गई, कलंक लग, सामान्य भाषाओं में ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कलंक लग गए, कलंकित सिद्धांत ना हो। केवल इस आधार पे कि उन्होंने अपराध की वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है और अपराध की दलदल में फंस गए, तो कलंकता का सिद्धांत उस बालक पर ना लागू हो, ताकि वहीं से उसके जीवन के सिद्धांत तो मुड़ न सके और एक नए सिरे से लाइफ को, जीवन को सुधार सके।
0: बहुत तो अच्छी बात आपने कही है। जी जी जी
1: जी सर।
0: वकील साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि किशोर न्याय बोर्ड क्या है, यानी कि जिसे हम किशोर न्याय परिषद कहते हैं,
1: जी जी,
0: ये भी इसे कहा जाता है, तो ये क्या है?
1: सर, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किए हैं। किसी भी कानून में एक

0: हमारे भारतीय संविधान में कहा जाए या संसद के माध्यम से कहा जाए या राज्य शासन के माध्यम से कहा जाए, हमारी राज्य जो है सर कुल मिलाकर के लोक कल्याणकारी राज्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलेगी, चाहे शिक्षा के अधिकार के संबंध में हो या जीवन जीने के अधिकार के संबंध में हो या फिर उनकी कानूनी संरक्षण का अधिकार हो। तो कानूनी संरक्षण का अधिकार के आधार पे उस बालक को एक पूर्व में इसे किशोर न्याय बोर्ड कहा जाता था, अब उसके नाम परिवर्तन कर दिए गए, उसको और सरलीकरण कर दिए हैं ताकि उस बालक को उस कानून की सिद्धांतिक आधार पे चल सके, उनको न्याय मिल सके, उनके देख रेख कर सके, उनको केवल दोष है या निर्दोष है इस बात को साबित करने के संबंध में उस सिद्धांत बोर्ड का गठन की गई है। बोर्ड के में एक प्रेसिडेंट होंगे जो कि न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम वर्ग की समकक्ष मानी जाएगी, प्लस दो अतिरिक्त मेंबर होंगे। प्रत्येक जिले में गठन होगी इनका, और ये जो है जो 18 वर्ष से कम जो जुनाइल कोर्ट के सिद्धांत के आधार पर आते हैं उन बालकों का विचारण करेगी, ट्रायल करेगी, और उसी ट्रायल के आधार पर एक सुधार गृह के माध्यम से उनको संरक्षण प्रदान करेगा, उनके कानूनी दायित्वों का सिद्धांतों की रक्षा करेगा।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने इस संबंध में। अच्छा, विधि का यदि उल्लंघन हो तो ऐसे बालकों के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है?
0: कानून के हिसाब से एक नियमावली बनाई गई है जिसमें राज्य शासन एक उन बालकों के संरक्षण के संबंध में कानून बना सकती है, दूसरा परिषद के समक्ष उनको न्याय बोर्ड जो गठित की गई जैसे मैं आपको बताया, न्याय बोर्ड के समक्ष पेश की जा सकती है। उनको स्कूल के प्रमाण पत्र की अधिमिता रहती है जी, हम कैसे साबित करेंगे कि वो बच्चा जो है बालक है या 18 वर्ष से कम है या इस विधि अवयस्क है या इस सिद्धांत इस कानूनी संदर्भ में उसकी क्राइटेरिया में नहीं आती, तो इस बात को कौन निर्धारित करेगा? न्यायालय निर्धारित करेगा। न्यायालय इस बात को तो इस संबंध में बालकों के लिए न्यायालय के स्थान पर किशोर न्याय परिषद गठन की गई है जो वर्तमान में किशोर न्याय परिषद के नाम से संबोधित की जाती है, इसी को पूर्व में किशोर न्याय बोर्ड के नाम से जाना जाता था। तो इस अधिनियम में संशोधन किए गए और साथ ही साथ इसको प्रमाण पत्र की जानकारी देंगे कि कितनी मतलब कहां तक वास्तव में बालक जो है वयस्क है या अवयस्क है। तीसरी यह है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध स्थगन, बालकों को विशेष संरक्षण प्राप्त है कि हम बिना उसकी उम्र की जानकारी लिए, उनकी अपराध की वास्तविकता जानकारी लिए या फिर विवेचना किए बगैर हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। पहले उनके संबंध में पूरी जानकारी ली जाएगी, उनकी सारी बैकग्राउंड को तलाश की जाएगी, उसके बाद वास्तव में वो जो अगर अपराध की श्रेणी में आता है तो ऐसे व्यक्तियों को किशोर संरक्षण गृह में रखा जाएगा ना कि जेल में, और दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक उम्र से है अपराध करता है तो उन्हें राज्य शासन के निर्देशानुसार एक कारागार जो बनाई गई है उसमें निरुद्ध की जाती है, लेकिन किशोरों को इस बात का संरक्षण विशेष लाभ प्राप्त है कि उन्हें संरक्षण गृह में रखा जाता है, सुधार गृह में रखा जाता है ताकि उनके चरित्र पर या उनके आने वाले कल भविष्य पर इस प्रकार की आपराधिक छवि ना बन पाए। और इस कानून का बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बालकों को केवल इस आधार पर हम उनके भविष्य को खराब नहीं कर सकते कि उन्होंने भूल भुलैया में किसी कारणवश या फिर ना जानते हुए अपराध की श्रेणी में या अपराध की किसी जर्जर में फंस जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के संरक्षण बोर्ड जो है परिषद बनाई गई है जो उनके कानूनी संरक्षण करते हैं।
1: यानी हम ये कह सकते हैं कि बालकों का कल्याण हो ऐसे प्रावधान न्याय सम्मत हो।
0: बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने, बालकों का कल्याण हो, बालक केवल नाबालिग की स्थिति में किस प्रकार आपराधिक गतिविधि न फंसे। जैसे मैं बताया था कि बालक आज के बालक कल हमारे देश के भविष्य हैं, और इस भविष्य को हम ऐसे संरक्षित करें, ऐसे सुरक्षित करें, ऐसे सुशिक्षित करें जो समाज की एक उज्ज्वलता को प्रमाणित कर सके, हमारे देश के स्वच्छ नागरिक बन सके।
1: तो जब बाल कल्याण की हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि बाल कल्याण समिति क्या है और ये कैसे कार्य करती है?
0: धारा 27 में राज्य सरकार की शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालकों के संबंध में ऐसी समितियों के शक्तियों को प्रयोग करने के लिए कर्तव्यों के निर्वहन करने उक्त समिति की गठन की गई। इसमें एक समिति गठन की गई है जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, और राज्य सरकार उस आधार पर निर्धारित करेगी कि प्रत्येक जिले में

0: एक किशोर न्याय परिषद होगी जिसमें एक क्लास वन रैंक के मजिस्ट्रेट हैं वो जो है उनकी अध्यक्ष होंगे, साथ ही साथ दो अलग अलग समाज से जुड़े व्यक्ति जो बालकों के बारे में ज्ञान रखते हैं, उनकी गुणवत्ता के बारे में ज्ञान रखते हैं, उनके संरक्षण के बारे में ज्ञान करते हैं,
1: उनका मनोविज्ञान समझते हैं,
0: मनोविज्ञान समझते हैं या फिर समाज कल्याण से जुड़े ऐसे व्यक्ति जो अतिरिक्त सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक जिले में संभवतः किशोर न्याय परिषद की गठन की गई है, यही समिति द्वारा इनको क्या है बालकों को संरक्षण के संबंध में, देखरेख के संबंध में विचारण देखती है।
1: जी जी जी। अच्छा, बालकों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो क्या क्या है?
0: सर, सबसे बड़ी बात यह है कि बालकों को पहचान की प्रगटीकरण के निषेध। हम ये देखते हैं कि बालक को आज हम ये बात अंगित कर देते हैं कि यही बालक अमुक बालक अपराधी है तो समाज में उसकी छवि एक आपराधिक बन जाएगी और ऐसी परिस्थिति में समाज उन्हें हे दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर देगा और वो जो कल का बालक हो सके तो भविष्य में सुधार की गुंजाइश थी उनके ऊपर, लेकिन वो सुधार नहीं हो पाया और ऐसी परिस्थिति में वो क्या है एक आपराधिक जीवन जीने पर मजबूर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बालकों के विरुद्ध अपराध के संबंध में विशेष निर्देश प्राप्त किए गए, ऐसे बालकों को किसी प्रकार से प्रकटीकरण या चिन्हांकित नहीं की जाएगी। दूसरा बात देखेंगे कि प्रकाशन पर निषेध। अब 18 वर्ष से कम बालक है तो प्राय ये देखा जाता है कि वो जो है किसी प्रकार से उनके प्रकटीकरण ना करें, जब तक के किशोर न्याय परिषद उनका विचारण ना कर ले तब तक के उनकी प्रगटीकरण दृश्य माध्यम से नहीं की जाएगी,
1: यानी अखबार वगैरह में वो प्रकाशित नहीं होगी समाचार इस तरह के।
0: और अगर कोई व्यक्ति जो बालकों को अपने संरक्षण में रख के उनसे भीख मंगवाते हैं या फिर उन्हें द्रव्य या मादक द्रव्यों के संलिप्तता में ले जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को कम से कम 6 माह की सजा से लेकर 3 वर्ष तक की कठोर कारावास के संबंध में विधि द्वारा अधिनियम बनाई गई है।
1: अच्छा वकील साहब, जो ऐसे बालक होते हैं तो उनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था रहती है?
0: आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया सर। मैंने बताया कि समाज में हम केवल किसी कारणवश या फिर केवल भूलवश आपराधिक गतिविधि में जाने की वजह से उस बालक का भविष्य खराब ना हो या फिर उन्हें सुधार का मौका दिया जाए, सभी की कर्तव्य बनते हैं और इनके द्वारा लोक कल्याणकारी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी प्रकार जैसे कोई बालक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता हो जाते हैं तो उनको 18 वर्ष से कम बालकों को ऐसे अवसर प्रदान किया जाता है कि उन्हें हम पुनर्वास कर सके, पुनर्स्थापित कर सके, उनके लिए एक संरक्षण की जो व्यवस्थाएं की जाती है, एक अच्छी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्थाएं की जाती है, उनको जैसे उम्र के साथ साथ उसमें जानने की जिज्ञासा होगी तो उनको उन परिस्थितियों में शैक्षणिक माहौल पैदा किया जाता है ताकि पुनर्स्थापित करके उनको उचित देखरेख करके उनको समाज की नई गतिविधियों के साथ पुनः जोड़ी जा सके।
1: तो वकील साहब, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी बालकों की देखरेख और उनके संरक्षण के बारे में और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में भी काफी गहरी बातें आपने बताई। वाकई हमारे जो श्रोता है उनके लिए सारी बातें बहुत फायदेमंद साबित होंगी। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको आप बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर और हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कानून की बात कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम। इस विषय पर अधिवक्ता जिला न्यायालय रायपुर श्री TR साहू से बातचीत। ये आकाशवाणी रायपुर है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
12: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभास कुमार झा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की शिक्षिका सुनीता यादव भी होंगी सम्मानित। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बीएससी कृषि के प्रथम वर्ष के अंतर्गत प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा भी रद्द की। कोंडागांव जिले में एक वाहन ने मंत्री केदार कश्यप के काफिले की गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में 4 पुलिस जवान घायल। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 7 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक शाला खिचड़ी में पदस्थ शिक्षिका सुनीता यादव भी शामिल हैं। सुनीता यादव ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित करने के साथ ही नवाचार के माध्यम से शिक्षा को प्रभावी बनाने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उल्लेखनीय

0: में प्रयास किए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने प्रश्न पत्र लीक होने की जांच में तथ्यों के सामने आने के आधार पर बीएससी कृषि के प्रथम वर्ष के अंतर्गत प्लांट पैथोलॉजी की बीते 7 अगस्त को ही परीक्षा भी रद्द कर दी है। यह निर्णय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय प्रबंधन की आपात बैठक में लिया गया। इससे पहले विगत 20 अगस्त को बीएससी कृषि की परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र लीक हो जाने की घटना सामने आने के बाद दुर्ग के भारतीय कृषि महाविद्यालय और परीक्षा में शामिल पर्यवेक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। बैठक में तय किया गया कि दोनों रद्द परीक्षाएं सितंबर के पहले सप्ताह में ली जाएंगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अब सभी प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले विशेष पासवर्ड से खुलने वाले ईमेल के माध्यम से महाविद्यालयों को भेजे जाएंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग और महाविद्यालयों के परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कोंडागांव जिले में जुनवानी के पास एक वाहन ने मंत्री केदार कश्यप के काफिले की गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में मंत्री की गाड़ी के पीछे चल रहे वाहन में सवार 4 पुलिस जवान घायल हो गए। मंत्री श्री कश्यप सुरक्षित हैं। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस की टीम ने घायल जवानों को कोंडागांव जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह हादसा उस समय हुआ जब मंत्री केदार कश्यप अपने गृह ग्राम फरसागुड़ा से कोंडागांव जा रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के गुढ़ियारी में आयोजित कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का उत्सव भी है। इस अवसर पर गुढ़ियारी क्षेत्र से बड़ी संख्या में कांवड़िये पवित्र जल लेकर महादेव घाट स्थित भगवान हटकेश्वर नाथ महादेव के जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ राज्य काउंसलिंग समिति ने नीट यूजी प्रवेश वर्ष 2026 की राज्य स्तरीय काउंसलिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। समिति ने स्पष्ट किया है कि केवल मेरिट सूची में नाम आने या किसी संस्थान में सीट आवंटित होने से अभ्यर्थी का प्रवेश अंतिम नहीं माना जाएगा। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी काउंसलिंग, मेरिट और आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपादित की जा रही है। आवंटन के बाद अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने और उनके सत्यापन में पात्र पाए जाने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 15 अगस्त से शुरू किए गए साइबर जागृति अभियान का दूसरा सप्ताह आज से शुरू हो गया है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक रोहित झा ने बताया कि अभियान के दौरान बैंकों, एटीएम परिसरों, वित्तीय संस्थानों और अन्य जगहों पर लोगों को यूपीआई फ्रॉड, फर्जी कॉल या मैसेज से ठगी, क्यूआर कोड और ओटीपी से संबंधित ठगी के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
1: छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर जागृति अभियान के तहत द्वितीय सप्ताह आरंभ हो गया है। इसमें वित्तीय धोखाधड़ी और यूपीआई सुरक्षा से संबंधित विषय पर अगले आने वाले एक सप्ताह तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों में जाकर के लोगों को साइबर अपराध, धोखाधड़ी, ठगी, ओटीपी पिन साझा करने, क्यूआर कोड आधारित ठगी एवं संदिग्ध लिंक से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज करने के प्रति जागरूक किया जाएगा।
0: सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। उपमुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि पिछले 2.5 वर्षों में प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 11 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 4 लाख आवास बन रहे हैं और इन्हें जल्द पूरा करने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में यदि बात करना चाहते हैं तो राज्य सरकार इसके लिए तैयार है। रायपुर के नकटी गांव स्थित ब्लू वाटर खदान में डूबे आदिल खान का शव पानी के सतह पर मिला है। 3 दिनों तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें गहरे पानी में लगातार तलाशी अभियान चलाती रहीं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। शनिवार देर रात शव पानी के ऊपर आ गया। घटना के बाद से परिजन लगातार मौके पर मौजूद थे। इस बीच प्रशासन ने इंडियन नेवी से भी मदद मांगी थी। नौसेना की ईस्टर्न कमांड की विशेष टीम आज रायपुर पहुंचने वाली थी। वहीं बिलासपुर जिले के तखतपुर में कल स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे 3 बच्चे घूंघा नदी पार करते समय अचानक पानी के तेज बहाव में बह गए। हादसे के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने नदी में घंटों तक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 1 बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान करने वाला बड़ा फैसला लिया है।

0: राज्य में अब तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीर इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती करीब 3 साल की बच्ची में H1N1 वायरस की पुष्टि हुई है। बच्ची को तेज बुखार और फ्लू जैसे लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उसका उपचार विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है और उसे संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए आइसोलेट किया गया है। दुर्ग के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर CVS बंजारे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग बच्ची के संपर्क में आने लोगों की भी जानकारी जुटा रहा है। इसका उद्देश्य संभावित संक्रमण का शुरुआती स्तर पर पता लगाकर उसे फैलने से रोकना है। डॉक्टर बंजारे ने लोगों से न घबराने की अपील की है। उन्होंने लोगों से फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील भी की है। रायपुर पुलिस ने नकली नोटों को अश्लील मुद्रा में बदलने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने वॉश नाम के इस गिरोह के 7 सदस्यों को पुणे से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, 17 मोबाइल फोन और ठगी में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह पिछले 20 वर्षों से सक्रिय था और देश भर में 100 से अधिक लोगों से अरबों रुपए की ठगी कर चुका है। रायपुर में भी गिरोह ने एक व्यक्ति से 1,13,00,000 रुपए की ठगी की थी। इस मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 7 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं। इस बीच गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही थाना क्षेत्र में बीती शाम आकाशीय बिजली गिरने से बैगा दंपत्ति की मौत हो गई। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल दुर्ग में नए प्रधान जिला और सत्र न्यायालय भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर जुर्माना के डिजिटल भुगतान, FAR मोबाइल ऐप और कोर्ट फीस टिकट जनरेशन सिस्टम जैसी डिजिटल न्यायिक सुविधाओं का शुभारंभ भी किया गया। रेडियो श्रोता दिवस के अवसर पर भिलाई में 2 दिवसीय अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर संघ के संयोजक अशोक बजाज ने अश्लील गानों से परहेज करने और इसके खिलाफ देश भर में जन जागरण करने की अपील की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की शिक्षिका सुनीता यादव भी होंगे सम्मानित। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने BSc कृषि के प्रथम वर्ष के अंतर्गत प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा भी रद्द की। कोंडागांव जिले में एक वाहन ने मंत्री केदार कश्यप के काफिले की गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 4 पुलिस जवान घायल। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 7 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
3: और ये
2: मेरी बड़ी होती ना।
4: पर दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
5: RBI कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अभी प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे रायपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, पेश है ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में थोड़ी देर पहले हमने आपसे वादा किया था कि आपको फिल्म धड़कन का गीत सुनवाएंगे, तो आइए सुनते हैं धड़कन फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में।

पवन, संजय, दीपक और कमल उमा लक्सर हरिद्वार से हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां अडार नानघाट से हैं, माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से हैं मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता, राजकोट से हैं राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मेनपाट से हैं अजीता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, छोटी बलिया करजत मुंबई से हैं अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, पीपरलोट सरगांव से हैं दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, पहदा पलारी से हैं नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल, सावित्रीबाई देवांगन, खमरिया से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, बलौदा से हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, दत्रेंगी भांटापारा से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे, पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री, टोरोवाल जिला नवान शहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी और वामिका वाणी थांदी। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म आपकी कसम से किशोर कुमार को

श्रोताओं, ईमेल करें, गीत सुने, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आपकी कसम। फिल्म से किशोर कुमार का गाया ये गीत, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है रायगढ़ बिहार से उमा राज।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी आपके लिए एक सूचना है। बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा पर आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ोन नंबर नोट करना होगा। फ़ोन नंबर है 266592। हमारा STD कोड है 07752। आप इस नंबर पर अपने फ़ोन करें और DIG सर से अपनी समस्याएं सीधे पूछें। आपके फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। समय याद रखिए, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। सूचना समाप्त हुई। अब एक कार्यक्रम, महिला सभा कार्यक्रम हेतु भी सूचना है। श्रोताओं, फ़ोन करें, गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 25 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 24 अगस्त 2026 सोमवार प्रातः 11:00 से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा अतिथि देवो भव। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं बातों बातों में, क्या कहना और जब वी मेट। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारे फ़ोन नंबर हैं 266592 और STD कोड है 07752। तो आप लोग फ़ोन करिए और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। और श्रोताओं, कार्यक्रम

क्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म बाजीगर से विनोद राठौर और अलका याग्निक के गाए इस गीत को। गीत के बोल गोहर कानपुरी के हैं और धुन बनाई है अनु मलिक ने। इस गीत को सुनना चाहा है जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेराय, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार, नागर कोहरा राजनांदगांव से हैं बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, राध्या साहू, महाराष्ट्र से हैं रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रीतेश संघई, भागलपुर से हैं कमल किशोर साहू, अश्विनी, अमरदीप, पशुपति साहू, टिंकू और मुस्कान, दत्रेंगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, कतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा और आदित्य देवांगन, मदनपुर से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव खुराना, एस के पप्पी, सहारनपुर से हैं आशु मोची, कस्बा गुनौर से हैं नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरीन अब्बासी और दानिश गुनौरी, रायपुर से हैं विनोद वडलकर, वीणा वडलकर और विविधा वडलकर, मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं बाजीगर फिल्म से ये गीत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं चलते चलते फिल्म से अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य का गाया ये गीत। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौंसलिया आदर्श सार्थक और अलोक चौंसलिया। राजकोट से हैं जूली जगदीश गुजराती प्राची और प्रवीण कुमारी प्रवीण पुजारी। रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान हसीना बानो एलिजा नायाब और लड्डू। हांसी से हैं राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी बब्बू और डब्बू। जगराव से हैं सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्या मल्होत्रा सुच्चा सिंह पाठक। धुर्रा बांधा भाटापारा से हैं प्रमोद साहू देव नवीन युवराज साहू। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिड्डा और अलका मिड्डा। बठेना पाटन दुर्ग से हैं बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति निधि निखिल नियश प्रयाण शिवम रेखा और धनेश्वरी वर्मा। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी हेमलता हेना और हर्षित खुशी गोस्वामी। भिलाई से हैं अशोक श्याम कुंवर प्रमीला आसमा श्याम कुंवर। गढ़ई टिकरी पारा से हैं जागेश्वर देवांगन कचरीबाई दीपक जयश्री ऋषभ और ऋचा देवांगन। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर शाइना हसन नाजिया इब्राहिम। सनावत से हैं मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अल्तमश खत्री मोहम्मद अलकमा खत्री रमेश गुण मोहम्मद शादाब खत्री। लूथरा खमरिया से हैं अकरम आमीन अर्श और आतिका। लोहगढ़ ठाकुरावाला से हैं स्वर्ण सिंह गिल दिलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनूर गुरनाल सिंह और अविराज सिंह। रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म चलते चलते से ये गीत।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगी साथी भाई बहनी मल्ला जीवन भैया के राम राम जय जोहर। किसान भाई बहनी हो संगी साथी हो, पानी है बढ़िया दे सावन के महीना में झमाझम गिरा थे और खेती पाती के सबो काम है समय बेरा में हुआ थे। फिर भाई तालाब ल देखी डबरी ल देखी बांधा ल देखी सब लबलब ले भरे है और ये पानी है फिर हमार आघू बेरा बढ़िया काम आते। भाई तालाब के बात करथन तो भाई आज तालाब ला एक निस्तारी के रूप में ही नहीं यह बढ़िया एक व्यवसाय के रूप में एक उपयोग करत है। एमा कई प्रकार के व्यवसाय करत जैसे फूल के खेती है ना सिंघाड़ा और मछली पालन। तो किसान भाई मन बरसात के बेरा में देखो भाई तालाब के जिन मेड़ पार है वाला सुंदर रख रखाव करो जेखर से पानी भरे है वह बढ़िया भरे रहे। एति तेती ले जिन बीच में गर्मी के बेरा देखथन ट्रैक्टर है या गाय गरुआ है चलते।

0: पार ह धरसा टाइप हो जाते जेखर ले फूटे टूटे के डर रहते। ये बात के चेत करना है और ओला बढ़िया पानी ल बचा के रखना है। कई ठन हमें इदे काली परसों गरेन हमन इति गांव कोती तो देखन जी बला तालाब बड़का हवा है लेकिन उमा पानी नहीं भर रही से। हमन वहाँ किसान से पूछे कैसे भाई हो इमा पानी कैसे नहीं भरे है तो बोलते खर जे पानी की आवक खेती पाती लेट नहीं हुआ तो जैन सड़क के भरोसा वही पानी में गिरते और वहाँ वहाँ भर नहीं पाए तो इला चेत करो आप जिन उलट पानी जाते खेत के ओला तालाब में लाओ जिन्हें तुहर आगू मेरा काम आही है ना। तो ऐसा हम चेत करते रहना है और जिन जल स्तर के नियंत्रण हमेशा तालाब बांधा डबरी में देखते रहना है जेखर से ज़्यादा पानी भर गए तो कर उलट पानी ला फिर पीछू कोतीले निकाल दें है ना। ऐसने सावधानी रखना है कि भाई हमला जैसे मछली पालन करत हन तो खर भर चूना के उपयोग बीच बीच में डाली है ना। चारा लग बरसात के बेरम कम देवा ए प्रकार ले कई ठन बात के चेत करना है और तालाब के रख रखाव बढ़िया ढंग ले करना है। अब सुनबो ये संदेश फिर गोठियाबो आपसे।
1: हाँ ये रिंग अच्छी है बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा।
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: दस लाख की लॉटरी मुझे
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
1: हाँ ये रिंग अच्छी है बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा।
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: तो भाई हमला चेत करते रहना है ना। आसपास जिन तालाब है उखर रख रखाव में और उखर से बढ़िया व्यवसाय करके अपन आगे पैसा कमाए के साधन बनाना है। फिर भाई देखो आज इतवार के दिन जम्मू श्रोता संगवारी मर रेडियो के तीर बैठे रहे थे काहे उखर जिन चिट्ठी पाती गीत सुने पर भेजे रहे थे ओ मल्ला हमन शामिल करथन। तो फरमाइशी गीत के कार्यक्रम ला यदि शुरू करतन भाई तो भाई जम्मू श्रोता संगवारी हो आप मन जीवन भैया के राम राम है एखरे सेती कि भाई आप मन बढ़िया गाना ला सुनथव गीत ला सुनथव और उखर फरमाइश करे पर चिट्ठी हमार आकाशवाणी बिलासपुर तक पठो थो। तो आज के जिन पहली गीत है उखर बर चिट्ठी पठो है हमर ये श्रोता संगवारी मन ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ ले है राम दुलारी प्रजापति राम शरण प्रजापति चंद्रेश कुमार प्रजापति चंद्रकला प्रजापति शशिकांता प्रजापति। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई के श्रोता है नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामिनी वर्मा सुरेश कुमार सारथी भाई कमल कांत सारथी बीरेन ब्रिजकांत सारथी ए मन है बेमितरले। आगू चिट्ठी आहे हमर श्रोता मन के भाटा पाराले दानसी रावत दानू पद्मिनी रावत शुभम सौरभ रावत के और श्रोता हमर साथी मन भेजे है यही गीत पर ग्राम रसेड़ा अकलतराले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी साहू योगेश कुमार साहू कीर्ति कुमार साहू संध्या और डिकेश कुमार साहू वासु डाली पूर्वेश साहू। तो आप सबके पसंद में सुनबो ये भाई बहनी के जिन माया भरे गीत होते राखी तिहार के ओला स्वर दी है अमचूरी बाई और घर साथी मन।

तो अघोगीत बर चिट्ठी पठो हे हमर श्रोता संगवारी मन, महावीर वार्ड भाटा पारा ले श्रीमती अमृता यादव, श्रीमती पार्वती यादव, ईश्वरी यादव, लक्ष्मी यादव, कुमारी प्रेरणा डिम्पी यादव, हथबंद न्योधा से ये संगवारी है श्रीमती दुलारी यादव, श्रीमती प्रियंका, कुमारी प्रीति, श्रीमती उमेश्वरी यादव, श्रीमती सुनती यादव। मोती गार्डन भाटापारा के श्रोता है मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू कुमार, चिंटू झेरिया, युग कुमार झेरिया, और भाटापारा के श्रोता है राम कुमार राउत, अमेरिका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत। पीपर पारा बालचुवा मुंगेली के श्रोता है ये गीत पसंद करे है उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर, वंशिका दिवाकर, और यही गीतला हमर श्रोता मन भेजे है। बावली ले कमलेश साहू, हरेंद्र साहू, सुशील बिलसपुरिया, तो आवा आप सबकी पसंद में सुनी आसाराम पूर्ति के स्वर में ये गीतला

हमर आगू गीत ला पसंद करे हे श्रोता संगवारी पोड़ी भाठा अकलतरा ले दिलीप चंदन चोराम यदु निखिल चंदन वसुंधरा चंदन प्रिजल चंदन बिरगांव तखतपुर के श्रोता हे जयमूल कोल दिलीप कोल रामायणी कोल भुवनेश्वर कोल यही गीत ला पसंद करे हे शिवाजी चौक राजीम ले अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव अमरपुर पेंडर के सूता है दीपक कुमार रोशन कुमार बंसीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि दिशा दिव्यांश रूही और लवि श्रीवास्तव सक्री हाफा के सूता है मनीराम यादव बिंदा यादव गोलू यादव यही गीतला पसंद करे हैं देवरी भाठा पारा ले है हमर श्रोता संगवारी गन्नू लाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मिस्त्री मया राम रजक पुनेश्वर रजक फानेश्वर रजक मुकेश कुमार रजक कुमारी हाबिया रजक तानिया तो आवा ये सब संगवारी मन के पसंद में सुनी कुलेश्वर ताम्रकार और कविता हिरकाने के स्वर में यह गीत लगा।

अगला गीत जेन है ओला स्वर दिए है नवल दास मानिकपुरी अनसुईया मानिकपुरी एकर बर चिट्ठी पठो है हमारे श्रोता संगवारी है पोड़ी पाली ले राम सनेही साहू मीना साहू ब्रह्मानंद परमानंद संध्या प्रियंका हर्ष महिला महिमा प्रज्ञा तन्मय रोमांस आनंद साहू सिमरताल बंगला पारा ले है नंदलाल यादव त्रिवेणी यादव मोना कपिल छोटू यादव चांदनी चौक गंडाई पंडरिया के श्रोता है पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन मगर लोड जिला धमतरी के श्रोता है पुनुराम साहू तेजस्वरी साहू राजश्री साहू और राजवीर साहू इसने श्रोता है दतरंगी भाटा पारा के यही गीतला पसंद करके भेजे है नोखेलाल वर्मा हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा तो आवा आप जम्मू श्रोता के पसंद मसूनी ये गीतला

आपको गीत भर चिट्ठी पठो हे रोहासी ले डगेश्वर साहू नूतन साहू घनश्याम साहू गौरव साहू अलका जानवी साहू डोंगर गांव छत्तीसगढ़ लेहे राष्ट्रपाल गजभिये राधिका गजभिये बेबी अनिस्का तन्मय गजभिये भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ के श्रोता है रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता देवांगन डिम्पल देवांगन यही गीत ला पसंद करे हे रिगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा बकुरा नवा पारा के श्रोता है मुकेश गुप्ता प्रमोद गुप्ता भरत यादव जगत जागेश्वर और भांग पटेल पौड़ी लाफा ले हे विद्यानंद साहू त्रिवेणी साहू रानी बबली सुमन मिष्ठी सृष्टि सृष्टि गन्नू गणेश कान्हा कृष्णा अंशु साहू आप जम्मू श्रोता के पसंद मसूनी कविता हिरकने के गाय ये गीत ला

ये गीत ला सोरदर से कविता हिरकने और हमार पता है ग्राम सभा अनुभाग आप मन के गीत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बाग नंबर 49 आकाशवाणी बिलासपुर 495006। आज के जे बिलासपुर के तापमान है अधिकतम 30.0°C न्यूनतम है 25.0°C। सलाम यही कहबो के अहिरु बिछुल बांचे बर बिल्कुल आप मन अंजोर में चलाओ जूता पहन के चलाओ और सांप अहिरु बिछुल बांचे के प्रयास करो। एक संग ग्राम सभा कार्यक्रम ले भाई देहा विदा जीवन भैया ला तो झोंकाओ जय जोहार राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अभिजीत पोहनकर के गाए कुछ गीत।

0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं साइबर जागृति अभियान पर ये संदेश।
1: नमस्कार, छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर जागृति अभियान में सुनिए बिलासपुर पुलिस की सलाह। साथियों, ये आप भलीभांति जानते हैं कि हमारी पुलिस आमजनों की हर दृष्टि से सुरक्षा के लिए प्रयासरत है, किंतु अपराधी कोई न कोई कुचक्र रच कर लोगों को अपना शिकार बना ही रहे हैं। कुछ दिनों से साइबर अपराधी किसी भी परिवार की गुप्त रूप से जानकारी एकत्र कर अपने आप को CBI, ED, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बताकर अज्ञात फोन से परिवार के किसी व्यक्ति पर मनगढ़ंत झूठा आरोप लगाकर उसे डिजिटल अरेस्ट होने की जानकारी देकर अपने इशारे में गलत कार्य कराने मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर प्रताड़ित करते हुए बाध्य करते हैं और मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति अपने आप को गिरफ्तार समझकर वैसा ही करता है जैसा साइबर अपराधी कहता जाता है। आप सभी से अनुरोध है, ऐसे फोन कॉल पर न घबराएं न ही विश्वास करें। तत्काल इसकी सूचना डायल 1930 को अथवा पुलिस को दे दें। ध्यान रहे, डिजिटल अरेस्ट होता ही नहीं और पुलिस जैसी संस्था ऐसा फोन कॉल कभी नहीं करती। जनित सदैव, बिलासपुर पुलिस, छत्तीसगढ़।
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं अभिजीत पोहनकर का गाया ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली भारती।
0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, आज के कलाकार थे अभिजीत पोहनकर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, रात्रि के 8:15 हुए हैं, पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

तो सब कुछ होते भी खालीपन महसूस होता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने मन का ध्यान रखें, हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालें, प्रकृति को देखें, मधुर संगीत सुनें, अपनों से बातें करें और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ऐश्वर्य का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कहते हैं मन बड़ा विचित्र होता है, कभी छोटी सी खुशी से झूम उठता है तो कभी बिना किसी बड़ी वजह के उदास हो जाता है। मन ही है जो हमें सपने देखने की ताकत देता है और मन ही कभी कभी हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। हमारा मन शांत हो तो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ते दिखाई देने लगते हैं और मन अशांत हो

श्रोताओं, आज 23 अगस्त है। हिंदी सिनेमा और संगीत की दुनिया के लिए एक ऐसी तारीख है जब दो बिल्कुल अलग अलग रंगों के कलाकार इस दुनिया में आए। एक तरफ ऐसी आवाज जिसने नई सदी की पीढ़ी के प्यार, दोस्ती, दर्द, तन्हाई और उम्मीद को अपनी आवाज दी, कृष्ण कुमार कुनाथ यानी कि के ने। और दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री सायरा बानो। एक की पहचान थी आवाज, दूसरी की पहचान थी अभिनय, खूबसूरती और पर्दे पर उनकी सहज मुस्कान। आज के कार्यक्रम में हम याद करेंगे इन दोनों कलाकारों के सफर को, उनकी शुरुआत, उनकी लोकप्रियता, उनके यादगार गीत और उनके प्रशंसकों के दिलों में बसी उनकी अमिट छवि को। श्रोताओं, कुछ आवाजें केवल कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। ऐसी ही एक आवाज थी के यानी कृष्ण कुमार कुनाथ की। 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के ने अपनी आवाज से हिंदी फिल्म संगीत में एक ऐसा मुकाम बनाया जिसे भुला पाना आसान नहीं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत विज्ञापन जिंगल से की और आगे चलकर फिल्मों के लिए ऐसी आवाज बने जिसमें प्यार भी था, दर्द भी था, दोस्ती भी थी और जिंदगी का उत्साह भी। आज हम उनके जन्मदिन पर याद करेंगे उनके कुछ बेहद लोकप्रिय गीतों को। तो आइए सुनते हैं इस गीत को जिसने के को देश भर में अलग पहचान दी है।

श्रोताओं, फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये गीत केके के कैरियर का एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव बना। उन्होंने इस गीत को गाया ही नहीं बल्कि महसूस कराया। इस गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक श्रेणी में नामांकित भी किया गया। श्रोताओं, केके की आवाज की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे अलग अलग भावनाओं में बिल्कुल सहज लगते थे। ओम शांति ओम का ये गीत केके की रोमांटिक आवाज की एक शानदार मिसाल है। इस गीत के लिए केके को कई पुरस्कारों में नामांकन मिला और उनकी लोकप्रियता के महत्वपूर्ण गीतों में शामिल भी हुआ।

श्रोताओं, केके की आवाज़ की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी आवाज़ में बनावटीपन नहीं था। वे दर्द गाते थे तो दर्द अपना लगता था, दोस्ती गाते थे तो लगता था जैसे कोई पुराना दोस्त सामने बैठा हो, और प्रेम का गीत गाते थे तो लगता था जैसे हमारे ही दिल की बात कह रहे हों। मात्र 53 वर्ष की उम्र में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान 31 मई 2022 को केके का आकस्मिक निधन हो गया। श्रोताओं, संगीत की दुनिया में उम्र नहीं होती, वहाँ कलाकार अपने गीतों में जीवित रहते हैं, और केके आज भी अपने गीतों में हमारे बीच हैं।

श्रोताओं, अब रुख करते हैं हिंदी सिनेमा के उस दौर की ओर जब पर्दे पर नायिका की मुस्कान भी दर्शकों के लिए किसी गीत से कम नहीं हुआ करती थी। 23 अगस्त 1944 को मसूरी में जन्मी सायरा बानो ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत फिल्म जंगली से की। फिल्म में उनके साथ शम्मी कपूर थे। जंगली ने उन्हें तुरंत दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। सायरा बानो प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो की बेटी थी। उनकी पहली ही फिल्म के गीतों ने उन्हें खास पहचान दी। तो आइए अब सुनते हैं जंगली फिल्म का वो गीत जो सायरा बानो की चुलबुली अदाओं के साथ आज भी याद किया जाता है।

श्रोताओं, सायरा बानो की खूबसूरती, उनकी नृत्य भंगिमा, पर्दे पर उनकी चंचलता ने उन्हें 1960 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया था। जंगली के बाद उन्होंने ब्लफ मास्टर, आई मिलन की बेला, शागिर्द, दीवाना, पड़ोसन और भी कई अन्य फिल्मों में काम किया। उन्होंने उनकी अभिनय यात्रा में रोमांस था, कॉमेडी थी और गंभीर भूमिकाएं भी थीं।

श्रोताओं, शागिर्द में सायरा बानो की चुलबुली अदाओं और मासूमियत ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया और इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की नामांकन सूची में जगह भी मिली। जंगली, शागिर्द, दीवाना और संगीना जैसी फिल्मों के लिए उनके अभिनय को फिल्म फेयर नामांकन मिले। श्रोताओं, सायरा बानो का नाम आते ही एक और फिल्म अपने आप याद आती है, पड़ोसन। जी हाँ, कॉमेडी, संगीत और बेहतरीन कलाकारों से सजी ये फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय फिल्मों में शामिल है। श्रोताओं, सायरा बानो की स्क्रीन से जुड़ी प्रेजेंस का

की एक खास आकर्षण और उनकी सहजता थी। वे पर्दे पर आती थीं तो दृश्य में अलग सी चमक आ जाती थी। 1960 और 70 के ये दशक की सायरा बानो और दूसरी तरफ 1990 और 2000 के दशक की पीढ़ी की आवाज़ के दोनों की दुनिया अलग थी। दोनों ने अपने अपने दौर के दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई। श्रोताओं, सायरा बानो ने अभिनेता दिलीप कुमार के साथ 11 अक्टूबर 1966 को विवाह किया। दोनों का साथ हिंदी सिनेमा की चर्चित प्रेम कहानियों में गिना जाता है। सायरा बानो एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में अपनी खूबसूरती, अभिनय और सहज मुस्कान से अपनी अलग पहचान बनाई। सायरा बानो जी के जन्मदिन पर हमारी आकाशवाणी की ओर से यही शुभकामना है कि उनका जीवन सदैव स्वस्थ रहे, वे सुखी रहें और आनंदमय रहें। सिनेमा बदलता रहा, संगीत बदलता रहा, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन अच्छे कलाकारों की यादें कभी पुरानी नहीं होती। चलते चलते सुनते हैं सायरा बानो का ये लोकप्रिय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें।

0: जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है, बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सज्जित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स

0: खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
1: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, एआई, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल, ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
2: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नित्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
3: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों

0: चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरंड कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Visakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohan Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on the National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures.

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए पूर्णिमा और उदित नारायण की आवाजों में सातवां आसमान फिल्म का गाना, इसे लिखा है सूरज सानिम ने, संगीत राम लक्ष्मण का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरे कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पियाए।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

जी हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सायरा बानो की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी, नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी, छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानो को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला, और इसके बाद झुक गया आसमान।

0: जमाने के रोमांटिक हीरो विश्वजीत के साथ भी उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अप्रैल फूल।
1: उनकी पहली नजर क्या असर कर गई।

0: दोस्तों, सायरा बानू जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा, और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम।
1: हाँ।
2: ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नई नई के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेंगे। आज

0: मैं दिल को समझाओ ना।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी 3 फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।

0: हुआ है।
1: नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।
2: ना ना ना ना ना ना ना ना।

धर्मेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैताली और ज्वारभाटा।

दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में

उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी, पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों, सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। छाया गीत में आज ऐसे गाने हैं जिनके दो संस्करण हैं, एक मेल वर्जन और एक फीमेल वर्जन। सुनने के आनंद के लिए हमने किसी दिलचस्प मोड़ पर इन गानों को आपस में जोड़ दिया है। कुछ अल्फाज कहना कितना मुश्किल होता है, जब कहना इतना मुश्किल है तो लिखना और भी ज्यादा मुश्किल होता होगा ना। फिर कैसे कहें अपने दिल की बात, कैसे कहें जिसे कहने के लिए बेकरार है दिल, लरसते हैं होंठ, कांपता है बदन और मिलते नहीं अल्फाज अपनी बात कहने के लिए।

कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं। खुशी की चमक, दुख की झलक, सब कुछ आंखों में तैर जाता है। आंखों में समाया है हमारे दुखों का नमक और खुशियों की चहक। किसी की आंखें रोशनी हैं, उम्मीद हैं, इन आंखों से रोशन है हमारा संसार। आंखें आंखों से करती हैं बातें, आंखों की इस भाषा को कम ही लोग जान पाते हैं।

जिंदगी आसान भी है और दुश्वार भी। जिंदगी कितना कुछ सिखाती है हमें। सांप सीढ़ी का खेल है ये जिंदगी। यूं लगता है कि सामने है मंजिल और पल भर में मंजिल कोसों दूर होती है। जिंदगी कभी एक कविता है, कभी एक अफसाना और कभी एक महागाथा। चलो जिंदगी की उंगली पकड़ें और बातें करें इससे, कह दें इससे अपने सारे गिले शिकवे।

बारिश कुदरत की एक कविता है, बारिश संगीत है प्रकृति का, बारिश एक वरदान है, ये जज्बात जगाती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। ऐसी बारिश में घर के अंदर बंद रहना एक गलती है। बारिश तो बाहर निकलने के लिए होती है, सराबोर होने के लिए होती है, गाना गाने के लिए होती है, जिंदगी जीने के लिए होती है बारिश।

0: पहले गीत में आज ऐसे गाने थे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष और एक महिला संस्करण। सुनने के आनंद के लिए हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम, फिल्म जंगली।
1: एहसान तेरा
2: दाम छुपर।
0: फिल्म चिराग।
1: तेरी आँखों के सिवा
2: दुनिया में रखा क्या।
0: फिल्म मासूम।
1: तुझसे नाराज नहीं जिंदगी।
2: हैरान हूँ मैं।
0: और फिल्म मंजिल।
1: रिम झिम गिरे सावन।
0: आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
4: मिलो जो तुम्हें बताए।
3: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
5: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
3: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

अभी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण क्षण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा